0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे.
1: आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ.
0: ओके, आई हैड अ फेज वेयर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो. आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज. ऑब्वियसली आफ्टर यू नो 2 years ऑफ गोइंग थ्रू दैट फेज, आई रियलाइज दैट ओ वेर इज दैट चार्म दैट वॉज इन मी. You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी. You know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, you know, जो भी outside circumstances थी, जो which were, you know, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people, and उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ. मैंने 12th तक साइंस पढ़ी, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद मैंने इवेंट्स किया. ठीक है, तो आई थिंक आई हैड इनफ बैकअप्स को शन अवे करना, एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस. And I am meant to see the operations of things. So, अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, I technically don't have a backup plan. But if I have to do something, I know I can do operations very well. Operations of any company, of any job, I can do that very well. Because मैंने एक master operations वाली field में काम किया हुआ है, जो events है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ operations देखने होते हैं. तो if I can do this, I can see the operations of any place and any business. Walk Talk Radio.

0: एक इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी नर्वस होते हैं तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई भी गाना सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी म्यूजिक के मूड में चले जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज आरजे गौतम और आज मेरे साथ हैं एक और गौतम, गौतम थापा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो इनकी आवाज जरूर सुनी होगी। A very warm welcome to you, Gautam, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much.
0: कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
1: बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। This is my first podcast, so थोड़ा सा nervous भी हूँ, but हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है, अभी feeling good है।
0: तो उस nervousness को एक music का feel देते हैं और गाने से शुरुआत करते हैं।
1: Sure.

0: बात है गौतम, क्या गाया है।
1: थैंक यू सो मच।
0: मुझे भी खुशी हो रही है, मजा आ गया मतलब सुन के।
1: अरे थैंक यू सो मच।
0: तो आपने जैसे अभी हिंदी गाना गाया
1: जी,
0: तो ऐसी और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप गाना गा लेते हैं?
1: मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाता हूँ, कुछ पंजाबी हो गए और कुछ सूफी हो गए। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आजकल, जो हमारी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, कुछ गढ़वाली गाने प्रिपेयर कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि फरमाइशें काफी आती रहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कुछ गोरखाली सॉन्ग्स की फरमाइशें आती रहती हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है आजकल।
0: आप गिटार तो बजाते ही हैं?
1: हाँ जी।
0: साथ में और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हैं या आपको आता है?
1: थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ मैं, बाकी गिटार मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है। अकोस्टिक गिटार ही प्ले करता हूँ ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। और अभी रिसेंटली 2 सालों से मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है। तो एक बैंड, फुल बैंड में आपको पता ही है कि 4 लोग होते हैं, एक वोकलिस्ट होता है, लीड गिटारिस्ट होता है, बेस गिटारिस्ट होता है और ड्रमर होता है। तो बेस गिटारिस्ट की जगह हमारे पास थी नहीं, तो बेस गिटार भी आजकल मैं प्ले करके ही गाता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो ऐसी चीजें हैं बस।

0: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की। तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: एक आर्टिस्ट के लिए ना उसका पहला गाना बहुत ही स्पेशल होता है।
1: हाँ जी।
0: तो आपको कुछ याद आ रहा हो, आपका पहला गाना आपने लिखा हो, गाया हो, या कोई भी मेमोरी हो ऐसी?
1: जी, पहला गाना जो मैंने कंपोज किया है, मेरा खुद का सॉन्ग है, जो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ये खुला आसमां जो है, उस गाने के बोल हैं। तो ये गाना मैंने बहुत पहले, आई बिलीव बैक इन 2004 मैंने ये गाना लिखा था, तो कभी मौका मिला नहीं, कंपोज भी खुद ही किया था बीच में, क्योंकि कभी हम लोग इस फील्ड में थे नहीं पहले म्यूजिक में। म्यूजिक में मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, पर हाँ जब आया हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से ही आया हूँ। तो तब मैंने इस गाने पे और काम करना शुरू किया, तो जो पुराने लिरिक्स थी उस गाने की वो भी थोड़ी सी मॉडिफाई करी इस टाइम के हिसाब से। तो दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, गाने का नाम है ये खुला आसमां।
0: जैसे आपने अभी म्यूजिक में आने की बात करी
1: जी,
0: तो ये म्यूजिक का शौक, ये सिंगिंग का शौक, ये आपने सिर्फ एक एज अ शौक करा है या इसकी आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है?
1: जी, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है। मेरे गुरुजी हैं पंडित मुरलीधर जगुड़ी जी, तो वो मेरे ही स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मुझसे म्यूजिक सीखो। तो मैंने 6 साल का विशारद किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वोकल सीखे हैं, मतलब वोकल सीखे, पर उसके बाद मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वही आपको पता ही है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो घर से आपको प्रेशर होता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करो तो वो वाला प्रेशर था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब करने के बाद मैं आया म्यूजिक की फील्ड में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग, 4 साल मैंने नौकरी करी। नौकरी के दौरान मैंने US भी ट्रैवल किया, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर भेजा, मतलब वेल सेटल्ड जॉब थी। फिर मैंने वापस आके दोबारा देहरादून में वापस आया, फिर मैंने MBA किया, MBA के बाद भी मैंने 2-3 साल नौकरी करी। पर जब एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि नहीं यार, ये चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ, एक आपको हिट मिलता है कि मतलब ये चीज़ ना आप नहीं कर पाओगे, फॉर अ लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बचपन से ही शौक था म्यूजिक में आने का। ठीक है, कॉलेज लाइफ में भी हम स्टेज शोज में परफॉर्म करते थे, तो सोचते थे कि यार अब स्टेज वर्क ही करना है। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी, पर क्योंकि नौकरी में इतना व्यस्त होते थे कि आपको नहीं मिलता था इतना टाइम कि आप जाके परफॉर्म भी करो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हुई। 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे म्यूजिक ही करना है। तो अपने आप को प्रिपेयर करा मैंने 3-4 महीने काफ़ी, क्योंकि जब आप स्टेज शोज करते हो, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको एक स्टैमिना चाहिए होता है,
0: बहुत बहुत चाहिए,
1: राइट? आपको कम से कम 2-2.5 घंटे या 3 घंटे आपको परफॉर्म करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपके वोकल कॉर्ड्स, वोकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 3 महीने तक कंटिन्यू, 3 महीने बोल रहा हूँ सॉरी, 3 घंटे तक आप कंटिन्यू गा सके। 3 महीने इसलिए निकला मेरे मुंह से क्योंकि 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी डेली। तो उसके बाद मेरे को पहला ब्रेक जो मिला वो मुझे मिला जयपुर में। जयपुर से मेरी स्टार्ट हुई 2018 में। 6 महीने मैंने वहाँ के क्लब्स एक्सप्लोर करे, धीरे धीरे अपना बिल्डअप किया, अपने सॉन्ग लिस्ट चेंज करता रहा, क्योंकि एक टाइप के सॉन्ग्स अगर आप गाते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाती है। एग्जैक्टली, आपकी ऑडियंस बोर हो जाती है। फिर आपको इतने गाने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि आपके रिक्वेस्ट बहुत आती हैं। अब कुछ रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर पाता हूँ क्योंकि मैंने वो गाने सुने हैं, मैं वो गाने प्रिपेयर कर चुका हूँ, कुछ कभी कभी नहीं हो पाता। फिर 2019 में मैं देहरादून आ गया, जब मुझे पता चला कि देहरादून में भी लाइव म्यूजिक का स्कोप बढ़ रहा है, बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे खुले थे। सबसे पहला क्लब था ग्रेट इंडियन पब, जो कि आपके राजपुर रोड में है। फिर आपका टॉनिक है, जो कि आपके टूवर्ड्स बल्लूपुर रोड में है। तो टॉनिक से मेरी शुरुआत हुई थी, और अभी ऐसा है कि 5 साल हो गए मुझे टॉनिक में परफॉर्म करते करते, तो बस जर्नी वहीं से शुरू हुई म्यूजिक की और कंटिन्यू है अभी तक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: आपने जर्नी की बात करी और अपनी पूरी कहानी के बारे में हमें बताया, लेकिन एक ऐसा जो आप एक पॉइंट आता है जब बंदे को हिट करता है,
1: हाँ जी,
0: यार नहीं अब नहीं करनी जॉब, अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, तो वो इंसिडेंट या वो पॉइंट कब था?
1: ये बहुत ही एक अमेजिंग किस्सा है। मैं गया तो था बिजनेस ट्रैवल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से। आई यूज टू वर्क फॉर एन MNC उस टाइम पे, 2016 की बात है। हम चैटानूगा गए थे, ऑफिस का क्राउड पूरा, एक प्रोजेक्ट लेने के लिए गए थे। तो 2016 में जब चैटानूगा में थे, टेनेसी एक स्टेट है US का, वहाँ पे एक सिटी है चैटानूगा। फिर चैटानूगा से हम नैशविल गए थे, विच इज़ अ म्यूजिक सिटी। तो नैशविल में, नैशविल से वैसे आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे सिंगर्स वहाँ से नैशविल के ही हैं, मतलब
0: जैसे जैसे
1: जैसे आपने सुना होगा एल्विस प्रेस्ली, बहुत ही 60s के जाने माने, अभी तक उनके गाने सुनते हैं, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू उनके सॉन्ग्स हैं, माइली साइरस जो कि लोगों ने सुना ही होगा काफी नाम, शी इज ऑल्सो फ्रॉम नैशविल। तो वो म्यूजिक सिटी है, वहां पे मतलब हर 10 बंदों में से 9 बंदे जो हैं गिटार बजाना जानते हैं। तो वैसी क्लब हॉपिंग चल रही थी हम लोगों की, हमारी छुट्टी थी, हम घूम रहे थे। तो एक कैरियोके नाइट था वहां पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, गा लेता हूँ, तो मैं भी चढ़ गया स्टेज पे कि मैं भी गाऊंगा। सो वहां पे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि यू आर एन इंडियन, हाउ कैन यू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं मैं गाता हूँ। तो जॉन डेनवर एक कंट्री आर्टिस्ट हैं, 60s-70s के ही हैं ये, तो उनका सॉन्ग है एनी सॉन्ग। तो मैंने जब वो एनी सॉन्ग गाया तो लोग वहाँ पे थोड़े वो हो गए कि यार ये तो बढ़िया गा रहा है लड़का,
0: इंडियन आदमी ने इतना अच्छा इंग्लिश गाया है।
1: बिल्कुल। तो वहीं उनसे, वहीं पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू हैव अ वेरी लवली वॉइस एंड यू शुड डू समथिंग विद योर वॉइस। तो वो बात मुझे काफ़ी हिट करी। तो नैशविल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, अब नौकरी ज्यादा नहीं हो सकती है। कुछ अपना ही करना है।
0: तो नैशविल से मतलब आपने अपनी गाड़ी मोड़ ली?
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहां से आने के बाद 6-7 महीने मैंने थोड़ा और काम किया क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद मैंने अच्छे से अपनी जॉब छोड़ी, पूरा अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पीरियड होता है वो,
0: नोटिस पीरियड
1: सर्व करके मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं अपनी म्यूजिक जर्नी मैंने स्टार्ट करी।
0: आपने अभी नैशविल की कहानी सुनाई हमको
1: जी,
0: तो एक गाना फिर इंग्लिश में भी हो ही जाए।
1: इंग्लिश में मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको जो मैंने
0: बिल्कुल बिल्कुल

0: थैंक यू।
1: अब मैं समझा कि वहाँ पर आपको क्यों उस आदमी ने बोला कि भैया अपनी गाड़ी घुमाओ। आप म्यूजिक के फील्ड में इतने टाइम से हैं और काफी तरह के गाने आपने सुने होंगे, गाए भी होंगे, और इतने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं इस म्यूजिक की फील्ड में।
0: हाँ जी।
1: तो आपका भी जरूर कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा।
0: हाँ जी, मतलब मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स रहे, क्योंकि मैंने हर एक आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा है। हर एक आर्टिस्ट की जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो ग्रैब करने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ। एल्विस प्रेस्ली हैं, बीटल्स बैंड हैं, ठीक है, जॉन डेनवर हैं, ये तो हमारे वो हो गए। बाकी हमारे जो इंडियन वो हैं, किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। 90s का किड हूँ तो अपने कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, इन सबको सुन के बड़ा हुआ। और मेरे जो पसंदीदा अभी के जो हैं, मतलब जिनको मैं अभी तक मानता हूँ, हरिहरन साहब हैं, सुखविंदर सिंह, उनके जैसी आवाज
1: किसी
0: की नहीं है, मतलब वो डिफरेंट है। और आज के दौर में अगर बात करें तो अरिजीत की टक्कर के एक सिंगर तो कोई है नहीं, आप सबको पता है और ये सब मानते भी हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा जॉनर है कि वो मतलब कोई भी गाना गा सकते हैं और विद दैट ईज वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो मतलब इंस्पिरेशन मैं हर जगह से लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सोनू निगम सर है ना,
1: उनकी जैसी आवाज भी,
0: उनकी भी आवाज जैसी कोई नहीं है,
1: कोई आवाज नहीं है।

0: रेडियो।
1: जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका कुछ अलग सा होना चाहिए। आप उस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, कितना क्रिएटिव तरीके से करते हैं, ये जरूरी है। और किसी भी काम को करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर खुद पर विश्वास हो तो वो काम फोकस के साथ होता है। सोचो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में कभी आपके साथ हुई हो बचपन में, स्कूल टाइम में, जहां हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम में होता था, फिर चाहे वो कोई खेल क्यों ना हो। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस के साथ करें।

0: जब ऐसे म्यूजिक की फील्ड में हम जाते हैं या कोई भी इंसान एंटरटेनमेंट की फील्ड को चुनता है तो इनिशियल डेज में काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपके क्या वो चैलेंजेस थे?
1: मेरी लाइफ के तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक वेल सेटल्ड जॉब में था, मुझे बहुत अच्छा ऑफर भी था, सैलरी भी अच्छी थी, जो कि हर माँ बाप को चाहिए होती है कि चलो बेटे को पढ़ाई करवाई है तो बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। तो उस समय ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर दिल से तो करना था, दिल तो मान नहीं रहा था कि अब नौकरी तुमसे होगी नहीं। तो

0: जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो मैंने 6 महीने तक अपने घर पे नहीं बताया था। मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ये, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में था तो घर वालों को कोई आइडिया नहीं था इसने नौकरी छोड़ दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जयपुर से शुरुआत करी, तो 6 महीने मैंने जयपुर में शोज करे और वो वीकेंड पे मेरे कुछ मैं अपने फेसबुक में या इंस्टा पे पोस्ट कर देता था, तो घर वालों को लगता है चलो सैटरडे संडे इसकी छुट्टी होती है तो ये अपनी
1: शौक
0: पूरा कर रहा है। एग्जैक्टली। पर जब मैं 2019 में वापस आया और जब मैंने बताया घर वालों को कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो आपको, आप जानते ही हैं इंडियन पेरेंट्स थोड़े से, तो बिल्कुल खफा हो गए मुझसे। काफ़ी समय तक मेरे से बातचीत नहीं हुई, बातचीत भी नहीं करी। मुझे रोज समझाते थे ये क्या डिसीजन ले लिया तुमने इस एज में, हम तो सोच रहे थे तुम सेटल हो गए हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर नहीं, मैंने सोचा था जो करना है तो अब करना ही है, क्योंकि दिल में एक बार ही ठान लिया था कि अब तो भाई म्यूजिक ही करना है और इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसी चीज में अच्छा हूँ। तो बस डिफिकल्टी यही थी कि घर वाले मान नहीं रहे थे, तो बहुत टाइम लगा उनको समझाने में। फिर एक डिफिकल्ट टाइम और आया था, वो तो सबकी जिंदगी में ही था, जब कोविड का टाइम आया था तो आपके पास कोई लाइव शोज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उस समय काफी तगड़ा झटका लगा था। उस समय एक बारी के लिए दिल में ख्याल भी आया था कि यार ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि अभी अगर नौकरी में होता तो कम से कम सैलरी तो आ रही होती। पर वही है कि जैसे कहते हैं लोग कि जहां चाह है वहीं राह है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: मुझे जूम शोज बहुत मिले, मैंने घर में बैठे बैठे शोज करे उसके बाद। सो आई यूज टू गेट पेड थ्रू, यू नो, जहाँ पे जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग, तो जूम मीटिंग में लोग मुझे कहते थे कि आपके पास सेटअप है, मैंने कहा बिल्कुल है, तो मैं उनके लिए एक एक घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मजा कम आता था लेकिन उनके लिए वो फन था और मेरे लिए मेरी, मतलब रोजी रोटी टाइप आप कह सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे मैंने जूम में बहुत शोज करे तो ठीक ठाक चला। बहुत अच्छा समय भी नहीं था, पर मैं ये कहूंगा कि बहुत बुरा समय भी नहीं था। पर कोविड के टाइम पे मुझे टाइम बहुत मिला अपने आप पे काम करने में, तो ये पॉजिटिव पार्ट था। उसके बाद तो मैंने इतने गाने प्रिपेयर कर लिए कि मतलब अब मेरे पास गानों की कमी नहीं है।
1: बैंक भर लिया
0: मैंने अपना। एग्जैक्टली।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: अभी हम लाइव रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे थे, लाइव शो की बात कर रहे थे
1: जी।
0: तो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना
1: जी।
0: और लाइव शोज करना
1: जी।
0: काफी डिफरेंस होता है
1: कि
0: आप एक कॉन्सर्ट में या लाइव शो में आप मिस्टेक नहीं कर सकते।
1: ना ना बिल्कुल भी।
0: तो लाइव शो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं?
1: लाइव शो करने के देखिए डिसएडवांटेज तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि कुछ है, क्योंकि लाइव शोज में एक तो आपको क्राउड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आप जब आप परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने कोई क्राउड ही नहीं है तो आपको वो फील ही नहीं आएगी, यू नो। अब हम गाते ही हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी गाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब लोग सामने बैठे हों और थोड़ा म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हों, जो सुनने वाले लोग हों, तो उनके सामने परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। और जैसा आपने कहा कि क्या डिफरेंस है स्टूडियो और लाइव में, स्टूडियो में आप रीटेक ले सकते हैं, लाइव में आप रीटेक नहीं ले सकते, तो ये पार्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा और बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम स्कूल टिल योर कॉलेज क्या क्या आपने करा है?
1: स्कूल मेरा केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला से है, फिर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, बीएससी मैंने करा है आपका डीएवी कॉलेज से, फिर आफ्टर डीएवी पीजी 4 साल मैंने नौकरी करी है। मैंने आपको जैसे बताया कि 7-8 साल मैंने नौकरी करी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में करी है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करी है। पहले मैं शिपिंग कंपनी में था, फिर मैं एक स्टाफिंग कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कंपनी थी गुड़गांव में, वहाँ पे था। तो 4 साल वहाँ जॉब करने के बाद 2013-14 में मैंने MBA किया है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से मैं MBA हूँ। फिर मैंने बिग बाज़ार में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम किया है, जो बिग बाज़ार यहाँ देहरादून में आया था। फिर मैं वापस नोएडा मूव हुआ, दिल्ली और नोएडा, तो EXL सर्विसेज में काम किया है। फिर ये सब जब हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं शायद बना ही म्यूजिक के लिए था, तो इसलिए मैं हर 2-2 साल में स्विच कर लेता था फॉर द ग्रोथ एज वेल। पर वही है कि काम में, किसी भी काम में मुझे मज़ा नहीं आया, और जब से मैं म्यूजिक में आया हूँ फिर मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता।
0: बिल्कुल, काम में मजा आना ना बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी होता है।
0: तो जब गौतम थापा एक स्टूडेंट था या एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का था
1: जी,
0: और जब अब आप एक फेमस सिंगर बन गए हैं, शहर में गाते हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं
1: जी,
0: तो लोगों के नजरिए में कुछ बदलाव देखते हैं क्या आप?
1: बदलाव एज इन ऐसा कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बस आपके फैकल्टीज जानते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं, कॉलेज के लोग जानते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने जब ग्राफेस्ट होता है तो परफॉर्म किया है, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत फेमस हो गया था, और जब से अब यहाँ देहरादून में करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत थोड़े लोग जानते हैं अब देहरादून में कि हाँ कि गौतम थापा इस क्लब में परफॉर्म कर रहा है, तो चलो हम इस क्लब में चलते हैं आज सुनने के लिए।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और वॉक टॉक रेडियो में मैं हूँ आपके साथ किरण। वॉक टॉक रेडियो पर जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर और अपने बहुत सारे थॉट्स को लेकर हमारे साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और इसी पर आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद है उनके बारे में आपको बता दूं, इनका नाम है कृतिका गुरुंग और एक बहुत ही प्यारा सा स्टार्टअप इनका है जिसका नाम है एवांते। तो सबसे पहले कृतिका बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: थैंक यू सो मच किरण फॉर हैविंग मी।
1: कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: रेडियो का मतलब क्या है आपकी लाइफ में?
2: रेडियो का मतलब है टू कनेक्ट पीपल थ्रू आवर वॉइसेस, थ्रू आवर स्टोरीज, थ्रू आवर जर्नीज।
1: हाँ, सो कृतिका सबसे पहले जो है मैं आपसे ये पूछूंगी कि कृतिका गुरुंग कौन है, क्या करती है एंड क्या करना चाहती है लाइफ में आगे, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स सुनेंगे उन्हें आपके बारे में अभी कुछ नहीं पता।
2: सो कृतिका गुरुंग, शी इज अ ऑर्डिनरी गर्ल हु लव्स शॉपिंग, हु लव्स क्रिएटिविटी एंड छोटे से शहर से है, छोटी सी जगह से है, डोईवाला।
1: हाई फाई, मैं पासी से हूँ।
2: पास पास वाली जगह से हैं।
1: हाँ।
2: और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ग्राफिक एरिया हिल यूनिवर्सिटी से।
1: ओके।
2: इंग्लिश ऑनर्स, देन एमए इंग्लिश 2021 में कंप्लीट हुआ है। सो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, खाली थी और क्लासेस भी ऐसे ही चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था। तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ चलता रहता था क्रिएटिविटी ना, कि क्या किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ लाइक स्क्रैप बुक वगैरह हो गया या फिर कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें मुझे पहले से बहुत पसंद था। एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि एक आईडी बना लेते हैं। तो फिर माइंड में आया कि चलो स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रंची से स्टार्ट किया मैंने एंड उस टाइम पे मेरे जो जूनियर्स रहे हैं कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स के बैच के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे ना।
1: कैसा सपोर्ट?
2: उन्होंने काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह शेयर किया, खरीदा मुझसे काफी स्क्रंचीज। तो मेरे लिए वो काफी मोटिवेटिंग था उस टाइम पे ना। अगर आप कुछ सामान बना रहे हो या फिर कुछ आपने ला के रख दिया दुकान में, आपने दुकान भी खोली, कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं है, तो एक बहुत ज्यादा ना डीमोटिवेशन टाइप का हो जाता है आपके लिए। हाँ, लेकिन आपने कुछ स्टार्ट किया है एंड लोग आपको
1: अप्रिशिएट
2: कर रहे हैं, आपको आगे वो कर रहे हैं, फेमस टाइप का कर रहे हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके। लेकिन हाँ, वो काफी मेरे लिए उस टाइम पे मैटर करता था, उस टाइम पे अभी भी मैटर करता है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ एवांते का जर्नी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: सो जब ये स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल पढ़ाई वाला है एकदम, और ये जो आप काम कर रहे हो एवांते के अंदर वो एक क्रिएटिव साइट है आपका, तो उस टाइम पे घर वालों को ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हो, कॉलेज तो किसी और चीज की फीस हम दे रहे हैं और तुम जो चूज कर रही हो, काम कर रही हो, वो कुछ और ही है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस पे?
2: बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंट, बट मेरा ये है कि अगर मैंने कुछ चीज स्टार्ट किया है या फिर कुछ ठान लिया ना, फिर फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो करना है तो करना है, चाहे मैं रात के 2 बजे तक करूँ चाहे 3 बजे तक करूँ, और मॉर्निंग में उठ के फिर मुझे कॉलेज भी जाना पड़े ना 7 बजे, तो चलता है मेरे लिए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
1: बड़ी बिंदास था आपका जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, था
2: ये चीज माइंड में थी तो फिर करती गई। हाँ, पेरेंट्स बोलते थे कि कुछ जॉब वॉब का देख लो, बाकी साइड बाय साइड में अपना पढ़ रही थी उस टाइम पे, और कॉलेज भी फिर खत्म हो गया, और कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट का भी कुछ आया नहीं उस टाइम पे, तो एक तरह से ना माइंड में थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो रहा था वो साइड बाय साइड, बट एवांते मेरे लिए ना एक वो था खुद को हील करने का ना, हम किसी न किसी चीज के थ्रू खुद को हील करते हैं, कोई घूम के करता है ना, और तो मेरे लिए वो थी क्रिएटिविटी।
1: अच्छा,
2: तो उसी में मैं बिजी रहती थी, कभी उसका कंटेंट बनाने में, कभी उसको बनाने में उसी चीज को, या फिर उसको पिक्चर्स क्लिक करने में, फिर सोचने में कि अरे इसका क्या नाम रखना चाहिए, इस वाली स्क्रंची का इसको कैसे हम डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे रीच बढ़ाया जाए, तो माइंड में वो चलता रहता था। तो मैंने ज्यादा ना उस चीज को, जो चीज है नहीं उस चीज को मैंने ना ज्यादा उस टाइम पे सोचा नहीं कि जॉब नहीं है करके, तो इसी सोच के लेके मैं आगे बढ़ती गई, तो ऐसे ही अब 2 साल भी हो गए एवांते को।
1: हाँ, मतलब वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बात का दुख नहीं मनाया, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को टाइम दिया उस टाइम के लिए कि कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं तो करने दो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं। Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio.
1: कि जब आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े हमारे क्रिटिक्स बहुत सारे आते हैं इधर उधर से, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं, लेकिन कई लोगों को ना वो चीज तोड़ देती है.
2: Like मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रंची से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मार्केट में जाके फैब्रिक चूज करती थी. अगर आप कुछ अपने लिए लहंगा भी बना रहे हो या फिर नॉर्मल सूट या कुर्ती ले लो, तो आप कुछ फैब्रिक देख के लड़के को होता है ना, खुद को इमेजिन कर लेती ओके इसका ये वाला इस फैब्रिक का कि ओके इस फैब्रिक में और इस प्रिंट में और इस एम्ब्रॉयडरी में ये स्क्रंची बहुत अच्छी लगेगी.
1: एस्थेटिक सेंस.
2: हाँ, तो वो चीज था पहले से ना. बट सुनने में ये आता है कहीं से, पता लगता है कि ये ना बचे हुए कपड़ों का बनाती होगी ये लड़की, उन्हें पता भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं वांथे में चल क्या रहा है. बट बातें कैसे बनाएंगे ना फिर, अगर देख लेंगे तो. तो ये चीज सुनने में आती थी, तो लगता था कि भाई क्या ही, क्यों ही बोलना है ऐसे लोगों से. सोचने दो, उन्हें जो सोचना है, मैं जो कर रही हूँ मुझे

0: नेम है, मिनर्वा मैम, उनका नाम मिनर्वा है. तो उस टाइम पे मैंने उनको कोलैबोरेशन के लिए पूछा था, तो उन्होंने पेज वगैरह चेक किया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया. और उनके मतलब जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया तो काफ़ी फॉलोवर्स भी आए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज़ को ना, काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कोलैबोरेशन वाली रील पे. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना एक माइलस्टोन टाइप था उस टाइम पे. ओके, और उसके बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी होने लगी. यू नो फैमिली फ्रेंड्स जब कुछ भी गिफ्ट विफ्ट भी हो, छोटी मोटी चीज़ें वो मेरे से ही आके पैक करवा रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो मेरे लिए काफ़ी वो था, वो ओवरवेलमिंग था काफ़ी कि ओके नाउ इवांते इज देयर फर्स्ट चॉइस, आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है सही चल रही हूँ.
1: ओके. Walk Talk Radio. Tune in for a better life.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, वॉक टॉक रेडियो।
1: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हों, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप हंसकर मुश्किल का सामना करते हैं तो यार मुश्किल भी एक दिन शर्मा के भाग जाएगी।
0: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक।

0: Soft Radio.
1: आपने अभी कोलैबोरेशन की बात करी और अगर मैं बोलूं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपने आइडिया से एक स्टार्टअप किया है और सोच रहे हैं कि उसको एक उस जगह तक पहुंचाएं जहां तक वो चाहते हैं, तो सोशल मीडिया की जहां तक मैं बात करूं एंड क्योंकि आप एक यूथ हो तो आप बता सकते हो कि सोशल मीडिया कितना हमारे लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए खराब भी है और अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करना जाने, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है. आपका कैसे एक्सपीरियंस है?
2: आई से कोलैबोरेशन को लेके बोला ना आपने, लाइक उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, जैसे मैंने आपको मिनर्वा मैम का बताया, और भी है दो तीन जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो रील्स वगैरह शेयर करते हैं, पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, जिनकी ऑलरेडी मतलब कीज में है फॉलोवर्स. इस बीच ऐसी चीजें भी हुई है जब मैंने ऐसे गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया. वो भी पेड कोलैबोरेशन फर्स्ट और लास्ट टाइम था वो, जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत दिए, ठीक है, और पेड कोलैबोरेशन था, पैसे भी दिए, लेकिन ना उसमें एक फॉलोवर आया, ना उसमें कोई कुछ रिव्यू वगैरह इतना कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया. और वो भी चीज बार बार बार बार बोलने पे, एंड जब आप बार बार किसी को बोलते फिर वो बोलते हैं कि यू आर रेस्टलेस, व्हाई यू आर बीइंग सो रेस्टलेस. तो हम बोलते हैं ना, जैसे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, आई नॉट से कि वो बुरी है या वो, लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हो, आप उस चीज पे प्रोफेशनली उस चीज को डील कर रहे हो, तो भले वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, आप उस चीज को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको पेमेंट मिल चुकी है, तो आपको वो चीज भी उतनी ही श्रद्धा से करनी चाहिए जितनी आपने बाकी चीज को किया है. एंड वो चीज उन्होंने की नहीं, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए. तो ये चीज भी आई डोंट नो कि कितनी आनी चाहिए उस सोशल मीडिया में, लोगों को कैसे पता लगना चाहिए कि हाँ कौन फेक है, कौन ऑथेंटिक है, कौन रॉ है और कैसे कर रहा है अपनी चीजों को. सबका अपना अपना वे है, बट इन सब चीजों में बिजनेस ओनर्स को मैं यही बोलूंगी कि बहुत सोच समझ के स्टेप ले जब हम कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर्स कैसे आते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, एक टाइम पे एक वो हाइट पे भी चले जाते हैं कि बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट फिर वही ना, जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं,
1: हाँ.
2: बहुत ऊपर भी जाते हो तो फिर उसी हिसाब से नीचे भी आते हो, तो वो बैलेंस करना भी है. तो जब हम किसी पे स्पेंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन वगैरह में, तो सोच समझ के उतना आपको रीच आना भी चाहिए जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं.
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: Talk Talk Radio.
1: A lion will never have to tell you that he's the king of the jungle. The eagle will take its flight knowing it owns the sky. And the shark will go about casually in the ocean just making its presence. You know, friends, it's never that noise you should make that will prove your value and people will hear it. But it is the skill, it's a hardship, it's the work which you might be doing constantly and people are noticing it. You don't need to prove yourself to the other people who will always try to pull you down. But you need to continuously work on yourself. Walk on the road marked by you. That consistency and persistence is needed in your this journey. The success ultimately comes. People would follow you. People would praise you. But people would praise you for your hardship, your determination. So stop seeing here and there what people are thinking about your work, whether they're praising or pulling you down. Just go ahead.
2: हाय, मेरा नाम शुभ बिश्नोई है. मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो तीन चीजों की अगर हम बात करें, पेड़, पानी और फार्मिंग के लिए लैंड. तो पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, बिना पानी के कोई जिंदगी नहीं. और फूड की बात करें तो बिना फार्मिंग के कोई फूड नहीं. लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को नाला बनाया जा रहा है और खेतों पे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाई जा रही हैं. लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए. बिना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ना आगे कभी जिंदगी होगी, ना ये कभी कोई जानने के लिए बचेगा कि ह्यूमन रेस या फिर एनिमल रेस करके कोई होता था. अगर हम बात भी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो सिर्फ बातों तक या डिबेट्स तक ही सीमित रह जाती है. अगर हम बात करें कुओं की तो गाँव में जो कुएं होते थे उनको भर दिया जाता है और उनपे जमीन बना के उनपे कब्जा कर दिया जाता है. सारी नदियों में इतना कचरा, इतना इंडस्ट्री की फैक्ट्री का कुछ ना कुछ रसायन डाल के उनको हम नालों में कन्वर्ट कर देते हैं. और खेतों की तो बात ही क्या करें, वहां हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है. लेकिन ये बात गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग लगी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स निकाले और विलेजेस में वापस वेल्स या कुओं को वापस खोदना शुरू किया गया. और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, जहाँ पे वापस से कुएं खोदे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर टेबल कम हो रही है और लोगों को पानी की आगे फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. एक और अगर हम बात करें कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की तो वो माइनिंग की आती है. अब आप देखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनिंग होगी, चाहे वो कोल की हो चाहे क्रूड ऑयल की हो, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज और कहीं पे भी रिजर्व एरियाज में होती हैं. तो ये एक और बात ये होगी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. अगर माइनिंग होगी तो जंगल के पेड़ कटेंगे. जितनी भी हमारी माइनिंग के लिए डिगिंग की जाएगी, हमें जितनी भी हमारी मशीन्स लगी जाएंगी, वो किसी ना किसी कोल या पेट्रोल या डीजल या किसी ना किसी चीज़ पर चल रही होगी. उसके तहत हमें और पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, बर्निंग ऑफ ऑयल होगा. और साथ ही साथ जब हम इस क्रूड ऑयल को माइनिंग करके कुछ भी कहीं भी ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में उसे रिफाइन करने के लिए पोल्यूशन और होगा. और लास्ट में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, हम हर दिन ट्रैफिक में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को जाना होता है, वहाँ पे भी पोल्यूशन होगा. पोल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, पोल्यूशन हम सब कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनते हैं. अगर आप कहीं पे भी चाहे आप अपने उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखेंगे लोगों को एक ही ऑफिस में जाना होता है लेकिन वो फोर व्हीलर से एक फोर व्हीलर में एक व्यक्ति बैठा होता है. तो उससे क्या पोल्यूशन बढ़ता नहीं है? पार्किंग की दिक्कत आती है, हर किसी को गर्मियों में छाए में पार्किंग और सर्दियों में उनकी गाड़ी गर्म रहे तो धूप में पार्किंग चाहिए होती है. नेचुरल रिसोर्सेज की बातें सिर्फ बात ना रहे, हम इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट और बच्चों के फ्यूचर जनरेशन का इंपॉर्टेंट हमें दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना है. हम सब सोचते हैं कि हमें अपने घर को बचाना है, घर को साफ रखना है. तो सबसे पहला घर अगर आपको मानना है तो आपका सबसे पहला घर ये धरती माता है. ये धरती है मदर नेचर जिसे आप कहते हैं. आपका घर सिर्फ चार दीवारी तक सिमटा हुआ नहीं है. आप ये सोचिए कि आप किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो.
0: ये है वॉक टॉक रेडियो.
3: चलते रहिए, अपने रास्ते पर चलने में माहिर बन जाइए. या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे.
0: Tune in for a better life. Tune in for

0: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, बस में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, कहीं भी, कभी भी, क्या पता कौन हमसे किस बात पर बुरा व्यवहार करके चला जाए। तो जवाब में हम क्या करें? दोस्त अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। तो बुरे के लिए हम भी क्यों बुरा बने। आप जैसे हैं वैसे ही रहे और ऐसे ही बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अगर जिस दिन आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आपने लाइफ को जीना छोड़ दिया। आपकी लाइफ में आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एक बार जब आप दूसरों को खुद से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो आप दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे। आपको आपके पास जो भी है आप खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहोगे, जिसके चलते आप कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, तो फिर रिमोट भी आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना या फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो।
1: Walk Talk Radio। नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, जॉइंट फैमिली। तो हिंदुस्तान बहुत चीजों के लिए जाना जाता था, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण चीजें थी हमारी, वेल्थ, हेल्थ और फैमिली। जब ब्रिटिशर्स या इन्वेडर्स आए, वो हमें लूट के, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूट के चले गए, जहाँ पे हमारी वेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारी हेल्थ थी, हमारी आयुर्वेद और योगा, जो पूरे वर्ल्ड या पूरे विश्व में बहुत आज भी प्रसिद्ध है, उसको खत्म करने के लिए हमें, जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी इंग्लिश दवाइयां हमारे ऊपर थोपी गई। और तीसरी चीज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फैमिली, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज, और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर की सोच डाली जा रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए पांच लोग हैं, तीन भाई और दो बहनें। अब उनके हस्बैंड्स भी होंगे, वाइफ्स भी होंगी, और उनके बच्चे भी होंगे, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये 25-30 या उससे आगे का, ज्यादा का एक परिवार बन जाता था। अब हर एक व्यक्ति की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी एक ना एक व्यक्ति से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, चाहे वो भाई की बहन से हो, चाहे एक बच्चे की ताऊजी से या बुआ से या चाचा से, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी और खूबसूरत होती थी, जहाँ पे वो सब कुछ खुल के शेयर कर देते थे। खूबसूरती तो जॉइंट फैमिली की एक और है, वो कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सबके लिए इक्वल होता था, कोई अलग नहीं, कोई अपना नहीं, सब अपने होते थे, सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे। अगर घर में शादी भी होती थी तो कुछ ना कुछ करके शादी इतने प्यार और आराम से निपटती थी कि किसी एक व्यक्ति पे बोझ ही नहीं आता था। लेकिन आज वही जॉइंट फैमिली टूटने लग गई है, फैमिली रिश्तेदारी में बदल गई है, जो सिर्फ आते हैं और थोड़ा बहुत काम करा के चले जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति को इतना मजबूत रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम वो कॉन्फिडेंस और वो जितना भी हमारी स्ट्रेंथ थी वो कहीं जाने ना दे। तो क्या किया जाए कि अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली फिर से बनाया जाए? तो मेरा मानना है कि महीने में 15 दिन में एक डिनर क्यों ना किया जाए, जगह बैठकर एक किसी के हर दिन घर चूज करके वहां पे जाया जाए, डिनर किया जाए, बॉन्डिंग की जाए, ताकि आपको शेयर करने के लिए आपके भाई बहन बने। दो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: वॉक टॉक रेडियो। कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे कि आप सभी खुश रहो। तो खुशी है क्या? खुशी एक मन में होने वाली एक सुखद अनुभूति है, एक फीलिंग है जिसमें आप बस सुखी हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो सुखी नहीं था। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। और दूसरी ओर आप दूसरे पहलू को देखें तो हमारे प्रभु श्री राम जो राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गए और एक छोटी सी कुटिया में अपने एक भाई के साथ वन में रहते थे। तो खुशी कोई चीज नहीं है जो आप कहीं से लेके आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरे को खुश रहना है, मैं क्या करूं, मैं खुश कैसे रहूं? तो खुशी एक चीज नहीं है कि आप जाके दुकान से ले आए या मार्केट से ले आए, या फिर ये कोई लिविंग की स्टाइल नहीं है। खुशी तो तब मिलती है जब आप सुखी हैं, टेंशन नहीं है लाइफ में, जैसे हैं जो है उसके साथ आप सैटिस्फाइड है। था मैंने ये कहीं सुना था कि केमिस्ट्री में जैसे हमें पढ़ाया जाता था कि जब एटम या न्यूक्लियस कुछ टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरीके से जब आप दुखी होते हैं, आप टूटते हैं कहीं से, आपका मन टूटता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने आप को थैंकफुल करिए कि आपकी जो एनर्जी है इसको आप सही जगह डाल के आप खुशी के माध्यम या खुशी के रास्ते जा सकते हैं। ये एनर्जी को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुश होता है ना, उसकी अलग ही दुनिया होती है, वो उसी में मग्न होता है। अब एक स्टूडेंट या यूथ की लाइफ में एग्जाम्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो आपने पूरी मेहनत की, आप खुशी से मेहनत कीजिए। और 1% को अगर जो चीज आप जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो ये सोचिए कि आपका प्रायोरिटी क्या थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुशियां थी। आपके पेरेंट्स के लिए भी आपका सक्सेसफुल होना जरूरी तो है, परंतु वो चाहते हैं कि आप खुश रहिए, वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो आप ये जान चुके हैं कि खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब छोड़ के आप खुशी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके 10 दरवाजे और खुलेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप खुश हैं? क्या आपको खुशियां ढूंढनी जरूरी है? जो आपकी लाइफ जैसे है क्या उसमें सेटिस्फाइड नहीं है? जो लोगों को चीजें नहीं मिलती क्या आपके पास वो नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर अभी अपने मन में जरूर ढूंढेंगे, और इसका उत्तर आज जब भी आप ये सुन रहे हैं आज जरूर ढूंढिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो। किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहां बन रहा है। तैयारी ही सफलता है। Mock Talk Radio, tune in for a better life.

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हम बात करने वाले हैं राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। आप ज्यादा नहीं, बस 20 साल पहले देखिए, जब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा फील होता था, क्योंकि जब फोन नहीं थे वो अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनकी अलग हॉबीज होती थी। लेकिन जब से फोन आया है, जब से हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है, तब से हमें अनयूजफुल, फेक, मोल्डेड और फैब्रिकेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती, और जिसमें हमें ज्यादातर हमारी जो मेन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें छुपा दिया जाता है। मेरा मानना है कि अगर सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, अगर इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करें तो ये एक बीमारी है जो ड्रग से भी खतरनाक है। एक इंसान पूरे दिन सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल कर सकता है, बिना कुछ खाए, एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, बिना कुछ कंस्ट्रक्टिव किए वो बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकता है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दें और वो पूरे दिन बस उस मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप शाम को रात में उससे जाके पूछिए कि आज आपने पूरे दिन फोन यूज किया, आपने आज क्या सीखा, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा कि कुछ नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का जहाँ पे हमें सही उपयोग करना था, वहां पे हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट में सिर्फ गलत प्रभाव ही हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी की पहले से और आज में बहुत सारी चीजों में सुधार भी लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एजुकेशन में बहुत हेल्प किया है। नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, आपके पास सूचना पहुंच सकती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सरकार लोगों के पास आराम से पहुंच सकती है, आपको सही गलत के बारे में बता सकते, डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आसान हो गया है। इसी का अगर हम उदाहरण लें तो पहले अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करानी होती थी तो आप जाने के लिए तो यहां से कहीं, जहां पे आप हैं वहां से करा सकते थे, लेकिन लौटने की रिजर्वेशन के लिए आपको एक चिट्ठी भेजनी होती थी, जहां से आपको लौटने की रिजर्वेशन करानी है वहां पे वो एक ट्रेन से जाती थी, दो दिन वहां पे अप्रूव होती थी, फिर एक ट्रेन से वापस आती थी। लेकिन आज आप विद इन सेकेंड्स आप बुक भी कर लेते हैं और उसे कैंसिल भी कर लेते हैं। आपको एक व्यक्ति, आपके माता पिता आपको सही दिशा और सही रोड दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। ये आपको चूज करना होगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है आज के लिए और कल के लिए, क्या आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके सही उपयोग के माध्यम से आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप नेशन को कुछ वापस दे रहे हैं, जितना भी नेशन ने आपको दिया है क्या आप उसे घूम फिर के नेशन को भी कुछ दे रहे हैं, इस बात पे जरूर सोचिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

रेडियो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी क्या रजा है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि खुदा तुमसे खुद पूछे, तुम क्या चाहते हो भाई, क्या दूं तुम्हें।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन, जिसे आप पलायन भी जानते हैं। बाकी नहीं, हम अपने उत्तराखंड की बात करें जो 2000 में बनाया गया था। इसमें बहुत सारे रीजंस थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन उसमें से दो तीन रीजन ये थे कि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट रहेगा, उसमें डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। लेकिन आज शहरी जिंदगी के आकर्षित होकर जो हमारे युवक हैं और अन्य लोग हैं उत्तराखंड के, वो पहाड़ छोड़कर शहरी जिंदगी जीने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। वो दिल्ली जाते हैं, अलग शहरों में जाते हैं और वहां जाते ही उनके सपने टूट जाते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है, रोजगार के लिए छोटे मोटे उन्हें काम करने पड़ते हैं, वो लौट के नहीं आते हैं, जिंदगी में वैसे ही निकल जाते हैं। पहाड़ों पर होते हैं वो ये सोचते हैं कि शहर में उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वहां जाके उनकी कमाई अच्छी होगी। लेकिन वो एक चीज ये भूल जाते हैं कि शहरी जिंदगी में शहरी खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, तो जितना वो पहाड़ों पे उन्हें मिल रहा था उतना ही उन्हें शहर में भी मिलता था। सरकार ने बहुत सारी नीतियां निकाली हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों के लिए, होम स्टे जैसी चीजें, छोटी मोटी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने, उन्हें प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रयास करी हैं। अगर आप उत्तराखंड में ही रहें और उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में क्या कुछ नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उत्तराखंड में। केदारनाथ हमारे पास है, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे पास हैं, क्योंकि पहाड़ों पर आप पे खुद का घर है, खुद की जमीन है, खेती है, अलग तरीके के रिसोर्स हैं, दोस्त हैं, एक हिम्मत बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन तब भी हमें वो शहरी जिंदगी, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे दिमाग में बहुत पहले डाल दिया गया था, वो अभी तक निकला नहीं है। हमें अभी भी दिखावटी रूप में शहरी जिंदगी जाना है ताकि हम बोल सकें कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ। लेकिन वो दुख और जो तकलीफें शहर के व्यक्ति को प्लान करके जो सहनी पड़ती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो क्यों ना हम अपने यूथ को और आसपास जितने भी, उन सभी को समझाएं। आप खुद ये सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है उत्तराखंड में। इसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और देवभूमि जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, तो क्या देवों का आशीर्वाद नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इको पार्क स्टार्ट कर सकते हैं, होम स्टेज हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, अन्य चीजें हैं, आयुर्वेदों से जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो आप इस बारे में सोचिए कि क्या पलायन करना जरूरी है, क्या उत्तराखंड में रोजगार नहीं बनाया जा सकता, नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज जागरूक नहीं किए जा सकते। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय गाइस, माय नेम इज़ काव्या और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। आई थिंक मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ। बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है। सो दैट इज़ वॉट आई एम। एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी। आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस। आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा। दैट्स अबाउट मी।

वो कहते हैं ना, जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं उनके सपने भी सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था, शायद वो वक्त ही गलत था।

0: Talk Radio.
1: अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। आपका स्वभाव ही आपको लोगों के करीब लेकर आता है और आपका स्वभाव ही आपको लोगों से दूर लेकर जाता है। गौरतलब करिए कि आपके होने से क्या लोगों में खुशी होती है, उनमें हैप्पीनेस आती है, लोग आप लोगों से चहक के महक के बात करना चाहते हैं या आपको देख के इग्नोर करते हैं, आपको देख के दूर चले जाते हैं। हमारी जीवन की हर कड़ी हमारे खुद के स्वभाव से जुड़ी हुई है। अपने स्वभाव को चेक करें और जब जहां जाएं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार से खुशियां बांटें।
0: Walk Talk Radio.

आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगी 2009 के आसपास शुरू हुआ। हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं, एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था। तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी। तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली, एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स, एंड मी बींग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई फादर हैज 10 other brothers, sisters. So we were lots of kids, you know, in Rajasthan. So she would always have this and she would give something from her potli to kids. So I was like, okay, craft potli. And back then, wo domain mujhe mil gaya. Toh wo tab se raha. But uske baare mein, I did nothing. For 10 years, I kept working. And iski shuruaat aise hui ki pandemic aaya. And I think hum sabhi ne apne aap ke baare mein thoda kuch jana. I also understood ki jo main rural travel kar rahi thi for my fun, with the job on weekends, वो really travel नहीं था। मैं वापस आती थी अपने comfort zone में, job करती थी, salary लेती थी। It was pandemic that made me realize कि if I have a passion, then मुझे उसका test लेना चाहिए कि वो passion really है भी या नहीं। Can I last that? So I took this massive journey. It's called Kavya on Quest. थोड़ा सा अच्छा उसका Google traction है, आप देखिएगा।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

मैं शेयर करना चाहूँगी मेरा एंट्री इनटू विलेज, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग ऐसा सोचते थे. अभी मुझे आई थिंक मैं अगस्त 2021 में शिफ्ट हुई थी फुल टाइम इनटू अ फॉरेस्ट विलेज. तो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि ये लड़की मिट्टी के घर में रहती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. बट बहुत टाइम लगा मुझे, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो भी आज हम काम कर रहे हैं बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू बिग स्टार्टअप्स. कई लोग मुझसे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक साल में क्या किया. मैं देखती हूँ कि यू नो वन ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स पिवट कर जाते हैं, बट हम लोगों का ग्रोथ हैज़ बीन वेरी स्लो एंड माइंडफुल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस उन सभी लोगों के लिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखते हैं, कि आई थिंक स्लो ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया. तो मैं ये बताना चाहूँगी ये इंसिडेंट कि मुझे 6 महीने लगे टू स्टार्ट माई फर्स्ट प्रोडक्ट. क्योंकि हो सकता है कि पहले आप किसी नोशन को लेके किसी गांव में आओ, वो चीज़ आपके लिए काम ही ना करे. पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी ज्वेलरी पे काम करूंगी, बट वो नहीं वर्क किया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं टर्मरिक पे काम करूंगी, यू नो. एंड उसके बावजूद भी लोगों गांव में जनरली भरोसा धीरे धीरे आता है, और जब एक बार आ जाता है फिर वो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे. तो फॉर मी दैट टुक अ लिटिल टाइम. मुझे 6 मंथ्स लगा टू ब्रेक दैट

आइस बोले या हम केमिस्ट्री बोले, एंड जब वो 6 महीने का पीरियड पास हुआ एंड इट वेंट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, चाहे आप टैटू कह लीजिए मेरी बॉडी पे या आप जितने भी फेस्टिवल्स या आप मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखेंगे, तो आई थिंक इट टुक मी अ वाइल, बट जब वो एक बार वो हो गया देन इट वॉज अ इजी राइड फॉर मी। आई

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी कमियों को ही दर्शाएंगे। हो सकता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया का तो काम ही है आपको बार बार गिराना, और हमारा काम है ढीठ बनकर बार बार उठ खड़ा होना। इसलिए जब जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए, तो याद करिए अपनी उन तमाम खूबियों को जिनको आप जानते हैं, और करते रहिए कोशिश लगातार, और बनते रहिए बेहतर हर बार।
0: Tune in for a better life. Tune in for-

tune in for a better life.

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा। और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू दीक्षा चाटवाल इन वॉक टॉक रेडियो।
1: थैंक यू सो मच। वाओ, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर एंड हैव अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू गाइस।
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म्स जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ठीक वैसे ही बुरे के बाद एक अच्छा वक्त भी तो आता है। सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हम इतना घबरा जाते हैं मुश्किलों को देखकर। हम लड़ते नहीं है, लड़ना नहीं चाहते। देखिए, लाइफ को जीना है ना तो वॉरियर बनना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जब तक हम खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी मुश्किलों का हमारा फायदा उठाते

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोका कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और जीएसके

0: कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं. मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है. सो यस एंड या.
1: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
0: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है. मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू. आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस. इट्स लवली.
1: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
0: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे. मैं बहुत ज़्यादा young थी उस time, and my dad never like took me seriously कि आ रे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, auditions वगैरह दोगी, you know, नहीं जाना. तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए. तो आज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से. तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब. एंड मैं भूल गई अपना यू नो एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब. बट
1: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को, हाँ, तो कैसे भी पहुंच जाता है.
0: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल. तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है. सो इट इज लाइक दैट. बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती. वो कभी नहीं होती है. सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स. I don't know, it's just let life happen to you.

0: रेडियो।
1: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: सुनता नहीं मैं ज्यादा बोले जो जहाँ, मेरे दिल में बड़ी है शांति।

0: So you work in Bombay, but you are a Dunite girl. So quickly answer Bombay and or Dehradun and why?
1: Always Dehradun. I think मैंने काफी travel किया है और travel करके मुझे यही पता चला कि देहरादून जैसी city इस दुनिया में नहीं है. I think देहरादून is an emotion and हर चीज मैं देहरादून की मिस करती हूँ जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. देयर इज नथिंग व्हिच आई डू नॉट मिस अबाउट देहरादून.
0: जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करती हैं देहरादून की?
1: फर्स्ट इज मोमोज. आई लव मोमोज. मतलब एक तो बॉम्बे का खाना इतना खास नहीं है. बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो यार हमें चाहिए थोड़ा स्पाइसी और बटर चिकन प्रॉपरली, यू नो, मोमोज की चटनी, ये वो सब कुछ. तो आई मिस द फूड, आई मिस द वेदर, I miss the people from Dehradun because यहाँ पे वो simplicity है लोगों के अंदर अभी भी लोग इतने grounded हैं. मतलब it's just I miss that thing a lot from Dehradun.
0: और आपको क्या लगता है एक actor के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी personal और professional life को एक साथ manage करना?
1: I think it is difficult. It is difficult for a lot of people. मतलब वो आपकी वायरिंग पे डिपेंड करता है, हाउ यू बेसिकली परसीव थिंग्स. बट बॉम्बे में सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट है, सब लोग भाग रहे हैं, लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू जस्ट लूज इट, आप खो देते हो खुद को भी. हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ हाउ यू परसीव थिंग्स एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ all these things that you need to keep your personal life separate and your professional life separate because har cheez aapke kaam ke aas pass revolve nahi karti. Everything doesn't revolve around your work. You have a personal life also which is separate and just enjoy it. I mean, theek hai
2: yaar, kahan ho? I've been trying your number for past 3 days. Tumse gana nahi ban raha to mana kar do, but we don't have any more time to waste. Okay, please complete this as soon as possible.

0: रेडियो।
1: काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: सो व्हाट इज दैट फीलिंग जब आप वापस आती है मुंबई से या बॉम्बे से काम करके देहरादून आ रही होती हैं, तो कैसा लगता है आपको?
1: मतलब आई थिंक दैट इज वन फीलिंग विच आई लिटरली लिव फॉर, जो मैं ये चीजें जो मैं कर रही हूँ वो मैं इसी फीलिंग के लिए कर रही हूँ, इज दैट कि जब मैं शूट के बाद जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ या मैं अपने बॉम्बे वाले घर या यहाँ पे आ रही होती हूँ, आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग विच इज मतलब एक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि यार आज कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ, यू नो, लाइक आई लव व्हाट आई डू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक होम डूइंग दैट. तो दैट वो फीलिंग के लिए आई लिव फॉर दैट फीलिंग. सो आई थिंक वही है.
0: और बहुत कम लोग होते हैं जो ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो उसी में रह जाते हैं, यार काश मैं ये बन जाता या काश मैं वो कर लेता.
1: एग्जैक्टली.
0: लेकिन आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर, अरमान मलिक, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जिनको आपने पहले कभी टीवी पे देखा है या सुना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
1: वो एक्सपीरियंस मतलब जब मुझे व्हेन आई गेट दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत मुझे ऐसा ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हुई कि यार आज मैं ओ माय गॉड इनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ. बट द एक्सपीरियंस द फीलिंग आपको वो तभी आती है जब आप सेट पे उनके साथ होते हो, देन यू गेट दैट कि यार ओके आई एम एक्चुअली वर्किंग फॉर दीज, इट इज हैपनिंग, आई एम एक्चुअली वर्किंग विद दीज पीपल. बट व्हेन आई वर्क्ड विद एम एस धोनी, आई डिड दिस एड, ओ माय गॉड, आई थिंक ही इज सो स्वीट,
0: कैप्टन कूल,
1: वेरी लाइक हम्बल एंड ग्राउंडेड, एंड ही इज टॉकिंग टू मी, इज लाइक हाँ, इवन माई वाइफ इज ऑल्सो फ्रॉम देहरादून, सो आई लाइक हाँ हाँ आई एम ऑल्सो फ्रॉम देहरादून, इज जस्ट लाइक, तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ यार, लाइक इज सच अ,
0: ही इज एम एस धोनी, और एम एस धोनी होके भी इतना काम और
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
0: आपने अभी ट्रैवलिंग की बात भी करी, आप अपने काम के सिलसिले से ट्रैवल करती हैं, और जब इंडिगो में थी तब भी ट्रैवलिंग होती थी, तो व्हेन यू वर्क इन सच अ फील्ड, तो हाउ डज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज इवॉल्व्स यू एज अ पर्सन?
1: इट डज इवॉल्व यू, एंड आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन थिंग, के मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा आप हम सबको ट्रैवल करना चाहिए. मतलब आप जितना भी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा आप अपना 20-30% पैसा अलग करके, वी ऑल शुड ट्रैवल. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच विल इवॉल्व यू इंटू अ डिफरेंट ह्यूमन बींग. सो सर्टन थिंग्स जो मैंने लाइफ में अडेप्ट करी है वो ट्रैवलिंग से ही करी है. आप जिस तरीके के लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, इट्स सो डाइवर्स आउट देयर, सो या इट विल चेंज यू समवेयर.
0: मैंने कहीं पे पढ़ा था आपने एक गाना लिखा भी, आप लिखती भी हैं.
1: हाँ.
0: तो उस गाने की अगर एक दो लाइन अगर आप गा दें, बता ही दें मतलब कि
1: हाँ हाँ मैंने गाने लिखे हैं. एक्चुअली देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज वन ऑफ द रेनाउंड लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उनके साथ मैंने काम किया है. बट एक गाना है जिसमें मुझे एक्चुअली एज अ लिरिसिस्ट मेरा नाम आया था, विच इज कॉल्ड किलर हसीना फॉर टी सीरीज, एंड दिस वन वॉज फॉर अर्जुन काननगू एंड तुलसी कुमार. सो मी एंड द अदर पर्सन वायु, हम दोनों ने साथ में ये गाना लिखा था. तो नॉट जस्ट दिस, आई डू राइट स्टोरीज ऑल्सो, आई एम राइट नाउ लर्निंग कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग ऑल्सो. सो बेसिकली आई एम गोना बी वर्किंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड कैंपेन्स. तो आई जस्ट वॉन्ट टू एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर
0: क्रिएटिविटी होनी चाहिए.
1: हाँ मतलब और जगह भी मुझे एक्सप्लोर करना है. सो इस वजह से अभी मैं कॉपी राइटिंग में भी घुस रही हूँ. सो बेसिकली आई बी अ कॉपी राइटर, सर्टिफाइड कॉपी राइटर नेक्स्ट मंथ. तो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स खत्म हो रहा है.
0: अच्छा
1: या.

इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ कुछ चुनिंदा घरों में ही होती है। आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं सबसे आगे, फिर चाहे वो दूसरे का नुकसान पहुंचा के क्यों ना मिले। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म में खुशी मिल सकती है, लेकिन आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें खुद भुगतने पड़ते हैं।

0: Walk Talk Radio.
1: किलर हसीना की कोई हुक लाइन या दो लाइंस कुछ भी।
2: किलर हसीना हसीना आ जान ले ले किलर हसीना
1: तो ये डांस और पेपी टाइप का सॉन्ग होगा।
2: इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड नंबर, मतलब ये तो बहुत मजा भी आता एक्चुअली इसको लिखने में, बट प्रॉपर बॉलीवुड नंबर है ये।
1: तो ये लिखने की जो जर्नी है ये भी बहुत पहले से ही है या अभी साथ साथ आप लिखने लगी हैं?
2: ये बहुत पहले से है एक्चुअली, बचपन से है, पर लेकिन अब मैंने इस पे प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है, मतलब मुझे उस पर भी काम करना है। दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो लाइक एक एड को, मैंने एड्स वैसे बहुत सारे किए हुए हैं एज एन एक्टर, बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स ऑल्सो।
1: बनता कैसे,
2: बनता कैसे, लिखते कैसे हैं, यू नो प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो वन डे एड्स और फिल्म्स व्हाटसोएवर, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग।
1: बहुत ही अच्छी बात है कि सीखने की चाह हर चीज में है।
2: हाँ।
1: किसी एक चीज को आप स्टिक नहीं कर रही हैं।

0: रेडियो।
1: वो कहते हैं ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है, फिर चाहे हम अपनी खुशियां बांटें, अपना गम बांटें, खाने की चीजें बांटें या कुछ भी चीज शेयर करें, जब हम किसी के साथ कुछ बांटते हैं तो उस इंसान के चेहरे पे एक स्माइल आती है और फिर वो भी आपके साथ चीजें बांटना शुरू करता है। रिश्ते गहरे होते हैं, तो यार जब भी मौका लगे अपनी फीलिंग्स, अपना लंच, अपनी खुशियां शेयर करके देखो, अच्छा लगता है।

0: वॉक टॉक
1: मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। बोला भी गया है, मीठा मीठा बोले सबसे, सबसे करे हम प्यार। अगर आप सबसे अच्छे से व्यवहार करोगे तो आप जरूर सबके चहेते बन जाओगे।

जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी गप देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो, ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक
2: रेडियो। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा वेपन यानी हथियार क्या है, तो हो सकता है आप कहें कि न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर आपके दिमाग में दुनिया को बदलने का विजन है, आपका मन चाहता है कि आप कई बातों में दुनिया को बदल कर रख दे, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अगर हमें दुनिया बदलनी है, मेंटालिटी बदलनी है, अपने समाज को बदलना है, अपनी सोसाइटी को बदलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन हर एक तक पहुंच जाए। यानी अगर हम एजुकेटेड हैं, तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करके दुनिया को सही दिशा में बदल सकते हैं।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: कभी कभी ना हम दूसरों की बातें दिल पे ले लेते हैं, अरे यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया एक्सेट्रा। हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और यही चीज हमें लाइफ में काफी डिस्ट्रैक्ट करती है। हम अपना सारा काम छोड़कर दूसरों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। सोचो हम खुद के साथ, खुद की लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर जरा गौर करना। हमेशा जो है दूसरों की बातें दिल पर लेने की बजाय एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करो, क्योंकि वक्त जब एक बार चला जाता ना दोस्त, दोबारा वापस नहीं आता, उसके बाद सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए पछताने से अच्छा है खुद को टाइम दो।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
1: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो। कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें कभी छोटी छोटी परेशानियों या हार से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही हो रहा है। इसलिए हर वक्त हर हाल में हमें जीतने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। ऐसी और बातों के लिए सुनते रहे फॉक टॉक रेडियो।

0: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती? लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को। ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। कोशिश तो करके देखिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
0: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio.
1: फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके, समझ रहे हैं आप?

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कमाना क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप किसी बहुत महंगी, किसी लग्जरियस कार का नाम लेंगे और कहेंगे कि इसे कमाना बहुत मुश्किल है। शायद हो सकता है कि आप बहुत बड़े घर का नाम ले लें और कहेंगे कि उस बंगलों को खरीदना बेहद ही मुश्किल है। या हो सकता है कि आप ये कहें कि चांद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर हम अपनी हकीकत की दुनिया में वापस लौटे, तो शायद आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगा है किसी का विश्वास जीतना, जिसे हम खरीद तक नहीं सकते। तो यदि जीतना है किसी को, तो किसी का भरोसा जीतिए, इंसान को जीतिए, बाकी के काम तो आपके बनते ही चले जाएंगे। ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ये है वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा। और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatwal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow. It's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द कार

0: था कि मुझे YouTube ही करना है और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

आसपास शुरू हुआ। हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं, एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था। तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब

बंगाल में कहीं पे जाते हैं या छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा. नाउ उड़ीसा बीइंग वेरी वेल कनेक्टेड बाय एयर एंड जनरली सिंस आई आल्सो लिव सोलो आई फेल्ट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू काइंड ऑफ रीलोकेट. सो आई रीलोकेटेड टू कोरापुट एंड स्टार्टेड विद समथिंग रियली स्मॉल. क्राफ्टपोटली स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस विद अ मियर टर्मरिक बार. That has now become a case study with the Tata Institute. Months of me living from August 21, when I moved to the village, till about, I would say, October or November 21. Adivasi haats on weekly basis. Ghoomti rehti thi. Un logon ko lagta tha, ye kaun si ladki hai, kya kar rahi hai. Tab maine discover kiya ki Eastern Ghats mein bahut zyada haldi ugta hai. Which is not getting utilized. The learning that I was having with my jobs, with a fashion brand that I was working.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: इस बेहिसाब जिंदगी में हिसाब देना भी जरूरी है, गैरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करना भी जरूरी है। माना कि हालात कभी कभी बेकाबू से हो जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और कुछ राहों में छूट जाते हैं। कौन सही है, कौन गलत है,

0: मैं तो थक ही गया।
1: अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं सिर्फ उनकी आवाज निकाल रहा हूँ, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि ये आवाज निकाल के ना मैं कुछ कुछ उनके आसपास पहुंच जाता हूँ। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ कहानी वाला राजा। मेरे शो कहानी वाला में मैं कहानी आपके लिए लेकर आता हूँ और बच्चन साहब के

आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत। शो चल रहा है कहानी वाला, और अब जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये उस सिचुएशन की है जब पैनिक अटैक आता है ना, तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। हम यहाँ वहाँ हेडलेस चिकन की तरह घूमते तो रहते हैं, लेकिन वो डेडलाइन कैसे मीट करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिलता। तो उसे लेकर मैं कहानी लाया हूं। ये कहानी एक किसान की कहानी, किसान की घड़ी की कहानी, सुनिए। तो एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास जो अनाज की कोठी थी उसमें काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने, जब पहली बार वो खेत पर हल चलाने आया था, जब उसने पहली बार अच्छा काम करके दिखाया था, तो पिताजी ने खुश होकर वो घड़ी खरीद के उसे दी थी। जब किसान को वो घड़ी मिली थी ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उस जमाने में घड़ी एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, हर एक के हाथ में नहीं होती थी। जिसके हाथ में है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये बात वो घड़ी साबित कर देती थी। घड़ी को लेकर एक छोटा सा किस्सा है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे, दोनों ने हाथ में घड़ी पहनी थी। तो एक के हाथ में एक मामूली सी घड़ी थी, दूसरे के हाथ में एक बहुत स्टाइलिश ब्रांडेड घड़ी। तो दूसरे ने, जो दोस्त था जिसने मामूली घड़ी पहनी थी, उसने मजाक में कहा कि यार देख, मेरी 200 रुपए की है, तेरी 2000 की, लेकिन वक्त तो सेम बताती है। तो जिसकी 2000 की घड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो घड़ी ये बता रही है कि तेरा वक्त कैसा चल रहा है, और ये घड़ी ये बता रही है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है। सोच सोच का फर्क है। वापस आते हैं हमारी किसान की घड़ी पर। तो किसान की वो जो बहुत ही खास घड़ी थी, जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी, उसके पापा ने, वो खो गई। और उसका बड़ा अटैचमेंट था उस घड़ी से, उस स्टेटस सिंबल के साथ साथ में उसके पापा की निशानी भी थी। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, उस कोठी का हर कोना कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। वहां बहुत सारा अनाज था, बोरियां थी, एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा था, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिरकार वो बिल्कुल निराश हो गया और कोठी के बाहर आ गया। वहां देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिताजी की वो घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने कहा कि जो घड़ी ढूंढ देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इनाम का लालच था तो बच्चे लगे घड़ी ढूंढ। कोठी के अंदर जाकर बच्चों ने घड़ी ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दी। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की उम्मीद खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वो कोठरी में उदास बैठा रहा। तभी एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से बोला कि वो एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करेगा। किसान ने कहा ढूंढ लो, पर अब मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो किसान को जाने की जल्दी भी थी। बच्चा जो था वो कोठी के अंदर गया, और कुछ देर बाद वो अकेला ही था उस कोठी में। उस वक्त कोठी बंद की अंधेरे में, कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ, और उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे ढूंढ पाए इसे, जब कोई और बच्चा नहीं ढूंढ पाया, मैं भी नहीं ढूंढ पाया, तो तुम्हें कैसे मिली। पूछने पर बच्चे ने कहा कि कोठी के अंदर जाकर ना वो एकदम चुपचाप अंधेरे में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया, और बस ध्यान लगाकर सुनने लगा। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे उसका इंतजार कर रहा था, और आखिर वो सुनाई दी। उसी डायरेक्शन में ढूंढा तो पता चला कि अनाज का एक बोरा था, उस बोरे के पीछे की तरफ एक आला था, एक शेल्फ। उस शेल्फ में वो घड़ी पहुंच गई थी किसी तरह से।

तो इसी के साथ अनसुने किसे शो की हो चुकी शुरुआत। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से आपके अंदर इतनी गहराई, इतनी पॉजिटिव वाइब्स भर दी जाए कि जिंदगी में कुछ भी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आपके

हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली थी। इस तरह से प्रकाश पादुकोणे के बाद इस जीत को हासिल करने वाले वो सेकेंड इंडियन बन गए थे। मतलब आप सोचो, वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो गया है और आप भारत में दूसरे नंबर पर हो। पहले नंबर पर प्रकाश पादुकोण थे और 1980 में उन्होंने ये जीत हासिल कर ली थी प्रकाश पादुकोणे ने। और उसके बाद 2001 में नाम आया पुलेला गोप। उन्हें 2001 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था उसके बाद, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण उनके खेल पर बहुत इफेक्ट पड़ा और 2003 में उनकी रैंकिंग गिरकर 126 पर आ गई थी। 2005 में उन्हें फिर से सम्मानित किया गया था। उन सबके बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, पर अभी ये बता देती हूँ कि गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी चलाते हैं। अब वो एक जाने माने कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है। और उनके जो प्लेयर्स हैं वो आज भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। उन प्लेयर्स का नाम आप जानते हैं? आई एम श्योर जानते होंगे, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। इन दोनों की अगर कोचिंग की बात की जाए तो वो पुलेला

उन्हें लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन फिर समझ आया कि उनकी बॉडी पे इतना वेट पड़ रहा है और वो एवलांच के नीचे दब गई हैं। एक पल के लिए उन्होंने मान लिया कि अब बच पाना मुश्किल है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके टेंट पार्टनर के पास नाइफ था और नाइफ के कारण दोनों बच गए। अपनी जान बचाकर उन्होंने अपने साथ वालों को भी वहां से निकाला। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था यह सफर। माउंटेनियरिंग बहुत ब्रेवरी स्पोर्ट है और छोटे से गांव से आई हमारी आज की चैंपियन ने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ लाइफ के भी एवरेस्ट का सामना किया और पद्मश्री

छोटी बात से डरे, उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नते भी काफी, जन्नत है जहाँ की, तू अमर रहे सदा ही। बातें बाकी सफर में काटे काफी, गम को हम बांटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी। क्यों खुश होता तेरे

बात है 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स की। सबकी नजरें थी ट्रैक पे भागते हुए खिलाड़ियों पर और उन्हीं खिलाड़ियों में भाग रही थी हिंदुस्तान की बेटी, जिसको उस समय शायद ही कोई जानता था, या यूं कहें कि शायद ही किसी को पता था कि ऐसी कोई लड़की भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करने भी गई है। रेस खत्म होते ही इतिहास रचने की खुशी मनाती हुई और भारत का नाम ऊंचा करने वाली उस चैंपियन की बात कर रही हूँ मैं आज आपके साथ कविता, और शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, जहां मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूं दुनिया के ऐसे दमदार चैंपियंस की कहानियां, जिन्होंने अपने सपनों के सामने दुनिया की किसी भी मुश्किल को कभी ना आने दिया और मिसाल बने हम सबके लिए अपने जोश और जुनून से। आज हम शो में बात करेंगे भारत के लिए 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड लाकर इतिहास रचने वाली हिमा दास की। अब तक हिमा दास कई सारे मेडल्स देश के लिए ला चुकी हैं और ये असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा ने मात्र 18 साल की उम्र में इतिहास रचने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक भारत का नाम बहुत से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रोशन करके हमें गर्व करने का मौका दिया है। हिमा के मन में बचपन से इंडियन जर्सी पहनने का जुनून था। वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती थी और ये अक्सर उनको अपने इंटरव्यूज में कहते सुना गया है। हिमा की माने तो सचिन ही उनकी इंस्पिरेशन है, जिनके कारण उनके मन में इंडियन जर्सी पहनने का सपना घर कर गया था। यूं तो हिमा खेलना सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी और साथ ही साथ उनको लगता था कि स्पोर्ट्स की वजह से उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, पर जब उन्होंने सचिन को जर्सी में देखा तो वो इंडियन जर्सी पहनना उनका लक्ष्य बन गया था। वो एक ऐसा सपना था जो हिमा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। हिमा दास के जन्म और घर की बात करें तो हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इसी वजह से वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं। हिमा एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो 6 भाई बहन हैं। हिमा को बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी। उनके पापा भी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काफी क्लब्स के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसे आगे ना ले जा सके। उनसे इंस्पायर होकर ही हिमा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और यही एक कारण है कि उनको अपने पिता का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और हिमा को समझ सकते थे। हिमा फुटबॉल तो अच्छा खेलती ही थी और उसमें आगे भी जाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फुटबॉल छोड़कर ट्रैक स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया? चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हिमा ने ट्रैक गेम्स को ज्वाइन किया और इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर लिया। हिमा को स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी थी और वो स्कूल के हर एक इवेंट में भी भाग लेती थी। रेसिंग, शॉटपुट, लॉन्ग जंप और बाकी और सब में गोल्ड हासिल करती थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी थी। हिमा के पास ना ही फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जिसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। कोशिश इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ पाए, है वैसे मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्टिल कभी कभी होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा अपन लो फील करते हैं, या हमको थोड़ा सा लगता है कि यार हमारे साथ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी हार मानता है, किसमें कितना पेशेंस है। और जितना ज्यादा पेशेंस है ना हमारे अंदर, या जितना ज्यादा हम कहते हैं ना कि धैर्य रखने

कहीं ना कहीं जिंदगी को जीना सीख रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, अनलॉक के फेज चल रहे हैं। अभी हम कोरोना के साथ में अपनी जिंदगी को सेटल करने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट काफी हद तक कर चुके हैं। प्रॉपर सेफ्टी के साथ में हम बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी रूटीन लाइफ को वापस लेकर के आ रहे हैं, और यही तो एक तरीका है। ये कोरोना जैसी चुनौतियां हैं, इनके साथ में अपनी जिंदगी में किस तरह से एडजस्ट करना है, ये हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है। ठीक वैसे ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो मुश्किलें हैं, उनके साथ में हमको आगे बढ़ना सीखना होगा। हम ये चाहे कि नहीं यार, मुश्किलें ही नहीं आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिस रास्ते में कोई मोड़ नहीं होते, वो रास्ता कहीं के लिए नहीं जाता। तो अगर जो कहीं जाना है, तो रास्ते में मोड़ तो होंगे ही होंगे। रास्ते के गड्ढे भी जरूरी हैं जनाब, वरना अक्सर हम अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं, वरना उनका क्या असर हो सकता है। तो जापानीज का क्या है कि इनको ना मछलियां सालों से बहुत ज्यादा पसंद है।

जो शार्क थी वो फिश टैंक के अंदर की कुछ मछलियों को खा तो जाती थी, थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें एनर्जी और ताजगी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क है, उनसे बचने के लिए मछलियां भागती रहती थी। शार्क उनके पीछे, वो इधर उधर भाग रही है, डर के मारे पूरे समय इधर उधर मछलियां भाग रही है। यानी कि टैंक में है वो, लेकिन फिर भी फ्रेश है, और लोगों ने बड़े चाव से उनको लेना, खरीदना और खाना शुरू किया। उस छोटे से बच्चे की सजेशन की वजह से जापानीज मछुआरे जो थे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया। और यही तो हमारी जिंदगी में होता है। हमारी जिंदगी में भी ये शार्क के रूप में जो चैलेंजेस है ना, ये जब तक नहीं आते हम ऐसे ही बेजान पड़े रहते हैं। सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जिंदा दिली हमें होती ही नहीं है, एक ही रूटीन में बंद के रह जाते हैं। 9 से 5, ये 9 से 5 इतना ज्यादा बोरिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ में कुछ और डिफरेंट है नहीं। सुबह उठकर के ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना, सो जाना, खाना खा के, और वही रिपीट करना। इसीलिए तो वीकेंड्स दिए गए ताकि हमारा

अप इन दिस वर्ल्ड, आप थोड़ा सा स्माइल करिए, आप यूं ही खूबसूरत लगने लगते हैं। एक कहावत मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जरूर कहा करते थे, मैंने बचपन में ये कहावत बड़ी सुनी है, तो वो ये बोला करते थे कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। बेसिकली इस कहावत का मतलब ये था कि आपको जो काम करना है आप खुद करो, तभी आप उसको बेहतर कर पाओगे। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम कोई और करके दे नहीं सकता। अगर आप किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो कोशिश करो कि उसको खुद करो, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो अपने तरीके से कर पाओगे, किसी और पर डिपेंड

हाय, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर दुनिया चल रही है, एक ऐसी चीज जो बड़े से बड़े झगड़े को यूं खत्म करा सकती है, एक ऐसी चीज जो अगर जो हारने वाला कर दे तो जीतने वाले का जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, एक ऐसी चीज जो रिश्तों को मजबूत कर सकती है। स्माइल की बात हो रही है, ये वो मुस्कुराहट है, इसमें इतनी ताकत है। हम कितने गम में हो, हम कितने परेशान हो, अगर जो हम स्माइल करेंगे तो जमाने को

किंग थे, वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए। जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, वजीर उस वक्त दरबार में नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर के सैनिक की एक टुकड़ी पहुंची वजीर के घर और उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां पर तो एकदम जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का बर्थडे था, उसके घर पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, खूब चहल पहल थी, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, कुल मिलाकर के माहौल बड़ा ही अच्छा था। सैनिकों ने भरी

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatwal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow, it's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे. मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम, एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशन वगैरह दोगी, यू नो, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो, नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना, यू नो, एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: तो कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना, वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.

0: हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक बार फिर मैं अपने बहुत ही दो इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में आप सभी के साथ आई हूं। और मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। और क्यों लगते हैं ना, वो तो अभी जब आप भी सुनोगे ना आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जो मेरे दो गेस्ट आज मौजूद हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साथ ही वाटर कायकिंग करते हैं और साथ ही साथ ट्रैकिंग भी करते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ के हैं। तो आज बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डोलमा का, यानी कि सुनीता श्रेष्ठा का, और साथ में उनके हस्बैंड मेरे साथ है जिनका नाम है सोनम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। और सच बताऊं तो पहले ना मैं बड़ी आज टायर्ड सी फील कर रही थी किसी वजह से, लेकिन जैसे आप लोगों से मिली ना मेरी सारी थकान चली गई। मैं सीरियसली ऑनेस्टली मैं ये बात बोल रही हूँ। और अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए। तो मैं आपके बारे में जो है खुद बताऊं, इससे अच्छा मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं अपने बारे में कि सोनम कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी तक की आपकी जर्नी, जो पर्सनल लाइफ की जर्नी है, क्या कुछ, क्या स्टडी किया, कहाँ कहाँ से होकर आए हो।
2: मेरा नाम सोनम है और मैं रहने वाला वैसे हरसिल उत्तरकाशी से हूँ। और यहाँ देहरादून में मैं पिछले 5-6 सालों से यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ एज अ अकाउंटेंट। और मैं 9 to 5 जॉब के अलावा साइकिलिंग करता हूँ, माउंटेन बाइकिंग, वाइट वाटर रिवर कायाकिंग एंड स्कीइंग भी करता हूँ इन विंटर सीजन। इसके अलावा अपनी जर्नी के बारे में मैं बताऊँ तो साइकिलिंग मैंने शुरू की थी 2019 से, जस्ट कोविड उस टाइम जस्ट शुरू ही हो रहा था। तो ऑफिस से भी मतलब लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो पूरा ही बिल्कुल बंद था, करने के लिए कुछ था नहीं, घर बैठो सब। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ करना चाहिए घर बैठे बैठे। तो साइकिलिंग मैंने वहां से शुरू की, देन देखते ही देखते मैं मतलब साइकिलिंग का इतना मेरे को शौक और इतना मतलब मुझे साइकिलिंग इतना पसंद आया कि मतलब कब मैं देहरादून से लद्दाख इन साइकिल, मैंने
0: साइकिल में या
2: टोटली साइकिलिंग। मैं देहरादून में कह सकता हूँ मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो देहरादून से जिसने साइकिलिंग स्टार्ट की और पूरी लद्दाख तक कंप्लीट की। स्टार्टिंग में मैं लेके चल रहा था कि यार मेरे को मतलब जिस हिसाब से डिस्टेंस है लाइक 1400 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि यार पूरा महीना तो मेरे को लगेगा। बट जब मैंने शुरू की तो कब 12 दिन में कंप्लीट हो गया मुझे पता नहीं चला।
3: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।

0: इश्क तेरा तड़पावे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं मेरे गाने Walk Talk Radio पर। Tune in for a better life.
1: अच्छा अब डोलमा आपकी बारी, आप बताइए कि आप क्या करते हो और आपकी अभी तक की क्या जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की।
2: मेरा नाम सुनीता श्रेष्ठ है
1: जी,
2: एंड मुझे डोलमा कह के ही ज्यादा जानता है यहाँ भी और नेपाल में भी
1: जी।
2: वैसे मैं नेपाल से हूँ, बिलोंग वहीं से करती हूँ, बट अभी मेरा शादी हुआ है यहाँ पर।
1: हाँ।
2: तो यहाँ हूँ मैं, कब से हूँ, 2 साल होने वाला है।
1: 2 साल होने वाला है।
2: हाँ। okay. तो मेरा साइकिलिंग जर्नी, साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेकिंग गाइड थी।
1: ओके।
2: और ट्रेकिंग में मुझे पता चला कि नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज और ज्यादा मुझे उसी, जब मैं ट्रेकिंग करने लगी तब पता चला मुझे
1: जी।
2: एंड हम ह्यूमन बींग्स है तो हमें फन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर मुझे, मेरी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है एक इवेंट नेपाल में, काठमांडू कोरा करके, तो वो जुलाई में होता है वैसे। तो वो मेरी अपनी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता था तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ओके मैं भी करती हूँ।
1: ओके।
2: बिकॉज ये वाला ज्यादा फन लग रहा था। मैं आउटडोर पर्सन के अलावा स्टूडेंट थी घर पे। फिर एक्चुअली मेरा जो स्पोर्ट्स वाला जर्नी वो मेरे स्कूल से स्टार्ट हुआ है।
1: अच्छा।
2: मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल खेलती थी और मैं स्टेट में सेलेक्ट हुई थी वॉलीबॉल के लिए। तो वहीं से मुझे खेलकूद में इंटरेस्ट हुआ। फिर रनिंग, लॉन्ग जम्प ये सब में तो मैं अच्छी खेलती थी उस टाइम में। फिर उसके बाद थोड़ी सी, हमारी नेपाल में 10 क्लास को SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,
1: अच्छा
2: हाँ नेपाल में वो होता है, तो 10 क्लास के बाद हमें 3 मंथ्स का हॉलीडे मिल जाता है।
1: ओके।
2: हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी खुद को पुश करना पड़ा कि लाइक डोलमा यू शुड गो आउट एंड इंडिपेंडेंट होना है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम, दिस थिंग्स आर रियली हार्ड टू एक्सप्लेन, यू नो, लाइक हम एक गांव से होता है एंड वहां पर स्पोर्ट्स ये सब चीजें इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है।
1: हाँ।
2: एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये चीज मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल था। मुझे ये चीज से लगाव हो गया था एंड मेरे पेरेंट्स को ये, उनको मंजूर नहीं था, दे वर लाइक टोटली अगेंस्ट मी। वो चाहता था कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं, संस्कारी,
1: पढ़ लिख लूं, घर का काम, जॉब कर लूं, फिर शादी भी कर लूं।
2: हाँ, ट्रू, एग्जैक्टली। बट वो मेरा नहीं हुआ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया।
1: ओके।
2: तो मैं टोटली थोड़ी सी उनके साथ डिसअपॉइंटेड हो गई थी। फिर मैंने पुश करना स्टार्ट कर दिया कि ओके इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है,
1: मैं खुद से कुछ करूंगी।
2: हाँ, मैं खुद से करूंगी। फिर वो 3 मंथ्स हॉलीडे में मैंने मम्मी पापा को झूठ बोला कि आई वांट टू गो टू मामा के घर।
1: अच्छा।
2: बट एक्चुअली मैं काम करने जा रही थी।
1: और उन्हें पता चला फिर? नहीं पता चला
2: उन्हें, नहीं पता चला कि मैं क्यों जा रही थी काठमांडू। एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि घर से निकल के कहीं भी जाऊं। जितना क्वेश्चंस हमें होता है उतना हमारे ब्रदर्स को नहीं होता है, भाई भैया को नहीं होता है, तो मेरे लिए वो स्टेप ना बहुत मुश्किल था एंड बहुत जरूरी भी था। फिर मैं काठमांडू आई तो वहां पर मुझे, हमें ये लगता था कि ओके काठमांडू में जाके हमें हमारा करियर बन जाएगा। इट्स लाइक काइंड ऑफ, यू नो, यहाँ इंडिया में
1: अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ज्यादा,
2: दिल्ली, दिस ऑल थिंग्स, वैसे ही नेपाल का काठमांडू है उस टाइम।
1: अच्छा।
2: तो मुझे बस ये फील हो गया था कि मुझे कैसे भी करके काठमांडू पहुंचना है। फिर काठमांडू पहुंची मैं एंड हमारे बहुत दूर का रिलेटिव्स है वो लोग, फिर मैं उनके साथ रही एक्चुअली मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं मामा घर जाऊं, पर मैं नहीं गया क्योंकि उनके घर जाऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी कहीं.
1: वो भी नहीं जाने देंगे.
2: हाँ, फिर मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा, क्रॉस क्वेश्चंस, तो मुझे वो नहीं चाहिए था. मुझे बस अपने काम करना था, काम ढूंढना था फर्स्ट थिंग. तो काठमांडू गई, उनके साथ रही, फिर कोई पहचानने वाला भैया, उनको मैंने बात किया कि आई वॉन्ट टू वर्क, तो उन्होंने मुझे ट्रैवल एजेंसी में इंट्रोड्यूस करवाया.
1: अच्छा अच्छा.
2: फिर नेपाल में इतना आसान नहीं है वो, जो हम एक बार टूरिज्म में लोग कोई भी जैसे कि ट्रैवल एजेंसी हमें हायर करता है तो वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं करता है. तो ये बात मुझे बहुत बाद में जाके पता चला. तो उन्होंने मुझे बुलाया, लाइक डोलमा ऑफिस आओ, बातें सुनो. एंड यू नो, लाइक वो बातें सुनने के लिए मुझे 3 घंटा वॉक करके जाना पड़ता था वो जगह से. एंड मैं 8 बजे जाती थी क्योंकि मुझे सुनना था, मुझे सीखना था, सीखना पड़ता था. एंड मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कंपनी, यू नो, लाइक ना ज्यादा
1: कंफ्यूजन. कंफ्यूजन.
2: एंड स्टिल मुझे बस इंडिपेंडेंट होना था.
0: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो. एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर.

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितने की ज़रूरत है वहाँ पर।
1: आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
2: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

0: हाय दिस इज शाहिद माल्या, सुनते रहिए इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो।
1: सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनने।
2: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है, तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो लोग होंगे आपके आसपास, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना, तो यही सोसाइटी आपको ऐसे एग्जांपल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको ऐसे एग्जांपल देखेंगे। तो यही है यार, कि किसी की सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ, और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है, तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं, तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी, तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी। तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ, जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: Hi guys, my name is Kavya और मैं अपने बारे में क्या कहूँ? I think मैं एक rural entrepreneur हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज़ वॉट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट.

0: Walk Talk Radio.
1: So, I think Craft Potli का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगी 2009 के आसपास शुरू हुआ. हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं. एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप

0: ये है वॉक टॉक रेडियो. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो.
1: हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी. मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ जाया हूँ वॉक टॉक रेडियो में.

औरों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहे थे इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, उन्होंने BA MA जो मेरा म्यूजिक में होता मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मेरा लड़का जवान होता है 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहाँ पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि अब मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो। हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी, मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब उसका फिर वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा विखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो कर गए, क्लिक कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं है, और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाए, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके आपका, आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला, थोड़ा लर्निंग की जर्निंग होती है यहाँ पे। और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग की जर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे।

0: दोस्तों मुझसे अगर कोई पूछे कि मेरे जिंदगी में आपको क्या लगता है अचीवमेंट्स क्या है, कौन कौन से पल आपके अचीवमेंट्स के, मैं समझता हूँ देखिए जब हम बचपन में होते हैं तो छोटे होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं इधर से उधर, हमें कुछ पता नहीं होता कि क्योंकि हमें कुछ खोना या पाना है नहीं, ना कोई पैसे लगे पड़े हैं, नो इन्वेस्टमेंट, सो अचीवमेंट्स वहां नहीं होती। बट ऑफ कोर्स जब आप स्कूल में जब होते हो तो कभी कभी आप रेस जीत जाते हो तो वो आपकी एक पहली अचीवमेंट होती है और आपको कितनी खुशी मिलती है, फिर मार्क्स मिलते हैं, फिर नंबर वन आते हो। मेरी जिंदगी में वो सारे पल नहीं थे कभी, मैं अपनी क्लास में 27वां नंबर आता। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ कि फर्स्ट आने में इतना क्यों इतराते हो, ये जो जो जो स्कूलों में जो चार्टर कोचिंग क्लासेस के इतने बड़े बड़े फोटो आते हैं कि 10 बड़े जो नंबर 1 to 10 के हमारे हमारे हमारी क्लास के 5 छात्र उसमें मौजूद और वो बड़े स्माइल कर रहे होते हैं कि उनको 95% 98% 98 to 97% मिलते हैं। मेरे को क्लास में 27 नंबर आया था मैं, और अपने भाई को मैंने अमेरिका में लिखा था जो अमेरिका में बैठे हुए थे उस वक्त, मैंने कहा मैं क्लास में 2700 नंबर आया हूँ, कोई झिझक नहीं थी मेरी, मैंने उसको सक्सेस नहीं माना। जिंदगी में पहली बार मैं एसएससी में फर्स्ट क्लास आया, क्योंकि लोगों ने कहा था कि कॉलेज जाना हो तो एसएससी में मार्क्स होने चाहिए, मेरी सिस्टर भी पढ़ रही थी मैं भी पढ़ रहा था, हमने रात रात भर के पहली बार जिंदगी में मैंने रटाफिकेशन कर करके मुझे 60% मार्क्स मिले स्कूल में, मेरी सिस्टर को 70% मार्क्स मिले, मेरी सिस्टर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे उसको 70% उसको डिस्टिंक्शन बोलते थे, मुझे पहली बार समझ में आया कि डिस्टिंक्शन क्या होता है और फर्स्ट क्लास क्या होता है। मैं जिंदगी में पहली बार फर्स्ट क्लास में आया और मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिला, वो भी मेरी जिंदगी की फर्स्ट अचीवमेंट। मैं चाहता था प्लास्टिक इंजीनियर बनूं, किसी कारणवश आज मैं समझता हूं कि भगवान चाहते थे कि मैं आयुष्मान भव कहूं, मुझे एडमिशन नहीं मिली, कानपुर में मैंने अप्लाई किया था मुझे वो एडमिशन नहीं मिली, फिर मैंने एक्टिंग में स्टेज किया, स्टेज में मैंने पहली बार चलना सीखा वो भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाकर, और उसके बाद वहां पर जो मुझे याद आता है मुझे किसी ने आके कहा था सर आपको जब अवार्ड मिल रहा था आप प्ले कर रहे थे, मेरी मदर बैठी थी मेरे ऑडिटोरियम में, मेरी फैमिली के साथ आए होंगे मेंटर, बोलता आपकी आपके वहाँ जब तालियां पड़ती थी कोई डायलॉग के ऊपर तो मेरी मां को उसने बताया, उसने दूसरे वाले जो साथ में बैठा था उसको टच करके बोला अरे ये मेरा बेटा है मेरा बेटा है मेरा बेटा, मुझे इतनी हंसी आई ये सुनकर, बट अगेन अच्छा लगा। वो भी शायद मेरी एक एक्टिंग की पहली अचीवमेंट, अगर मैं जिंदगी की पहली अचीवमेंट अपने करियर की कहूँ, उसके बाद भी फिर मैंने FTII किया, पुणे इंस्टीट्यूट में भी मैंने अच्छे मार्क्स तो मेरे को नहीं मिले पर योगा में डिस्टिंक्शन मिला मुझे, वो मुझे काम आता है आज। पर जब मैं निकला तो मुझे निकलने के बाद में बिना किसी से काम मांगे मुझे मेरे बड़े भाई साहब फिल्म बना रहे थे, ऑलरेडी इंसान बना रहे थे, वेद भाई साहब उनकी भी आत्मा को शांति मिले, वो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उसकी फिल्म के दौरान मुझे पहली फिल्म मिल गई खूनी, वो मेरी पहली अचीवमेंट एज ए करियर की थी बिना मांगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे भाई साहब फिल्म बना रहे थे इसलिए मुझे फिल्म मिली, क्योंकि वो फिल्म मुझे मिली मेरे डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने मेरा प्ले देखा, जो उस वक्त मैं इंटर कॉलेजिएट प्लेस किया करता था, और उसके ऊपर उन्होंने कहा मुकेश आई विल मेक गॉड फादर विद यू, आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट एज ए करियर। और वो फिल्म हालांकि अभी तक रिलीज प्रॉपरली नहीं हुई, बेदी जी की डेथ हो गई, और उसके बाद मुझे 15 फिल्में मिली, उसके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेस जो मिला वो था महाभारत। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ महाभारत मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरी अचीवमेंट का मुझे अंदाजा उस वक्त हुआ जब एक बहन जी मेरे सामने आके खड़ी हो गई, कहा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा क्या हुआ, बोला नहीं बहुत शुक्रगुजार, मैंने कहा क्या हुआ बताइए तो सही, बोला हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे दूध नहीं पीता था, अभी 3 बार हंस हंस के दूध पीता है, कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। दैट वॉज माई अनदर काइंड ऑफ अचीवमेंट। मैं टीवी से मैं फिल्मों से मैं यूट्यूब की तरफ मैंने भीष्म इंटरनेशनल चैनल खोला, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये भी मेरी एक अलग से अचीवमेंट। कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर आपकी तो 2 इमेज थी भीष्म और शक्तिमान, ये तीसरी इमेज आ गई है। मैंने कहा कौन सी इमेज आ गई है, बोला मुकेश खन्ना की इमेज आ गई। लोगों को आपके विचार समझने में मिल रहे हैं, आप लोगों को पहचान रहे कि अरे मुकेश खन्ना ये है। तब तक मुझे बच्चा भी कई बार मुझे बच्चों का फैमिली के साथ एक बच्चा मेरे हाथ को बोलता है ए तेरा नाम क्या है, क्योंकि उसको सिर्फ शक्तिमान मालूम था। तो थर्ड इमेज एज मुकेश खन्ना मुझे भीष्म इंटरनेशनल चैनल ने दी है, एंड आई एम हैप्पी कि मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगेन आई वुड से थैंक गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू भगवान।
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk. सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
3: Walk Talk Radio.
4: Hi, मैं हूँ रविंद्र प्रताप सिंह, founder of देहरादून नाउ मैगजीन. मैं आज बात कर रहा हूँ वॉक टॉक रेडियो के ऊपर. आज मैं बात करने जा रहा हूँ करियर एडवाइस के लिए. कि जब हम छोटे थे तो उस समय ये टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, मोबाइल भी ऐसे नहीं थे, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक, ना कुछ नहीं था, केवल आपका याहू और रेडिफ मेल होते थे. आज के यूथ के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने अंदर की बात सुनकर जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर सकता है. हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा, आप दिखावे पे मत जाओ. जो आपको सही लगता है, जो आपकी फैमिली एजुकेट गाइड करती है, जो आपके टीचर आपको गाइड करते हैं, जो आपको स्कूलिंग के बाद समझ में आता है कि मेरे को फ्यूचर में करना क्या है, आप वो डिसीजन लेके सबसे डिस्कस करके करें. ये नहीं कि आप किसी के बहकावे में आकर देखा देखी में जाके आपने ले लिया है. जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया इतनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी आवाज़, अपना एक करियर बना सकते हो, पर आप उस प्लेटफॉर्म पर आप शो क्या करना चाह रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही. जो हमारे टाइम पे ना YouTube था, ना कुछ नहीं था, आप फोटो जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, आप अपने शहर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की एक आवाज़ भी बन सकते हो, मोटिवेट, मतलब आप कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो कि लोग लाइक बाहर के कुछ लोगों के आपके शहर के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके स्टेट के बारे में पता चले. तो आप आज के टाइम में जहाँ पे आप रह रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रहे उन लोगों की आवाज़ भी बन सकते हो. लाइक हमारी जनरेशन के टाइम पे हम टोटली फादर के ऊपर और रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट थे. फ्रेंड्स की हम सुनते नहीं थे क्योंकि फ्रेंडशिप उतनी होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी नहीं वहाँ पे. स्कूल के वो टेंथ नर्सरी के फ्रेंड होते थे तो उनका भी सेम होता था, वो भी फैमिली के प्रेशर में. पर आज का जो यूथ है उसके ऊपर प्रेशर कम है फैमिली का, क्योंकि फैमिली को आज के टाइम में पता है कि हमारा जो बेटा है बेटी है उसको अपने करियर का डिसीजन खुद ही लेना है. हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते, हम उसको समझा सकते हैं. तो आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा, जो आपको सही लग रहा है, आपको फोकस माइंड आप लेकर आगे चल रहे हो कि मेरे को आगे ये करना है, डिस्कस करके प्रॉपर उसके इफ एंड बट समझें उसके बारे में, तो आप करियर ऐसा चूज करो जिसमें आपको अंदर की पीस भी मिले, ग्रोथ भी मिले और एक नेम भी मिले.
3: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.
0: ये है Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
0: Tune in for a better life.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
1: रेडियो, वॉक टॉक रेडियो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, वॉक टॉक
2: रेडियो। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज बट इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लेट्स फेस इट, ये सच्चाई है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लैंग्वेज ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हैं, तो प्रोफेशनली आप उसे यूज कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आपके ऑफिस में इजिली एक्सेप्टेबल है, रादर देन मेकिंग इट यू नो लाइक मेकिंग इट टू ऑब्वियस दैट यू आर नॉट गुड विद द लैंग्वेज। उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप। वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
3: Walk Talk Radio.
4: हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हूं एक्टर नियो फर्सवान, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं जिस भूमि से हूं, जिस मिट्टी में पला बड़ा हूं, तो यहां का ऋण तो मैं शायद मतलब जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि मुझे बनाने वाले लोग हैं यहां के। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मेरे पहले डेब्यू सॉन्ग को सपोर्ट किया। यहां की म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ने का यही है कि आप क्वालिटी कंटेंट दो, अच्छे गाने बनाओ, म्यूजिक की आपको टेक्निकल नॉलेज, म्यूजिक हो चाहे सिनेमा की, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो होगी। और प्लस देखो एक चीज़ है, आप जो ऑडियंस को दे रहे हो, लगातार दे रहे जा रहे हो, तो ऑडियंस वही सुनती जाएगी। आप बोल रहे हो कि अगर स्लो सॉन्ग्स नहीं चल रहे उत्तराखंड में, डांस नंबर्स चल रहे हैं, इसका कारण भी हम ही आर्टिस्ट हैं। किसी भी ऑडियंस को जो खिलाएंगे या जो भी चीज़ हम देंगे उनको हम उसी चीज़ की आदत डालेंगे। तो यही है कि हमें अच्छा, अगर हम कंटेंट देंगे आर्टिस्ट को और लोगों को, तो उनको उसी चीज़ की आदत पड़ेगी। तो हम स्लो सॉन्ग भी अगर अच्छे कंटेंट बनाएंगे तो लोग वो सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। तो यही है, अपने जो है टेक्निकल चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। और सिनेमा, अगर हम सिनेमा में काम कर रहे हैं या म्यूज़िक वीडियोस में काम कर रहे हैं या ऑडियो में काम कर रहे हैं, वीडियो में कोई भी, ये सिनेमा की कोई भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई और टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गाने उतने मिलियन व्यूज़ नहीं गए। चैता की चैतवाली और कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे गए हैं। तो ये है कि हमारे जो फोक म्यूज़िक और फोक कल्चर में बहुत पावर है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे मुंबई में लोग मेरे फोक म्यूज़िक की वजह से जानते हैं। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, आर्टिस्ट से मिलता हूँ, वहाँ के आर्टिस्ट से मिलता हूँ, साउथ के आर्टिस्ट से मिलता हूँ, तो मैं यहाँ के कल्चर के जो मेरे ओरिजिनल म्यूज़िक है उसको सुनाता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो सुनना चाहते हैं, वो लोकल जो रीजनल आवाज़ है, रीजनल म्यूज़िक है, वो सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे कल्चर और हमारी स्टोरीज, हमारे म्यूज़िक में बहुत पावर है, बट उसको सही तरह से दिखाना, उसके साथ जस्टिफिकेशन करना, वो हमारा कर्तव्य है। और हर इंसान अगर अपना कर्तव्य जो है वो अच्छे से निभाएगा, तो वो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो करेगी।
3: वॉक टॉक रेडियो,
0: ये है वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय गाइस, मेरा नाम है निकिता वर्मा। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे सुन रहे हो वॉक टॉक रेडियो पे। फैशन इंडस्ट्री अभी काफ़ी ग्रो कर चुका है। जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो बहुत कम फैशन इन्फ्लुएंसर्स थे कंट्री में। मतलब 5 ईयर्स हो गए जब मैंने शुरू करा था, तभी जो भी अभी बहुत फेमस हो चुके हैं बस वही कर रहे थे। बट अभी वी कैन सी लाइक एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर गर्ल बॉय, दे आर परस्यूइंग बीइंग फैशन इन्फ्लुएंसर। तो फैशन अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कंट्री में, और मॉडर्नाइजेशन आ गया है फैशन इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके के फैशन फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे कोई कैजुअल प्रेफर करता है, कोई स्ट्रीट स्टाइल, कोई क्लासी एंड मिनिमल, तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं। और फैशन क्या है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे शो कर रहे हो। कोई अपनी मूड को शो करता है, कैसे कपड़े पहन रहा है उस दिन। कोई स्पोर्टी फील कर रहा है, कोई किसी का मूड ऑफ है तो उसने उतना एफर्ट नहीं डाला है उस दिन। तो आप किसी को देख के बता सकते हो कि आज वो कैसा फील कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। फैशन इंडस्ट्री यही है कि आप अपने आप को कैसे शो करते हो, और बीइंग फैशनेबल एक आजकल कैरेक्टर है, और आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को शो कर रहे हो। सो बीइंग फैशनेबल। मैं 5th क्लास तक वहीं पे पढ़ी थी बिहार में, और मेरी मम्मा नेपाल से हैं, तो मेरी मासी नेपाल में रहती थी उस टाइम में। तो मेरी मम्मा को लगा कि यहाँ पे थोड़ी वहाँ इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है व्हेन यू आर गोइंग इनटू टीनेज। तो मम्मा ने मुझे नेपाल में भेज दिया था मासी के पास। तो 5th to 10th स्टैंडर्ड में नेपाल में थी, एंड आफ्टर दैट आई मूव टू दिल्ली इन 11th क्लास। तो 11th से आज तक मैं दिल्ली में ही हूँ, लाइक इट्स गोइंग टू बी 8 ईयर्स इन दिल्ली। तो 11th 12th में आई वॉज इन बोर्डिंग। बोर्डिंग में उतना कुछ एक्सपोजर नहीं मिला मुझे, क्योंकि अंदर ही एक दुनिया थी मेरी अलग। तो ये एक्सपोजर मिला कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से, इनफैक्ट थाईलैंड से भी वहाँ पे लोग थे, तो बहुत वो एक्सपोजर था कि अलग अलग जगह के लोग आए थे। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि उस टाइम इंग्लिश पे काम किया। बिहार से आई थी, नेपाल में भी रही थी, बट हाँ इंग्लिश में मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज लैकिंग। तो बोर्डिंग में रह के, और जैसे लोग नॉर्थ ईस्ट से थे, दे स्पीक इंग्लिश मोस्टली, तो उनके साथ इंग्लिश बोलते बोलते मेरी इंग्लिश तभी फ्लुएंट हो गई थी, वो एक्सपोजर मिला। फिर भी लाइफ को हैंडल करने का, या मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ उस 10th के बाद ही, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना है आपको, ये वो। तो एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और मैं पढ़ाई में अच्छी भी थी, तो सबने चूज़ किया मेरे लिए कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। तो मैंने बीटेक कर लिया, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मैं बहुत अच्छी थी, 10th में 10 CGPA, 12th में 87.2% ऐसा हमेशा मतलब हमेशा एकेडमिक्स में अच्छा ही करा है मैंने बचपन से, फर्स्ट टॉपर, स्कूल टॉपर ऐसा। तो नोबडी थॉट कि अचानक से बीटेक से फैशन एंड एवरीथिंग। तो जब मैं MT गई बीटेक करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला एक फैशन का, और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी उस टाइम अपने बॉडी के ऊपर। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, तो मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और जब मैंने अच्छे से अपने ऊपर काम कर लिया, उसके बाद मेरा फैशन में थोड़ा इंटरेस्ट आया। उससे पहले तो मुझे कुछ भी मतलब नहीं था, पढ़ाई, खाना, पढ़ाई ऐसा तो सोचा नहीं था। जब मैंने अपने ऊपर काम किया, उसके बाद फैशन में इंटरेस्ट लेने लगी, और अपने OOTD की पिक्चर्स में पोस्ट करती थी, आउटफिट ऑफ द डे, कॉलेज जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह चेंज करी है, स्कूल, कॉलेजेस, तो उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स काफ़ी हो गए थे। और हाँ, 6,000 जब मेरे फॉलोअर्स थे, तब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया था, बिकॉज तब मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था, बार्टर को लैब था वो एक, बट दे अप्रोच मी, तो आई वॉज लाइक वॉट इज़ दिस अबाउट, ऐसा क्यूरियोसिटी थी। तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया, उस अपॉर्चुनिटी को। तो वो मेरा फर्स्ट कोलैब था, तो हॉस्टल में मेरे साथ फ्रेंड्स रहती थी, दे यूज़ टू शूट फॉर मी, वो मेरे लिए शूट करती थी तभी। तो कभी फ़ोटो वोटो क्लिक कर दिया, अच्छा अच्छा जब भी पहना। तो वैसे स्टार्ट किया था मैंने फैशन को, फैशन में मेरा इंटरेस्ट था, मेकअप में। जब मैंने अपने ऊपर काम कर लिया था, तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। उससे पहले तो बोर्डिंग में रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, राइट। तो हाँ, जब से मैं कॉलेज में गई, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, OOTD पोस्ट करना शुरू किया, देन
तब मेरे को फैशन में इंटरेस्ट आया, और जब मेरे फॉलोअर्स अच्छे हो गए, ये कोलैब वगैरह मुझे आ रहे थे, तो मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। और उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करी जो इस फील्ड में हैं। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन आ गया, बहुत सारे ब्रांड कोलैब्स आ गई। मतलब पे कम करते थे वो, क्योंकि मार्केट डाउन था ऑफकोर्स, बट हाँ कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई, क्योंकि सारे ब्रांड्स आ चुके थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं कहीं उनको चाहिए होते थे प्रमोशंस। तो और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ भी किया, क्योंकि मेरा कॉलेज रहता था तो मैं कम कॉन्टेंट क्रिएट कर पाती थी। ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएट किया, फिर मोनेटाइज हो गया मेरा पेज, मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग पेड कोलैबोरेशंस। उसके बाद से तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक।

0: एनीबडी कैन डांस, ये चीज हम सब ने सुनी है। शायद सब डांस भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा और बेहतर तरीके से डांस करना ये कला सब में नहीं होती। दिस इज आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, उनको डांस करने का बहुत शौक था, डांस भी बहुत अच्छा करते थे। स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, डांस कॉम्पिटिशन हो, उनका नाम लिस्ट में होगा ये उनको पता होता था। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि बड़े होके एक दिन वो दोनों साथ मिलके एक डांस स्टूडियो खोलेंगे, पूरी दुनिया को नचाएंगे। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसी सेम स्कूल में डांस सिखाएंगे। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वो दो टैलेंटेड, डायनेमिक और वाइब्रेंट लड़के आज हमारे साथ हैं, हर्षित गुप्ता एंड अभिनव भट्टाचार्य, को फाउंडर्स ऑफ वाइब्रेशंस द डांस स्टूडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉक टॉक रेडियो में।
1: थैंक यू गौतम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।
2: थैंक यू सो मच गौतम।
0: सबसे पहले इस नाम के बारे में बात करते हैं, वाइब्रेशंस, ये नाम रखने के पीछे कोई खास रीजन?
1: सो वाइब्रेशंस आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, यू एज अ पर्सन, आई एज अ पर्सन, अभिनव एज अ पर्सन, वी ऑल हैव डिफरेंट वाइब्रेशंस। ओके, सो वाइब्रेशंस इज समथिंग, यू नो, if you send it in a positive way outside, it'll multiply. If you send it in a negative way outside, it'll multiply. So when we were coming back to Dehradun, humne yahi socha tha ki yaar, we've been working on our art since so long and we always wanted to give it back to the city. To hum apni positivity lekar jab hum shahar ke andar jayenge, to usi vibrations ko we would want to spread in the entire city. In fact, अभी तो हम तब हम सिटी की बात कर रहे थे, अब तो हम काफी जगह काम करते हैं, तो वी आर स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर। सो और ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस एकदम से आया, इसकी स्टोरी अभिनव भी आपसे शेयर करेगा, बिकॉज वाइब्रेशंस नाम रखने में ना हमें नहीं पता था कि हम इस चीज को इतना आगे लेके जाएंगे। वी हैड अ थॉट कि हाँ ठीक है, हम हमारी पॉजिटिविटी और हमारी ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स आवर आर्ट विल टेक अस समवेयर, बट नाउ दैट इट्स ग्रोइंग सो वेल, we are very happy that we, you know, we got stuck to this name called Vibrations.
2: Yes, actually, it took quite a lot of time. जब हमने Vibrations सोचा नाम, हम लोग, I think around 1 week we were just talking on phone or if we were meeting. So हम लोग बस पूछ सोच रहे थे, अच्छा हर्षित तू भी सोच,

0: ने रखा है, मतलब सुनने को मिलता नहीं है ये नाम आसानी से, कि कोई अपनी डांसिंग एकेडमी का नाम वाइब्रेशंस रखे।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो मेरे यानी किरण के साथ में। तो जब स्वरोजगार की बात होती है तो महिलाएं तो आजकल कहीं भी पीछे नहीं है। तो आज एक बार फिर मेरे साथ एक महिला एंटरप्रेन्योर है जो न सिर्फ स्वरोजगार को उन्होंने अपनी जिंदगी से जोड़ा बल्कि दूसरों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करती हूँ मैं शशि बहुगुणा रतूड़ी का, जो की फाउंडर है नमक वाली की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
4: धन्यवाद आपका।
3: कैसा लग रहा है आज आपको रेडियो पर आके?
4: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा
3: है। तो सबसे पहले स्वरोजगार की जब बात करते हैं तो नमक वाली का जो ब्रांड नेम है उत्तराखंड में, उससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर उत्तराखंड में है तो पिसा हुआ नमक हो, चाहे रोटाने हो और चाहे अरसे हो, ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे बचपन को हमें याद दिलाती
4: है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो नमक वाली की कहानी कहाँ से शुरू हुई?
4: नमक वाली की जो कहानी है वो अभी हमारे 2018 से मैं एक वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन करती हूँ, तो उसी दौरान उसी सब चीजों की जो एक मेरा उत्तराखंड का जो फोक लोकगीत है उनकी मैं 8-10 महिलाओं के साथ में प्रैक्टिस करती थी रोज।
3: अच्छा।
4: और आज भी करती हूँ। तो उनमें से जैसे रेखा कुठारी है, सुशीला सेमवाल है, परमिला पांडे है, जो मेरे

0: पूरी जो मेरी संस्था है, जो मैं मतलब 1982 से काम कर रही थी, तो वो मेरी बालवाड़ी शिक्षिकाएं थी, तो वही जो है नमक पीस करके लाती थी और मैं भी अपने सिलबट्टे पे बनाती थी, तो
1: अच्छा
0: एक दूसरे को सब लोग टेस्ट कराते थे।
1: अच्छा
0: तो उनमें से जो है रेखा कुठारी जब अपना ये सिलबट्टे का पिशू लोड लेके आई, तो मैंने उसको जो है जैसे मतलब और भी कुछ महिलाएं थी, तो उन्होंने क्या किया कि कल हमारे लिए लेके आना, कल हमारे लिए लेके आना। तो मैंने बोला ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी कि हमारे लिए लेके आना है, और ये सिलबट्टे पे इतनी मेहनत होती है, और आज की जो बात कहें हम तो सारा हर घर में सिलबट्टा एक कोने में पड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: सब लोग जो है आपके मिक्सी में चटनी बनाते हैं, मिक्सी में हर काम मिक्सी में होता है। तो मैंने उसको एक जैसे उसने नमक दिया, तो मैंने उसको सब लोगों के सामने 100 रुपये दे दिया कि
1: अच्छा
0: आपका पारितोषिक है। और पारितोषिक है, उसी दिन से मेरे मन में आया कि हमारा जो सिलबट्टा है वो सिलबट्टा एक कोने में बैठ करके रो रहा है कि मेरी कोई सम्मान ही नहीं हो रहा है। मैं इस सिलबट्टे से हमारे पूरे घर परिवारों में नमक पिसा जाता था, चटनी पिसी जाती थी, और सब्जी नहीं थी तो चटनी रोटी लोग खाते थे, नमक रोटी खाते थे। वो सब समाप्त हो गया धीरे धीरे, और हमारी पुरानी जो हमारी दादी नानी ये सब बनाती थी, माँ बनाती थी, वो खत्म हो चुका है। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि इसको जो है नमक को हम एक छोटी सी पुड़िया बना करके, ऐसे करके जैसे वो कैसे पेपर बोलेंगे उसको, खाकी रंग का पेपर होता है जो,
1: जी जी
0: उस
1: जी
0: पेपर में उसको बना करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमने उसको डाल दिया। तो अब लोगों ने ऑर्डर किया उसका, अब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जैसे लोगों को अच्छा लगे, तो पूरे देश भर के लोगों ने वो छोटा सा पैकेट ही लेने शुरू कर दिए।
1: अच्छा
0: तो पैकेट लेने शुरू किए, तो हमने एक महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ से बढ़ाया।
1: दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में, सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट है नमक वाली शशि बहुगुणा रतूड़ी जी।
2: ऐसा नहीं है कि हम कहीं से देख करके कुछ भी चीज करते हैं, हमारे जो अंदर से निकलता रहता है उसी पर हम काम करते रहते हैं
3: जी।
2: तो वो हमने एक शुरू कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से शुरू किया, तो उसके बाद तो इंडिया
3: आगे
2: ने
3: बढ़ता
2: गया। बैटरी इंडिया ने स्टोरी छाप दी और बहुत सारे, जब बैटरी इंडिया ने स्टोरी छापी तो 300-400 कॉल एक दिन में आने लग गई।
3: अच्छा।
2: हाँ,
3: ऑर्डर्स की
2: पहले पूछने के लिए, फिर ऑर्डर भी हुए।
3: अच्छा।
2: लेकिन उनमें से कितने कॉल हम उठा पाते ये भी था। फिर धीरे धीरे धीरे करके आज वो जो है इतना अच्छा स्वरोजगार बना है कि उसको देख करके हमारे उत्तराखंड के कम से कम 20-25 लोगों ने नमक वाली शुरू किया है, नमक बनाना शुरू किया है। अब वो आगे कितना पहुंचा रहे है वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन शुरू किया है। तो अगर माना हम कोई अच्छी पहल, अच्छा काम करते हैं, और काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है ना। सबसे मेन बात है कि जो महिलाएं स्वरोजगार पर काम कर रही हैं वो पार्ट टाइम कर रही हैं, है ना। एक दो महिलाएं ऐसी होंगी जो परमानेंट काम करती हैं, लेकिन बाकी तो पार्ट टाइम काम कर रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर का खाना भी बना रही हैं, अपने घर की पूरी व्यवस्थाएं बना रही हैं, उसके बाद अपना समय निकाल करके एक दो घंटे नमक सिलबट्टे पे बनाती है। तो उनको एक बहुत अच्छा रोजगार मिला।
3: अच्छा।
2: हमने नमक वाली ब्रांड तभी बनाया कि हमने वो पिशुन लूण के हिसाब से जा रहा था, तो यही नहीं कि खाली हमारा नमक वाली है तो नमक जा रहा है, उसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं।
3: हाँ।
2: पड़ी हुई है, तो हमने उसका ब्रांड ही नमक वाली बना दिया और आज पूरे देश में जा रहा है, आगे जा करके हो सकता है बाहर भी जाए। हम उसका लाइसेंस, मतलब धीरे धीरे बाहर भी जाएगा।
3: हाँ।
2: इनडायरेक्ट जब कोई जाता है बाहर तो वो लेके चला जाता है,
3: लेके जाता है। और ऐसे ही मार्केटिंग होती है चीज की।
2: हाँ।
3: जब एक खाता है दूसरा खाता है, और शुरुआत भी देखो नमक वाली की ऐसी भी।
2: हाँ।
3: कि एक अपने घर से पिसा हुआ लूण लेके आया, दूसरा लेके आया और सोचा। हाँ, वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ।
2: हाँ, आइडिया। और जैसे घर में हम लोग भी खाते थे तो मतलब वो अपने आप ही जो है एक निकला कि इसको बाहर निकाला जाए, है ना। तो उसकी एक सिलबट्टे की एक बहुत बड़ी पहचान बनी। हमारा एक नमक वाली ब्रांड है, लेकिन उसमें हमारे पहाड़ी मसाला है, पहाड़ी हल्दी है, हमारी ऑर्गेनिक दालें हैं, हमारे जो है जो भंगजीरा होता है उसकी चटनी है, ड्राई अलसी है उसकी चटनी है, बद्री गाय का घी है, शहद है। तो उस माध्यम से हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और जो हमारे फार्मर हैं उनको भी एक स्वरोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है।
3: बहुत सारी चीजें हैं। वो मैंने सारी देखी है, और हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम में अपने जितने भी सुनने वाले हमारे लिसनर्स हैं उन सबको भी जरूर बताएंगे कि नमक वाली सिर्फ पिसा हुआ जो है नमक या लून नहीं देती है, वो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी देती है।
1: तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के इस प्रोग्राम में अभी के लिए रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर।

0: कभी बलून एक्सरसाइज की है? डंबल वाली की होगी, रोप वाली भी की होगी, लेकिन बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है ये मैं बताऊंगा। मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर हम कहानियां सुनाते हैं और जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। आप ही कीजिए जिंदगी बदलने की कोशिश। बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है, इसके पीछे भी एक कहानी है और ये कहानी आपको आपकी खुशियों तक ले जाएगी। हाँ, यही मेरा वादा है। हर कोई अपनी जिंदगी में ना खुशी चाहता है, ढूंढना चाहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से उसे कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ये सब कैसे होंगे, कैसे वो इन सब डील करेगा। उसे सिर्फ एक सच्ची खुशी ढूंढनी है और ये हर एक के दिल का एक गोल है ना। लेकिन सवाल है कि ये खुशी मिलेगी कैसे? हाउ आर वी सपोज टू इवन बिगिन लुकिंग फॉर इट? इसी के चलते लोग हैं एक ग्रुप, 30-40 लोगों का जो एक ग्रुप था, उसे एक कमरे में सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाया गया। ये सेमिनार था अबाउट लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड लर्न टू फाइंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। उनको अलग अलग स्किल सिखाए गए, लेसन्स पढ़ाए गए लाइफ के बारे में। सडनली स्पीकर खड़ा हुआ, अपनी बात कहते कहते रुका और उसने हर एक शख्स जो वहां बैठा था उसको एक बलून दिया। कहा कि इस बलून पर एक पेन से अपना नाम लिख दो। सबने अपना नाम लिख दिया। सारे बलून्स कलेक्ट किए गए और उसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया गया, वो सारे बलून्स। अब जितने भी डेलीगेट्स बैठे थे, इनका वो कोर्स कंप्लीट हुआ। इनको बोला गया कि अब एक छोटी सी एक्सरसाइज ये करनी है कि आपको दूसरे रूम में जाना है और अपना बलून ढूंढ के लेकर आना है 5 मिनट। सब लोग रूम में गए, सारे बलून जो थे वो रूम के बीच में रखे हुए थे, कौन सा किसका है किसी को नहीं पता था। तो सब लोग बस पागलों की तरह अपना बलून ढूंढने, अपना नाम जो था वो ढूंढने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। चारों तरफ कियोस हो गया, कोई भी अपने बलून तक नहीं पहुंच पाया। गिवन टाइम 5 मिनट में सब लोग अभी तक तो ये समझते रह गए कि उन्होंने किस पर लिखा था, कलर कौन सा था, ये वाला मेरा है क्या, ये वाला तेरा है क्या। फिर वो अपने कमरे में वापस आए लेकिन खाली हाथ। फिर जो स्पीकर था उसने कहा कि आप में से किसी को बलून नहीं मिला। अजी ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए इस बार तरीका बदलते हैं। अब एक काम कीजिए, उस कमरे में जाइए, कोई भी एक बलून लाइए, इस कमरे में आइए, इस कमरे में पूछिए कि ये बलून किसका है और उसको वो बलून दे दीजिए। सबको लगा कि ये शायद ज्यादा सिंपल है। वो गए, बलून उठाया, जिसका भी नाम था उसका नाम लिया, जिसका नाम आया उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसको बलून दे दिया। 5 मिनट में सबको अपने अपने बलून मिल गया, सब एक स्ट्रेट लाइन में आकर खड़े हो गए। फिर उस स्पीकर ने कहा, यू नो व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग इन आवर लाइव्स। एवरीवन इज फ्रेनेटिकली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑल अराउंड, नॉट नोइंग वेयर इट इज। लेकिन हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियां, इट लाइज इन द हैंड और इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। आप उन्हें खुशियां दीजिए, यू विल गेट योर ओन हैप्पीनेस। आप उन्हें उनका बलून दीजिए, आपको आपका बलून मिल जाएगा। आप उन्हें खुशियां देंगे, आपको खुशी मिल जाएगी। हमारी खुशियों की चाबी दूसरों को खुश करके ही मिलती है। जब हमारी फैमिली खुश होती है, दोस्त खुश होते हैं, बॉसेस खुश होते हैं, तभी तो हम खुश होते हैं। तो हमारी जो खुशी है दूसरों की खुशी पर डिपेंडेंट है। हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट टू एंजॉय इट। ये बर्नार्ड मेल्जर ने कहा था। हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट टू एंजॉय इट। चलिए फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर। मैं हूं कहानी वाला रजत, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: This is Bookipedia, only on Walk Talk Radio.
1: Bookipedia में जो बुक आज मैं ले रहा हूँ उसका नाम है The Four Agreements और राइटर हैं डॉन मिगुएल रुइस। राइटर इस बुक में कहते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को बचपन से ही उसके माता पिता, उसके टीचर्स, उसके भाई बहन, उसके यार दोस्त या बुक्स से और टीवी से या मैगजीन्स के थ्रू वो जो भी इम्प्रेशंस लेता है, यानी कि जो कुछ भी उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको पूरी तरह से मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। यानी उसे एक तरह से उन सब बातों के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है और उस एग्रीमेंट को करने की वजह से उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से कई बार करप्ट हो जाते हैं, जिनको वो एडल्ट होने के बाद भी, यानी बड़ा होने के बाद भी पूरी तरह से जीता रहता है, क्योंकि उसके माइंड की टेप में वो ही रिकॉर्डिंग्स करी गई हैं। तो राइटर कहते हैं कि कई बार इन सारे निगेटिव प्रोग्रामिंग्स की वजह से हम लोग एक तरह के हेल में जीना शुरू कर देते हैं। इन्होंने हमको इस बुक के अंदर चार ऐसे एग्रीमेंट्स बताए हैं कि अगर हम उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम उस हेल से निकलकर हेवन की तरफ जा सकते हैं। यानी कि इन्हीं परिस्थितियों में हमारी जिंदगी स्वर्ग की भांति हो सकती है। इनका फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड। इसका मतलब है कि आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यानी हर वो शब्द जो आप किसी और से कहते हैं या वो शब्द जो अपने मन के अंदर आप अपने आप से कहते हैं किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर, अगर वो शब्द जो आप अंदर से चाहते हैं, महसूस करते हैं और जिस तरफ जाना चाहते हैं उसके साथ हार्मनी में नहीं है, यानी उससे अपोजिट है, तो वो इम्पैकेबल नहीं है। इम्पैकेबल का एग्जैक्ट अर्थ है विदाउट सिन, यानी पाप रहित। लेकिन पाप रहित हमारे लिए क्या हो सकता है? पाप रहित इनके हिसाब से वो चीज है जो भी आपको अपने लक्ष्य से दूर लेकर जाता है। यानी जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इम्पैकेबल नहीं है। तो आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये एक मैजिक स्पेल की तरह से हैं। इनका कहना है कि आप एक तरह से किसी आदमी के बारे में निगेटिव अगर बोलते हैं तो आप एक तरह से एक निगेटिव स्पेल दे रहे हैं उसको, यानी आप उसके ऊपर एक काला जादू कर देते हैं। तो अपने शब्दों के चयन में हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है तो हम इस पहले एग्रीमेंट को पूरी तरह से समझ पाएंगे। सेकेंड एग्रीमेंट जो इन्होंने बताया है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी बात हमको लगती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम में से कोई भी आदमी चीजों को पर्सनल लेने में एक एक्सपर्ट है। आप एक कल्पना करके देखें, कोई एक इंसान जो सुबह उठता है उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, उसके उस दिन लॉटरी लग जाती है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात हो जाती है, बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, तो वो बहुत खुश है। शाम को अगर वो आपके साथ बात करेगा तो आप सोच सकते हैं वो आपको किस तरह से ट्रीट करने वाला है। लेकिन हम एक दूसरा सीनेरियो देखते हैं कि अगर वही आदमी सुबह उठते ही उसको पता चलता है कि उसकी नौकरी छूट गई है, उसका एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे डिच कर देती है, तो वो किस तरह की मनोदशा में होगा और वो आपको किस तरह से ट्रीट करेगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दोनों ही परिस्थितियों में आप सेम हैं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस स्थान उस इंसान के साथ क्या चल रहा है ये बात आप बहुत भली बात ही समझ चुके हैं। तो इनका जो सेकंड एग्रीमेंट है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इनका तीसरा एग्रीमेंट है डोंट मेक अजम्पशंस। जी हाँ, ये कहते हैं कि आपको कुछ भी मान ही नहीं लेना चाहिए अपने मन में किसी भी चीज के बारे में। आपको अगर अजम्पशन से बाहर आना है तो आपको क्वेश्चन पूछने की कला आनी चाहिए और आपको बहुत बोल्ड होना चाहिए इस मामले में कि आप तब तक क्वेश्चंस पूछें दूसरे आदमी से जब तक कोई भी गुंजाइश ना रह जाए कि आपको कुछ भी अज्यूम करना पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस ऐसी आती हैं, मैं देखता हूं कि उसमें 90% प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो आपस में एज्यूम करके चलते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो हमें प्यार नहीं करता या वो हमारे खिलाफ हर समय सोचता रहता है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज्यूम्स होती हैं। तो आप सोचिए, हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे समय होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं जब एक छोटी सी घटना घटती है और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिवली उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम उसको इतना इनलार्ज कर देते हैं एज्यूम कर करके कि हम खुद ही उसके बोझ के तले दब जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कुछ भी एज्यूम करने से पहले इस थर्ड एग्रीमेंट को समझ लेना है, याद कर लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। इनका जो फोर्थ एग्रीमेंट है वो बहुत ही कमाल का एग्रीमेंट है। ये कहते हैं ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल शब्दों में इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। जो शुरू के तीन एग्रीमेंट्स हैं, यानी बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक अज्यूम्स, ये तभी काम करते हैं जब आप ये फोर्थ एग्रीमेंट को, यानी ऑलवेज डू योर बेस्ट को, आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, मैंने एक बार एक कोटेशन पढ़ी थी, टॉम पीटर्स की कोटेशन थी। वो कहते हैं कि एक्सीलेंस इज द नेक्स्ट 5 मिनट्स, फॉरगेट द लॉन्ग टर्म, मेक द नेक्स्ट 5 मिनट्स रॉक। इस कोटेशन ने मेरे को पूरी तरह से हिला दिया था, क्योंकि ये कहते हैं कि आपको लंबा नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी लाइफ में इस पल से आने वाले 5 मिनट को आपने एक्सीलेंट बनाना है और आपकी पूरी लाइफ एक्सीलेंट हो जाएगी। ये कोटेशन पूरी तरह से इनके फोर्थ एग्रीमेंट को कंप्लीट करती हुई दिखती है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब बुकीपीडिया में द फोर एग्रीमेंट्स। हम कोशिश करते हैं कि बुकीपीडिया के अंदर हम बहुत कम समय में आपको किसी भी एक किताब के कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसे लेसन्स दें जिनको अपनी लाइफ में इमीडिएट उतार कर आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकें। आप सुन रहे हैं बुकीपीडिया वॉक टॉक रेडियो पे, मैं गिरेंद्र भारती, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
0: कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं, ऐसी ही किताबों के बारे में सुनिए बुकीपीडिया में, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।
2: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक

ये है इंडिया का पहला मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। मेरा नाम है मैंडी और देखिए खुशियों के बाद एक अलग सी जो एनर्जी हमारे सबके अंदर आई है वो बहुत ही कमाल की है, बड़ी बेमिसाल है। तो इसी के साथ अनसुने किसे शोगी होश की शुरुआत। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से आपके अंदर इतनी गहराई, इतनी पॉजिटिव वाइब्स भर दी जाए कि जिंदगी में कुछ भी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आपके मेरे आसपास हो, आप कभी घबराए ना, वो ज़रूरी भी है। और बस यही वॉक टॉक रेडियो का एक मकसद है। और उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता हमें पसंद करते हैं अपना फीडबैक ज़रूर देते होंगे। चलिए ज़रा सी देर में शो की शुरुआत करते हैं।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूं दून की नौनी आरजे शिवांगी और शो चल रहा है सिटी टॉक्स। तो आज ना जब मैं घर से ऑफिस की तरफ आ रही थी तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनको पुलिस ने रोका हुआ था। अब मुझे लगा कि पुलिस चलान वलान तो काट रही है, लेकिन किस चीज का काट रही है। और वो मुझे तब पता चला जब मैंने आगे जाकर एक भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। एंड सच बताऊं ये मास्क पहनना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मतलब आए दिन लोग ऐसे ही घूम रहे, कोरोना को इतना लाइटली ले चुके हैं कि ही बोला जाए। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना सैनिटाइजर का यूज कर रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग तक का तो दूर दूर तक पालन नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या ही बोले, कभी आप मार्केट की साइड निकल जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो फ्री फंड में एक और एडवाइस मैं आप सभी को देना चाह रही हूं कि आप जहां भी जा रहे हैं मास्क पहनकर जाएं, सैनिटाइजर का रेगुलरली उपयोग करें, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का तो भाई पालन कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना भैया है ना ये वापस दस्तक दे चुके हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि वापस से आप सभी के सब घर पर बैठ जाएं तो प्लीज ये सारी गाइडलाइंस का ढंग से पालन कर लीजिए। तो फिलहाल मूड को बनाते हैं थोड़ा सा लाइट, लीजिए सुनिए अमेजिंग सा ट्रैक और बने रहिए मेरे यानी दून की नौनी आरजे शिवांगी के साथ ऑन शो सिटी टॉक्स पर, ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुँच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत है वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं। यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है, न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है, पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडहरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजीनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्म जोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्म जोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं, लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसी मेनका कहती है कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसी को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसी कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती हैं कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्नोस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमिटस एथेंस से महज 5-6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आखिर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती हैं कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली, हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेम्पल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन आल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं। इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। यू नो दैट ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यही देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे हैं उन लोगों से खुश नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्म जोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना, तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर। वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूँ कहानी वाला रजत, ये है मेरा शो सफरनामा।
1: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।

हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाय, मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हाँ, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ में किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूँ। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने यह कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं? कार का शीशा डाउन करके अक्सर हम पैकेट यूं ही फेंक देते हैं, कार का गेट खोल करके पिचक मुंह के अंदर का जो गुटखा था वो हम यूं ही सड़क पर थूक देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका जैसे बन जाएं। कोसते हैं हम सरकार को, सरकार के बस का ये नहीं है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, बट क्या हम हमारे हिस्से का करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर कि बाहर के जो देश हैं, जो साफ हैं, वहां पर सरकार से ज्यादा एफर्ट्स लोग डालते हैं। बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, आई डोंट नो कितनी सच है, बट उन दिनों किताबों में आया करता था कि जापान में जो लोग हैं वो अपने बैग में सुई धागा लेके चलते हैं। अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर किसी भी बस का सीट फटा हुआ है तो वो लोग उस सुई धागे की मदद से उस सीट को सिल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके पैसे से खरीदी हुई बस है जिसका इस्तेमाल उनको ही करना है।
और हमारे यहां क्या होता है, हमें हमारा विरोध जताना है, एक काम करो ट्रेन जला दो, पटरियां उखाड़ दो, हॉस्पिटल्स जला दो, बस जला दो, हम ये करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी बात कहने की इस पूरे एपिसोड में यही थी कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अकेला चना भी भार फोड़ सकता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर यह मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे न जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
1: टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ऐसा लड़का देख कर ना मन करता है बस एक बार मिल जाए ये. सो, वैसे मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है नहीं, लेकिन मुझे इनके बारे में पढ़ना बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे चैंपियन की कहानी आपको बताई जाए जिसे सुनकर आपको भी मजा आए. आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ, और मैं हूं अनसंग चैंपियंस के साथ मुस्कान आपके साथ. खेलों की बात हम जब करते हैं तब सबसे पहले हम उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पुलेला गोपीचंद के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 16 नवंबर को और प्रकाशम जिले में.

में विजयवाड़ा में सार्क टूर्नामेंट में और 1997 में कोलंबो में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। वो कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत कड़े मुकाबलों के बीच भी रजत और कांस्य पदक जीते थे उन्होंने। 1997 में दिल्ली में ग्रैंड पिक्स मुकाबलों में उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी और सबसे अच्छे खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था उन्होंने। आपको पता है कि फाइनल में वो हार गए थे, पर खेल में यही तो मजा है, कभी हार तो कभी जीत। 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में बैडमिंटन के लिए अकेले इंडियन प्लेयर थे पुलेला गोपीचंद। आपको पता है प्रकाश पादुकोण के रिटायर होने के बाद इंडिया में कोई बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था। जब पुलेला गोपीचंद सामने आए तब सबको इनसे इतनी उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था कि यही बस नाम रोशन करेंगे। और लास्ट में प्रकाश पादुकोण के बाद आगे बढ़कर चमकने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी सिर्फ पुलेला गोपीचंद ही है। वो देखने में बहुत अच्छे तो लगते ही हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हॉट हैं, हैंडसम हैं, बहुत टॉल हैं, उनकी हाइट है 6'2", मतलब लड़कियों को अक्सर लंबे लड़के बहुत पसंद होते हैं। 2000 में ऐसा हुआ था कि पुलेला गोपीचंद थॉमस कप में फाइनल में पहुंच गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया जो है खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है। फिर जब गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड खिताब जीता 2001 में, तब लगने लगा था कि मानो हम चांद तक पहुंचने वाले हैं, मतलब सीढ़ी मिल गई है हमें। पुलेला गोपीचंद वही सीढ़ी थे। अब हमारे उस टाइम पर 6 खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में थे, टॉप 100 में 6 प्लेयर्स इंडिया से थे। और आपको पता है पुलेला गोपीचंद 2001 में 4th रैंक पर थे, मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि बस यार हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। उन्होंने 2001 में चीन के चैन होंग को फाइनल में 15-12 और 15-6 से हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली थी। इस तरह से प्रकाश पादुकोण के बाद इस जीत को हासिल करने वाले वो सेकंड इंडियन बन गए थे। मतलब आप सोचो, वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो गया है और आप भारत में दूसरे नंबर पर हो। पहले नंबर पर प्रकाश पादुकोण थे और 1980 में उन्होंने ये जीत हासिल कर ली थी प्रकाश पादुकोण ने। और उसके बाद 2001 में नाम आया पुलेला गोपीचंद का। उन्हें 2001 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था उसके बाद, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण उनके खेल पर बहुत इफेक्ट पड़ा और 2003 में उनकी रैंकिंग गिरकर 126 पर आ गई थी। 2005 में उन्हें फिर से सम्मानित किया गया था। उन सबके बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, पर अभी ये बता देती हूँ कि गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी चलाते हैं। अब वो एक जाने माने कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है। और उनके जो प्लेयर्स हैं वो आज भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। उन प्लेयर्स का नाम आप जानते हैं? आई एम श्योर जानते होंगे, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। इन दोनों की अगर कोचिंग की बात की जाए तो वो पुलेला गोपीचंद ने ही दी है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। जब वो खेलों में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई थी, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी अकेडमी खोलूंगा, लेकिन वर्ल्ड क्लास अकेडमी खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी जरूर बताएगी मुस्कान आपको। सुनते रहिए अनसंग चैंपियंस, जिसमें आप मुझे यानी कि मुस्कान को सुन रहे हैं और आज मैं आपको बता रही हूं पुलेला गोपीचंद की कहानी। एक ऐसा चैंपियन जो एक टाइम पर टॉप 5 में था पूरे वर्ल्ड में और फिर धीरे धीरे कहानी बदलती चली गई। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना तय है, जीना इसी का नाम है। आप मेरे सुरों पे मत जाइए, मुझे पता है मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ, लेकिन जज्बातों को समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आप थोड़ा सा डाउन है तो ट्रस्ट मी, कल आप टॉप पर हो सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मुस्कान विल बी हियर बस थोड़ी ही देर में।

वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।

जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पे भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, मेरे यानी आरजे किरण के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे, और हमेशा की तरह जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर खुश नहीं है, खुशी आपसे दूर है, तो ढूंढिए आसपास, कहीं ना कहीं खुश होने का मौका मिल ही जाएगा। प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी, और कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं किस वीर गाथा को आप सभी के बीच में सुनाने वाली हूँ, रखने वाली हूँ। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि वतन से ज्यादा खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और मुझे लगता है कि जो हमारा वतन है, जो हमारा देश है, अगर हम उसके लिए एक काम भी करते हैं ना, एक बदलाव भी अगर हम अपनी तरफ से लेकर आते हैं, तो बड़ा प्राउड हमें फील होता है। बशर्ते कि हमने कभी ऐसी कोई कोशिश की हो तो हमें प्राउड होगा, या तो हम उस फीलिंग को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वो फीलिंग क्या होती है। कभी किसी आर्मी पर्सन से, किसी पुलिस फोर्स के जवान से, या फिर किसी भी इंडियन फोर्स के जवान से आप ये बात पूछेगा। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ये बात पूछेगा जो हर पल अपनी जिंदगी का हर क्षण, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है। फैमिली उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी होती है, लेकिन जो हमारा देश है वो उनके लिए उनकी फर्स्ट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में आते हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो बचपन से ही एक सपने को लिए जीते हैं कि हमें बड़े होकर ये बनना है। कई सारे लोग शायद टीवी पर देखकर उन सपनों को जीते हैं, वहां से इंस्पिरेशन उन्हें मिलती है कि मुझे भी ये करना है। हो सकता है कि किसी ने अखबार में किसी को देख लिया हो और उसने सोचा हो कि मुझे ये करियर चूज करना है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे माहौल में पैदा भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, जहां पर उनके अंदर एक जज्बात समा जाते हैं कि मुझे तो बड़े होकर इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इंडियन आर्मी का। तो कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी महान पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, जिन्होंने न सिर्फ सेना को अपनी परवरिश में जिया है, बल्कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी कि जब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटी की, जब बात आती है करियर चूज करने की, तब तक उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि उनको इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जाना है, फिर चाहे वो इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी। वेल, मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा हिंट तो आपको मिल ही चुका होगा, क्योंकि हाल ही में उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है, उनकी लाइफ जर्नी है, वो एक फिल्म के जरिए कुछ घंटों में हमें दिखाई गई। लेकिन आज कॉल फॉर ड्यूटी में मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर उनको याद किया जाए, क्यों ना उनकी जिंदगी में थोड़ा सा फिर से झांका जाए और याद किया जाए उनके उन वीर पलों को जो उन्होंने बिताए और हमेशा के लिए हमारी देश की झोली में डाल दिए। तो आज कॉल फॉर ड्यूटी पर मैं बात करने जा रही हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। कई लोगों का ऐसा कहना है कि कारगिल युद्ध की जब जब बात होती है, अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा की बारे में जिक्र ना करें तो वो पूरी की पूरी बात ना बिल्कुल अधूरी होती है। और आज हम करने वाले हैं ऐसी ढेर सारी बातें कारगिल युद्ध के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा की।

0: आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मेरे यानी किरण के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी। 9 सितंबर 1974 का वो दिन जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर दो बेटियों के बाद जन्म हुआ दो जुड़वा बच्चों का। कमला कांता जी और जो मिस्टर बत्रा थे, उन दोनों की ही श्री रामचरितमानस में बेहद ही गहरी श्रद्धा थी और उन्होंने इस चीज को देखते हुए अपने दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। बच्चे बड़े हुए तो उनको स्कूल में डालना था। सबसे पहले डीएवी स्कूल के साथ उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में उनको एडमिशन दिलाया गया। अब स्कूल जो है वो सेना छावनी में था, यानी कैंट एरिया में था, तो स्कूल से घर आते जाते कई बार ऐसा होता था कि जो सेना के जवान हैं उनसे वो बेहद ही करीबी से मिलते थे, या फिर कह लीजिए कि बेहद करीब से उनको जाते आते देखा करते थे। कई बार वो अपनी परेड कर रहे होते थे तो कई बार कुछ काम कर रहे होते थे, कई बार वो भाग रहे होते थे तो कई बार वो किसी अर्जेंट काम के लिए बड़ी जल्दी में दौड़ लगा रहे होते थे। ये सब देख कर विक्रम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। उन्हें लगता था कि सेना की लाइफ में कितनी ज्यादा देशभक्ति है, कितनी ज्यादा डेडिकेशन है, कितनी ज्यादा ऑनेस्टी है, और यही ऑनेस्टी, यही डेडिकेशन, यही एक्टिवनेस विक्रम को अपनी तरफ बस खींचे चली जा रही थी। और साथ में ये सारी चीजों को और बढ़ावा मिलता था जब वो टीवी पर कोई भी सेना से जुड़ा हुआ सीरियल देखते थे या फिर फिल्में देखते थे। उनकी वीरता की कहानियां जब वो सुनते थे तो ये सब उन्हें बहुत पसंद आता था। यानी कि ये सीरियल्स, ये फिल्में, ये कहानियां जो वीरता की थी, सेना की वीरता की थी, ये उनकी फेवरेट हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, विक्रम की अगर फेवरेट ड्रेस की बात की जाए, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको वो किसी भी स्पेशल मौके पर पहनना चाहे, तो वो शायद किसी भी भारतीय फौज की ड्रेस होगी। यानी कि जो भी उनकी वर्दी है वो उनकी फेवरेट हुआ करती थी। विक्रम स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई में हमेशा टॉप किया करते थे बल्कि स्पोर्ट्स में भी उनकी बड़ी रुचि रहा करती थी। स्पोर्ट्स में, टेबल टेनिस में वो हमेशा टॉप के खिलाड़ियों में आते थे। वहीं कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो उसमें भी वो कभी पीछे नहीं रहे, हर जगह वो एक्टिव रहा करते थे। और यही एक्टिवनेस थी जो उनको सेना में जाने का जज्बा भरती थी। अब विक्रम का 12th कंप्लीट हुआ और उसके बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने साइंस से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा NCCA एयर विंग में शामिल हुए। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें NCC में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने NCC कैंडिडेट के रूप में रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट उनके लिए था। या मैं यूं कहूं कि सेना में जाने की जो ख्वाहिश उन्होंने अपने बचपन से अपने मन में दबाई हुई थी, उसका पहला पड़ाव वो चढ़ रहे थे। फिर 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी चुनने का ऑफर आया। अब मर्चेंट नेवी में भी कहीं ना कहीं आप कर तो देश के लिए ही काम रहे हैं, लेकिन फिर भी विक्रम के मन में एक उलझन थी कि उन्हें तो इंडियन फोर्सेज में जाना था, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में। और ये जो मर्चेंट नेवी का ऑप्शन उनके पास आया, उसको नकार कर कहीं वो कोई भूल तो नहीं करेंगे, और अगर उसको चूज कर ले तो कहीं उनके मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। लेकिन फाइनली उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने मर्चेंट नेवी में जाने का जो ये ऑप्शन उन्हें मिला उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1995 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इंग्लिश में MA करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उन्होंने अपना एडमिशन लिया। अब धीरे धीरे पढ़ाई कंप्लीट होने जा रही थी और मन में जो सपना बचपन से पाले हुए थे कि सेना का हिस्सा बनना है ऑफिशियल तरीके से, NCC से अब उनको इंडियन फोर्सेस में दाखिला लेना था, इंडियन फोर्सेस का हिस्सा बनना था, उसको कैसे पूरा किया जाए, एक मौके की तलाश में वो थे कि जैसे ही वो मौका आएगा जी जान लगा देंगे। और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, ताकि फिजिकली, मेंटली और नॉलेज की तरफ से भी कोई कमी उनकी ना रहे। सेना में कैसे उन्होंने अपना करियर बनाया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन से सन से इसकी शुरुआत हुई, जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी के लिए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर कॉल फॉर ड्यूटी में मेरे यानी किरण के साथ।
1: वॉक टॉक रेडियो, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatpal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow. It's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोज़ भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे. मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम, एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशंस वगैरह दोगी, यू नो, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो, नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना, यू नो, एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: तो कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना, वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। I don't know, it's just let life happen to you.

0: हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक बार फिर मैं अपने बहुत ही दो इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में आप सभी के साथ आई हूं। और मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। और क्यों लगते हैं ना, वो तो अभी जब आप भी सुनोगे ना आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जो मेरे दो गेस्ट आज मौजूद हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साथ ही वाटर कायकिंग करते हैं और साथ ही साथ ट्रैकिंग भी करते हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ के हैं। तो आज बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डोलमा का, यानी कि सुनीता श्रेष्ठा का, और साथ में उनके हस्बैंड मेरे साथ है जिनका नाम है सोनम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। और सच बताऊं तो पहले ना मैं बड़ी आज टायर्ड सी फील कर रही थी किसी वजह से, लेकिन जैसे ही आप लोगों से मिली ना मेरी सारी थकान चली गई। मैं सीरियसली ऑनेस्टली मैं ये बात बोल रही हूँ, और अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए। तो मैं आपके बारे में जो है खुद बताऊं, इससे अच्छा मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं अपने बारे में कि सोनम कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अभी तक की आपकी जर्नी जो पर्सनल लाइफ की जर्नी है, क्या कुछ क्या स्टडी किया, कहाँ कहाँ से होकर आए हो।
2: मेरा नाम सोनम है और मैं रहने वाला वैसे हरसिल उत्तरकाशी से हूँ। और यहाँ देहरादून में मैं पिछले 5-6 सालों से यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ एज अ अकाउंटेंट। और मैं 9 to 5 जॉब के अलावा साइकिलिंग करता हूँ, माउंटेन बाइकिंग, वाइट वाटर रिवर कायाकिंग एंड स्कीइंग भी करता हूँ इन विंटर सीजन। इसके अलावा अपनी जर्नी के बारे में मैं बताऊँ तो साइकिलिंग मैंने शुरू की थी 2019 से, जस्ट कोविड उस टाइम जस्ट शुरू ही हो रहा था। तो ऑफिस से भी मतलब लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो पूरा ही बिल्कुल बंद था, लाइक करने के लिए कुछ था नहीं, घर बैठो सब। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ करना चाहिए घर बैठे बैठे, तो साइकिलिंग मैंने वहां से शुरू की। देन देखते ही देखते मैं मतलब साइकिलिंग का इतना मेरे को शौक और इतना मतलब मुझे साइकिलिंग इतना पसंद आया कि मतलब कब मैं देहरादून से लद्दाख इन साइकिल, मैंने
0: साइकिल में
2: या
0: टोटली
2: साइकिलिंग।
0: ओह माय गॉड,
2: मैं देहरादून में कह सकता हूँ मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो देहरादून से जिसने साइकिलिंग स्टार्ट की और पूरी लद्दाख तक कंप्लीट की। स्टार्टिंग में मैं लेके चल रहा था कि यार मेरे को मतलब जिस हिसाब से डिस्टेंस है लाइक 1400 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि यार पूरा महीना तो मेरे को लगेगा। बट जब मैंने शुरू की तो कब 12 दिन में कंप्लीट हो गया मुझे पता नहीं चला।
3: वॉक टॉक, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: इश्क तेरा तड़पा दे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं मेरे गाने Walk Talk Radio पर। Tune in for a better life.
1: अच्छा अब डोलमा आपकी बारी, आप बताइए कि आप क्या करते हो और आपकी अभी तक की क्या जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की।
2: मेरा नाम सुनीता श्रेष्ठ है
1: जी,
2: एंड मुझे डोलमा कह के ही ज्यादा जानता है यहाँ भी और नेपाल में भी
1: जी।
2: वैसे मैं नेपाल से हूँ, बिलोंग वहीं से करती हूँ, बट अभी मेरा शादी हुआ है यहाँ पर।
1: हाँ।
2: तो यहाँ हूँ मैं, कब से हूँ, 2 साल होने वाला है।
1: 2 साल होने वाला।
2: हाँ। okay. तो मेरा साइकिलिंग जर्नी, साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेकिंग गाइड थी।
1: ओके।
2: और ट्रेकिंग में मुझे पता चला कि नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज और ज्यादा मुझे उसी, जब मैं ट्रेकिंग करने लगी तब पता चला मुझे
1: जी।
2: एंड हम ह्यूमन बींग्स है तो हमें फन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर मुझे, मेरी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है एक इवेंट नेपाल में, काठमांडू कोरा करके, तो वो जून जुलाई में होता है वैसे। तो वो मेरी अपनी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता था, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ओके मैं भी करती हूँ।
1: ओके।
2: बिकॉज ये वाला ज्यादा फन लग रहा था। मैं आउटडोर पर्सन के अलावा स्टूडेंट थी घर पे। फिर एक्चुअली मेरा जो स्पोर्ट्स वाला जर्नी वो मेरे स्कूल से स्टार्ट हुआ है।
1: अच्छा।
2: मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल खेलती थी और मैं स्टेट में सेलेक्ट हुई थी वॉलीबॉल के लिए। तो वहीं से मुझे खेलकूद में इंटरेस्ट हुआ। फिर रनिंग, लॉन्ग जम्प ये सब में तो मैं अच्छी खेलती थी उस टाइम में। फिर उसके बाद थोड़ी सी, हमारी नेपाल में 10th क्लास को SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,
1: अच्छा
2: हाँ नेपाल में वो होता है, तो 10th क्लास के बाद हमें 3 मंथ्स का हॉलीडे मिल जाता है।
1: ओके।
2: हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी खुद को पुश करना पड़ा कि लाइक डोलमा यू शुड गो आउट एंड इंडिपेंडेंट होना है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम, दिस थिंग्स आर रियली हार्ड टू एक्सप्लेन यू नो, लाइक हम एक गांव से होता है एंड वहां पर स्पोर्ट्स ये सब चीजें इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है।
1: हाँ।
2: एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये चीज मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल था। मुझे ये चीज से लगाव हो गया था एंड मेरे पेरेंट्स को ये, उनको मंजूर नहीं था, दे वर लाइक टोटली अगेंस्ट मी। वो चाहता था कि मैं एक अच्छी बेटी बनू, संस्कारी,
1: पढ़ लिख लू, घर का काम, जॉब कर लू, फिर शादी भी कर लू।
2: हाँ, ट्रू, एग्जैक्टली। बट वो मेरा नहीं हुआ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया।
1: ओके।
2: तो मैं टोटली थोड़ी सी उनके साथ डिसअपॉइंटेड हो गई थी। फिर मैंने पुश करना स्टार्ट कर दिया कि ओके इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है,
1: मैं खुद से कुछ करूंगी।
2: मैं खुद से करूंगी। फिर वो 3 मंथ्स हॉलीडे में मैंने मम्मी पापा को झूठ बोला कि आई वांट टू गो टू मामा के घर।
1: अच्छा।
2: बट एक्चुअली मैं काम करने जा रही थी।
1: और उन्हें पता चला फिर? नहीं पता चला।
2: उन्हें नहीं पता चला कि मैं क्यों जा रही थी काठमांडू। एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि घर से निकल के कहीं भी जाऊं। जितना क्वेश्चंस हमें होता है उतना हमारे ब्रदर्स को नहीं होता है, भाई भैया को नहीं होता है, तो मेरे लिए वो स्टेप लेना बहुत मुश्किल था एंड बहुत जरूरी भी था। फिर मैं काठमांडू आई तो वहां पर मुझे, हमें ये लगता था कि ओके काठमांडू में जाके हमें हमारा करियर बन जाएगा। इट्स लाइक काइंड ऑफ यू नो, यहाँ इंडिया में
1: अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ज्यादा,
2: दिल्ली, दिस ऑल थिंग्स, वैसे ही नेपाल का काठमांडू है उस टाइम।
1: अच्छा।
2: तो मुझे बस ये फील हो गया था कि मुझे कैसे भी करके काठमांडू पहुंचना है। फिर काठमांडू पहुंची मैं एंड हमारे बहुत दूर का रिलेटिव्स है वो लोग, फिर मैं उनके साथ रही एक्चुअली मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं मामा घर जाऊं, पर मैं नहीं गया क्योंकि उनके घर जाऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी कहीं.
3: वो भी नहीं जाने देंगे.
2: हाँ, फिर मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा, क्रॉस क्वेश्चंस, तो मुझे वो नहीं चाहिए था. मुझे बस अपने काम करना था, काम ढूंढना था फर्स्ट थिंग. तो काठमांडू गई, उनके साथ रही, फिर कोई पहचानने वाला भैया, उनको मैंने बात किया कि आई वॉन्ट टू वर्क, तो उन्होंने मुझे ट्रैवल एजेंसी में इंट्रोड्यूस करवाया.
3: अच्छा अच्छा.
2: फिर नेपाल में इतना आसान नहीं है वो, जो हम एक बार टूरिज्म में लोग कोई भी जैसे कि ट्रैवल एजेंसी हमें हायर करता है तो वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं करता है. तो ये बात मुझे बहुत बाद में जाके पता चला. तो उन्होंने मुझे बुलाया, लाइक डोलमा ऑफिस आओ, बातें सुनो. एंड यू नो लाइक वो बातें सुनने के लिए मुझे 3 घंटा वॉक करके जाना पड़ता था वो जगह से. एंड मैं 8 बजे जाती थी क्योंकि मुझे सुनना था, मुझे सीखना था, सीखना पड़ता था. एंड मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कंपनी, यू नो लाइक ना ज्यादा
3: कंफ्यूजन. हाँ,
2: एंड स्टिल मुझे बस इंडिपेंडेंट होना था.
0: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो. एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर.

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज़ करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितने की ज़रूरत है वहाँ पे।
1: आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
2: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे।
0: Walk Talk Radio.

0: शायद इसी शायद माल्या, सुनते रहिए इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो।
1: सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनने।
2: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो लोग होंगे आपके आसपास, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना, तो यही सोसाइटी आपको ऐसे एग्जांपल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको ऐसे एग्जांपल देखेंगे। तो यही है यार कि किसी की सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी। तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: Radio. Tune in for a better life.
1: हाय गाइस, माय नेम इज़ काव्या और मैं अपने बारे में क्या कहूँ. आई थिंक मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज़ वॉट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट.

0: आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगी 2009 के आसपास शुरू हुआ. हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं. एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी. तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स. एंड मी बीइंग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर हैज 10 other brothers, sisters. So we were lots of kids, you know, in Rajasthan. So she would always have this and she would give something from her potli to kids. So I was like, okay, craft potli. And back then, that domain mujhe mil gaya. So wo tab se raha. But uske bare mein, I did nothing. For 10 years, I kept working. And iski shuruaat aise hui ki pandemic aaya. And I think hum sabhi ne apne aap ke bare mein thoda kuch jana. I also understood ki jo main rural travel kar rahi thi for my fun, with the job on weekends, वो really travel नहीं था. मैं वापस आती थी अपने comfort zone में, job करती थी, salary लेती थी. It was pandemic that made me realize कि if I have a passion, then मुझे उसका test लेना चाहिए कि वो passion really है भी या नहीं. Can I last that? So I took this massive journey. It's called Kavya on Quest. थोड़ा सा अच्छा उसका गूगल अट्रैक्शन है, आप देखिएगा. सो आई टुक दिस विद महिंद्रा ऑन 2nd October. द आइडिया ऑफ काव्या ऑन क्वेस्ट वॉज दैट नॉन स्टॉप आई विल बी ऑन द रोड्स कवरिंग विलेजेस ऑफ इंडिया एंड टेलिंग देयर स्टोरीज विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, विदाउट फॉलिंग इल. आई थिंक आई वुड बी, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस. आई टुक 42 कोविड टेस्ट्स इन 6 months ऑफ टाइम. I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic and ended this journey in end of May 2021 and covered non-stop without staying in hotels or taking any guides, just covering crafts of India. Early in this journey, I figured ki while I am from Rajasthan, which is like a craft hub or Kutch, I thought that the focus has to be to Eastern India, जहाँ पे बहुत सारा culture है but ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है. तो जब मैं वहां पे गई, I still remember, it was January 2021, I first entered the land of Odisha. And Odisha के हम जब भी बात करते हैं, we just know पुरी और भुवनेश्वर. I entered into a land where I saw James Cameron Avatar movie coming to life. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि ऐसे rolling jungles हैं, clouds हैं, and उसमें आदिवासी people live freely. It was like Avatar movie came in front. I had never seen, like I've been to Ladakh, I've been to beautiful places like Spiti, Andaman, but Koraput was something else for me. And when that journey ended in June, I was like, either go back to my job in Gurgaon, which was paying me well, or do something about your life. And I had 2-3 options. So I thought, okay, ya to West Bengal mein kahin pe jaate hain, ya Chhattisgarh mein, or Odisha. Now, Odisha being very well connected by air, and generally since I also live solo, I felt it was a great opportunity for me to kind of relocate. So I relocated to Koraput and started with something really small. Craftpotly started its operations with a mere turmeric bar. That has now become a case study with the Tata Institute of Social Sciences in Bombay. It was a breakthrough product in itself. First 6 months of me living from August 21, when I moved to the village, till about, I would say, October or November 21, I would just go village to village, go to Adivasi Haats on weekly basis. घूमती रहती थी, उन लोगों को लगता था ये कौन सी लड़की है, क्या कर रही है. तब मैंने डिस्कवर किया कि ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा हल्दी उगता है, विच इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड एंड इट डजंट गो आउट ऑफ देयर ओन विलेजेस. सो कमिंग फ्रॉम द लर्निंग दैट आई वॉज हैविंग विद माई जॉब्स विद अ फैशन ब्रांड दैट आई वॉज वर्किंग बिफोर पैंडमिक, वी डिसाइडेड टू टर्न दैट टर्मरिक बार इन टू अ बेदिंग बार. नाउ दीज पीपल जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लोग एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो आज भी सुबह उठ के जंगल जाते हैं एंड फ्रूट्स तोड़ के लाते हैं, उसके बेसिस पे या थोड़ा हल्दी उगाते हैं या कुछ कॉफी उगाते हैं या सब्जी उगाते हैं, उसी पे ही जिंदा रहते हैं. फॉर देम दैट इज देयर लाइफ स्टाइल. सो टू मेक देम लर्न हाउ टू मेक अ बेदिंग बार वॉज अ चैलेंज इन इटसेल्फ. वी गैदर्ड अबाउट 62 वुमेन फ्रॉम 5 विलेजेस, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द कोंधा ट्राइब. And they learned in 7 days how to mix the right proportions, the right percentage, usko dry kaise karna hai. Ye sab seekh liya, lekin beche kahan? That was the major question. So friends and family came into picture. I think every entrepreneur does that. I can say that now. So I sent these bars packed in brown paper, jo hum bachpan mein use karte the kitabe chadhane ke liye. Usse bheja and the reviews were fantabulous. It was something that I had not expected. People kept on repeating. My own relatives kept on asking, and that's where we thought, okay, let's increase the production. Thoda sa apna paisa dala, and we worked on the packaging a little bit. Then it was, I think, April 2022, very recently, that a Bangalore customer reached out to us that, can you make a lot more of this bar? Like, volume aap kar sakte ho? So, humne kaha, haan, abhi humare paas 14 women actively work kar rahi hai, but we have 62 trained and we can train more people. So, yeah, and I think that was the pivot for Craft Portly. In April 22, we started supplying to one of the United Nations agency in Guatemala in Central America. And that is where volumes came in. When volumes came in, we got some confidence to add more products to Craft Portly and also define ourselves ki we will not be working in rural, but Adivasi belts of the country. And that was like a long story to a short question that Craft Portly ki shuruaat kaise hui.
1: Walk Talk Radio.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो.
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
3: हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी. मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ जाया हूँ वॉक टॉक रेडियो में.

और की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहे थे इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, मैंने बी एम ए जो मेरा म्यूजिक में होता मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मतलब लड़का जवान होता है 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहां पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है जो कि अब मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।
1: हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी, मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आज आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब उसका फिर वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा बिखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो कर गए, क्लिक कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं है, और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाएं, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके आपका, आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला है थोड़ा। लर्निंग इज अर्निंग होती है यहाँ पे, और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे।

दोस्तों मुझसे अगर कोई पूछे कि मेरे जिंदगी में आपको क्या लगता है अचीवमेंट्स क्या है, कौन कौन से पल आपके अचीवमेंट्स के, मैं समझता हूँ देखिए जब हम बचपन में होते हैं तो छोटे होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं इधर से उधर, हमें कुछ पता नहीं होता कि क्योंकि हमें कुछ खोना या पाना है नहीं, ना कुछ पैसे लगे पड़े हैं, नो इन्वेस्टमेंट, सो अचीवमेंट्स वहाँ नहीं होती। बट ऑफकोर्स जब आप स्कूल में जब होते हो तो कभी कभी आप रेस जीत जाते हो तो वो आपकी एक पहली अचीवमेंट होती है और आपको कितनी खुशी मिलती है, फिर मार्क्स मिलते हैं, फिर नंबर वन आते हो। मेरी जिंदगी में वो सारे पल नहीं थे कभी, मैं अपनी क्लास में 27वां नंबर आता। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ कि फर्स्ट आने में इतना क्यों इतराते हो, ये जो जो जो स्कूलों में जो चार्टर कोचिंग क्लासेस के इतने बड़े बड़े फोटो आते हैं कि 10 बड़े जो नंबर 1 to 10 के हमारे हमारे हमारी क्लास के 5 छात्र उसमें मौजूद और वो बड़े स्माइल कर रहे होते हैं कि उनको 95% 98% 98 to 97% मिलते हैं। मेरे को क्लास में 27 नंबर आया था मैं, और अपने भाई को मैंने अमेरिका में लिखा था जो अमेरिका में बैठे हुए थे उस वक्त, मैंने कहा मैं क्लास में 27वां नंबर आया हूँ, कोई झिझक नहीं थी मेरी, मैंने उसको सक्सेस नहीं माना। जिंदगी में पहली बार मैं SSC में फर्स्ट क्लास आया, क्योंकि लोगों ने कहा था कि कॉलेज जाना हो तो SSC में मार्क्स होने चाहिए, मेरी सिस्टर भी पढ़ रही थी मैं भी पढ़ रहा था, हमने रात रात भर के पहली बार जिंदगी में मैंने रटाफिकेशन कर करके मुझे 60% मार्क्स मिले स्कूल में, मेरी सिस्टर को 70% मार्क्स मिले, मेरी सिस्टर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे उसको 70% उसको डिस्टिंक्शन बोलते थे, मुझे पहली बार समझ में आया कि डिस्टिंक्शन क्या होता है और फर्स्ट क्लास क्या होता है। मैं जिंदगी में पहली बार फर्स्ट क्लास में आया और मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिला, वो भी मेरी जिंदगी की फर्स्ट अचीवमेंट। मैं चाहता था प्लास्टिक इंजीनियर बनूं, किसी कारणवश आज मैं समझता हूं कि भगवान चाहते थे कि मैं आयुष्मान भव कहूं, मुझे एडमिशन नहीं मिली, कानपुर में मैंने अप्लाई किया था मुझे वो एडमिशन नहीं मिली, फिर मैंने एक्टिंग में स्टेज किया, स्टेज में मैंने पहली बार चलना सीखा वो भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाकर, और उसके बाद वहां पर जो मुझे याद आता, मुझे किसी ने आके कहा था सर आपको जब अवार्ड मिल रहा था आप प्ले कर रहे थे, मेरी मदर बैठी थी मेरे ऑडिटोरियम में, मेरी फैमिली के साथ आए होंगे मेंटर, बोलते आपकी आपके जब तालियां पड़ती थी कोई डायलॉग के ऊपर तो मेरी मां को उसने बताया, उसने दूसरे वाले जो साथ में बैठा था उसको टच करके बोला अरे ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मुझे इतनी हंसी आई ये सुनकर, बट अगेन अच्छा लगा, वो भी शायद मेरी एक एक्टिंग की पहली अचीवमेंट। अगर मैं जिंदगी की पहली अचीवमेंट अपने करियर की कहूं, उसके बाद भी फिर मैंने FTII किया, पुणे इंस्टीट्यूट में भी मैंने अच्छे मार्क्स तो मेरे को नहीं मिले पर योगा में डिस्टिंक्शन मिला मुझे, वो मुझे काम आता है आज, पर जब मैं निकला तो मुझे निकलने के बाद में

0: ना किसी से काम मांगे, मुझे मेरे बड़े भाई साहब फिल्म बना रहे थे, ऑलरेडी इंसान बना रहे थे, वेद भाई साहब, उनकी भी आत्मा को शांति मिले, वो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उसकी फिल्म के दौरान मुझे पहली फिल्म मिल गई खूनी, वो मेरी पहली अचीवमेंट एज ए करियर की थी, बिना मांगे। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे भाई साहब फिल्म बना रहे थे इसलिए मुझे फिल्म मिली, क्योंकि वो फिल्म मुझे मिली मेरे डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने मेरा प्ले देखा, जो उस वक्त मैं इंटर कॉलेजिएट प्लेस किया करता था, और उसके ऊपर उन्होंने कहा मुकेश आई विल मेक गॉड फादर विद यू। आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट एज ए करियर, और वो फिल्म हालांकि अभी तक रिलीज प्रॉपरली नहीं हुई, बेदी जी की डेथ हो गई, और उसके बाद मुझे 15 फिल्में मिली, उसके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेस जो मिला वो था महाभारत। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, महाभारत मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरी अचीवमेंट का मुझे अंदाजा उस वक्त हुआ जब एक बहन जी मेरे सामने आके खड़ी हो गई, कहा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं बहुत शुक्रगुजार। मैंने कहा क्या हुआ बताइए तो सही। बोला हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे दूध नहीं पीता था, अभी 3 बार हंस हंस के दूध पीता है, कहता शक्ति मांगने का, दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। दैट वॉज माई अनदर काइंड ऑफ अचीवमेंट। मैं टीवी से, मैं फिल्मों से, मैं यूट्यूब की तरफ, मैंने भीष्म इंटरनेशनल चैनल खोला, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये भी मेरी एक अलग से अचीवमेंट। कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर आपकी तो 2 इमेज थी, भीष्म और शक्तिमान, ये तीसरी इमेज आ गई है। मैंने कहा कौन सी इमेज आ गई है? बोला मुकेश खन्ना की इमेज आ गई है। लोगों को आपके विचार समझने में मिल रहे हैं, आप लोगों को पहचान रहे कि अरे मुकेश खन्ना ये है। तब तक मुझे बच्चा भी कई बार मुझे बच्चों का फैमिली के साथ एक बच्चा मेरे हाथ को बोलता है ए तेरा नाम क्या है, क्योंकि उसको सिर्फ शक्तिमान मालूम था। तो थर्ड इमेज एज मुकेश खन्ना मुझे भीष्म इंटरनेशनल चैनल ने दी है, एंड आई एम हैप्पी कि मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगेन आई वुड से थैंक गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू भगवान। वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
3: Walk Talk Radio.
4: Hi, मैं हूँ रविंद्र प्रताप सिंह, founder of देहरादून नाउ मैगजीन. मैं आज बात कर रहा हूँ वॉक टॉक रेडियो के ऊपर. आज मैं बात करने जा रहा हूँ करियर एडवाइस के लिए, कि जब हम छोटे थे तो उस समय ये टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, मोबाइल भी ऐसे नहीं थे, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक, ना कुछ नहीं था, केवल आपका याहू और रेडिफ मेल होते थे. आज के यूथ के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने अंदर की बात सुनकर जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर सकता है. हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा, आप दिखावे पे मत जाओ, जो आपको सही लगता है, जो आपकी फैमिली एजुकेट गाइड करती है, जो आपके टीचर आपको गाइड करते हैं, जो आपको स्कूलिंग के बाद समझ में आता है कि मेरे को फ्यूचर में करना क्या है, आप वो डिसीजन लेके सबसे डिस्कस करके करें. ये नहीं कि आप किसी के बहकावे में आके देखा देखी में जाके आपने ले लिया है. जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया इतनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आवाज़, अपना एक करियर बना सकते हो, पर आप उस प्लेटफॉर्म पे आप शो क्या करना चाह रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही. जो हमारे टाइम पे ना यूट्यूब था, ना कुछ नहीं था, आप फोटो जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, आप अपने शहर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की एक आवाज़ भी बन सकते हो, मोटिवेट, मतलब आप कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो कि लोग लाइक बाहर के कुछ लोगों के आपके शहर के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके स्टेट के बारे में पता चले. तो आप आज के टाइम में जहाँ पे आप रह रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रहे, उन लोगों की आवाज़ भी बन सकते हो. लाइक हमारी जनरेशन के टाइम पे हम टोटली फादर के ऊपर और रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, फ्रेंड्स की हम सुनते नहीं थे क्योंकि फ्रेंडशिप उतनी होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी नहीं वहाँ पे. स्कूल के वो टेंथ नर्सरी के फ्रेंड होते थे तो उनका भी सेम होता था, वो भी फैमिली के प्रेशर में. पर आज का जो यूथ है उसके ऊपर प्रेशर कम है फैमिली का, क्योंकि फैमिली को आज के टाइम में पता है कि हमारा जो बेटा है, बेटी है, उसको अपने करियर का डिसीजन खुद ही लेना है, हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते, हम उसको समझा सकते हैं. तो आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा, जो आपको सही लग रहा है, आपको फोकस माइंड आप लेकर आगे चल रहे हो कि मेरे को आगे ये करना है, डिस्कस करके प्रॉपर उसके इफ एंड बट समझें उसके बारे में, तो आप जो करियर ऐसा चूज करो जिसमें आपको अंदर की पीस भी मिले, ग्रोथ भी मिले और एक नेम भी मिले.
3: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
0: ये है Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio,
0: tune in for a better life.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक
1: रेडियो, वॉक टॉक रेडियो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, वॉक टॉक
2: रेडियो। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज बट इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लेट्स फेस इट, ये सच्चाई है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लैंग्वेज ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हैं, तो प्रोफेशनली आप उसे यूज कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आपके ऑफिस में इजिली एक्सेप्टेबल है, रादर देन मेकिंग इट, यू नो, लाइक मेकिंग इट टू ऑब्वियस दैट यू नॉट गुड विद द लैंग्वेज। उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप। वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk.
3: Walk Talk Radio.
4: हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को, मैं हूं एक्टर नियो फर्सवान, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं जिस भूमि से हूं, जिस मिट्टी में पला बड़ा हूं, तो यहां का ऋण तो मैं शायद मतलब जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि मुझे बनाने वाले लोग हैं यहां के। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मेरे पहले डेब्यू सॉन्ग को सपोर्ट किया। यहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ने का यही है कि आप क्वालिटी कंटेंट दो, अच्छे गाने बनाओ, म्यूजिक की आपको टेक्निकल नॉलेज, म्यूजिक हो चाहे सिनेमा की, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो होगी। और प्लस देखो एक चीज़ है, आप जो ऑडियंस को दे रहे हो, लगातार दे रहे जा रहे हो, तो ऑडियंस वही सुनती जाएगी, वही सुनती जाएगी। आप बोल रहे हो कि अगर स्लो सॉन्ग्स नहीं चल रहे उत्तराखंड में, डांस नंबर्स चल रहे हैं, इसका कारण भी हम ही आर्टिस्ट हैं। किसी भी ऑडियंस को जो खिलाएंगे या जो जो जो भी चीज़ हम देंगे उनको, उनको हम उसी चीज़ की आदत डालेंगे। तो यही है कि हमें अच्छा अगर हम कंटेंट देंगे आर्टिस्ट को और लोगों को, तो उनको उसी चीज़ की आदत पड़ेगी। तो हम स्लो सॉन्ग भी अगर अच्छे कंटेंट बनाएंगे तो लोग वो सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। तो यही है, अपने जो है टेक्निकल चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। और सिनेमा, अगर हम सिनेमा में काम कर रहे हैं या म्यूज़िक वीडियोज़ में काम कर रहे हैं या ऑडियो में काम कर रहे हैं, वीडियो में कोई भी, ये सिनेमा की कोई भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई और टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गाने उतने मिलियन व्यूज़ नहीं गए। चैता की चैतवाली और कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे गए हैं। तो ये है कि हमारे जो फोक म्यूज़िक और फोक कल्चर में बहुत पावर है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे मुंबई में लोग मेरे फोक म्यूज़िक की वजह से जानते हैं। जब भी मैं लोगों से मिलता हूं, आर्टिस्ट से मिलता हूं, वहां के आर्टिस्ट से मिलता हूं, साउथ के आर्टिस्ट से मिलता हूं, तो मैं यहां के कल्चर के जो मेरे ओरिजिनल म्यूज़िक है उसको सुनाता हूं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो सुनना चाहते हैं, वो लोकल जो रीजनल आवाज़ है, रीजनल म्यूज़िक है, वो सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे कल्चर और हमारी स्टोरीज, हमारे म्यूज़िक में बहुत पावर है, बट उसको सही तरह से दिखाना, उसके साथ जस्टिफिकेशन करना, वो हमारा कर्तव्य है। और हर इंसान अगर अपना कर्तव्य जो है वो अच्छे से निभाएगा, तो वो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो करेगी।
3: वॉक टॉक रेडियो,
0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय गाइस, मेरा नाम है निकिता वर्मा। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे सुन रहे हो वॉक टॉक रेडियो पे। फैशन इंडस्ट्री अभी काफ़ी ग्रो कर चुका है। जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो बहुत कम फैशन इन्फ्लुएंसर्स थे कंट्री में। मतलब 5 ईयर्स हो गए जब मैंने शुरू करा था, तभी जो भी अभी बहुत फेमस हो चुके हैं बस वही कर रहे थे। बट अभी वी कैन सी लाइक एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर गर्ल, बॉय, दे आर परस्यूइंग बीइंग फैशन इन्फ्लुएंसर। तो फैशन अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कंट्री में, और मॉडर्नाइजेशन आ गया है फैशन इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके के फैशन फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे कोई कैजुअल प्रेफर करता है, कोई स्ट्रीट स्टाइल, कोई क्लासी एंड मिनिमल, तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं। और फैशन क्या है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे शो कर रहे हो। कोई अपनी मूड को शो करता है, कैसे कपड़े पहन रहा है उस दिन। कोई स्पोर्टी फील कर रहा है, कोई किसी का मूड ऑफ है तो उसने उतना एफर्ट नहीं डाला है उस दिन। तो आप किसी को देख के बता सकते हो कि आज वो कैसा फील कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। फैशन इंडस्ट्री यही है कि आप अपने आप को कैसे शो करते हो। और बीइंग फैशनेबल एक आजकल कैरेक्टर है, और आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को शो कर रहे हो, सो बीइंग फैशनेबल। मैं 5th क्लास तक वहीं पे पढ़ी थी बिहार में, और मेरी मम्मा नेपाल से हैं, तो मेरी मासी नेपाल में रहती थी उस टाइम में। तो मेरी मम्मा को लगा कि यहाँ पे थोड़ी वहाँ इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है व्हेन यू आर गोइंग इनटू टीनेज। तो मम्मा ने मुझे नेपाल में भेज दिया था मासी के पास। तो 5th to 10th standard में नेपाल में थी, एंड आफ्टर दैट आई मूव टू दिल्ली इन 11th क्लास। तो 11 से आज तक मैं दिल्ली में ही हूँ, लाइक इट्स गोइंग टू बी 8 ईयर्स इन दिल्ली। तो 11th 12th में आई वॉज इन बोर्डिंग। बोर्डिंग में उतना कुछ एक्सपोजर नहीं मिला मुझे, क्योंकि अंदर ही एक दुनिया थी मेरी अलग। तो ये एक्सपोजर मिला कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से, इनफैक्ट थाईलैंड से भी वहाँ पे लोग थे। तो बहुत वो एक्सपोजर था कि अलग अलग जगह के लोग आए थे। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि उस टाइम इंग्लिश पे काम किया। बिहार से आई थी, नेपाल में भी रही थी, बट हाँ इंग्लिश में मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज लैकिंग। तो बोर्डिंग में रह के, और जैसे लोग नॉर्थ ईस्ट से थे, दे स्पीक इंग्लिश मोस्टली, तो उनके साथ इंग्लिश बोलते बोलते मेरी इंग्लिश तभी फ्लुएंट हो गई थी। वो एक्सपोजर मिला फिर भी लाइफ को हैंडल करने का, या मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ उस 10th के बाद ही। उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना है आपको, ये वो। तो एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और मैं पढ़ाई में अच्छी भी थी, तो सबने चूज़ किया मेरे लिए कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। तो मैंने बीटेक कर लिया, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मैं बहुत अच्छी थी, 10th में 10 CGPA, 12th में 87.2%, ऐसा हमेशा मतलब हमेशा एकेडमिक्स में अच्छा ही करा है मैंने बचपन से। फर्स्ट टॉपर, स्कूल टॉपर ऐसा। तो नोबडी थॉट कि अचानक से बीटेक से फैशन एंड एवरीथिंग। तो जब मैं MT गई बीटेक करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला एक फैशन का, और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी उस टाइम अपने बॉडी के ऊपर। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, तो मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और जब मैंने अच्छे से अपने ऊपर काम कर लिया, उसके बाद मेरा फैशन में थोड़ा इंटरेस्ट आया। उससे पहले तो मुझे कुछ भी मतलब नहीं था, पढ़ाई, खाना, पढ़ाई, ऐसा तो सोचा नहीं था। जब मैंने अपने ऊपर काम किया, उसके बाद फैशन में इंटरेस्ट लेने लगी, और अपने OOTD की पिक्चर्स में पोस्ट करती थी, आउटफिट ऑफ द डे, कॉलेज जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह चेंज करी है, स्कूल, कॉलेजेस, तो उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स काफ़ी हो गए थे। और हाँ, 6,000 जब मेरे फॉलोअर्स थे, तब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया था, बिकॉज तब मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था, बाटर कोलैब था वो एक। बट दे अप्रोच मी, तो आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस अबाउट, ऐसा क्यूरियोसिटी थी। तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया, उस अपॉर्चुनिटी को। तो वो मेरा फर्स्ट कोलैब था। तो हॉस्टल में मेरे साथ फ्रेंड्स रहती थी, दे यूज टू शूट फॉर मी, वो मेरे लिए शूट करती थी तभी। तो कभी फोटो वोटो क्लिक कर दिया, अच्छा अच्छा जब भी पहना। तो वैसे स्टार्ट किया था मैंने फैशन को, फैशन में मेरा इंटरेस्ट था, मेकअप में। जब मैंने अपने ऊपर काम कर लिया था, तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। उससे पहले तो बोर्डिंग में रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, राइट। तो हाँ, जब से मैं कॉलेज में गई, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, OOTD पोस्ट करना शुरू किया, देन तब मेरे को फैशन में इंटरेस्ट आया। और जब मेरे फॉलोअर्स अच्छे हो गए, ये कोलैब वगैरह मुझे आ रहे थे, तो मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। और उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करी जो इस फील्ड में हैं।
उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन आ गया, बहुत सारे ब्रांड कोलैब्स आ गई, मतलब पे कम करते थे वो क्योंकि मार्केट डाउन था ऑफ कोर्स, बट हाँ कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई क्योंकि सारे ब्रांड्स आ चुके थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं कहीं उनको चाहिए होते थे प्रमोशंस तो, और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज भी किया क्योंकि मेरा कॉलेज रहता था तो मैं कम कॉन्टेंट क्रिएट कर पाती थी, ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएट किया फिर मोनेटाइज हो गया मेरा पेज, मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग पेड कोलैबोरेशंस, उसके बाद से तो देयर इज नो लुकिंग बैक।

0: एनीबॉडी कैन डांस, ये चीज हम सबने सुनी है। शायद सब डांस भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा और बेहतर तरीके से डांस करना ये कला सब में नहीं होती। दिस इज आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, उनको डांस करने का बहुत शौक था, डांस भी बहुत अच्छा करते थे। स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, डांस कॉम्पिटिशन हो, उनका नाम लिस्ट में होगा ये उनको पता होता था। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि बड़े होके एक दिन वो दोनों साथ मिलके एक डांस स्टूडियो खोलेंगे, पूरी दुनिया को नचाएंगे। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसी सेम स्कूल में डांस सिखाएंगे। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वो दो टैलेंटेड, डायनेमिक और वाइब्रेंट लड़के आज हमारे साथ हैं, हर्षित गुप्ता एंड अभिनव भट्टाचार्य, को फाउंडर्स ऑफ वाइब्रेशंस द डांस स्टूडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉक टॉक रेडियो में।
1: थैंक यू गौतम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।
2: थैंक यू सो मच गौतम।
0: सबसे पहले इस नाम के बारे में बात करते हैं, वाइब्रेशंस, ये नाम रखने के पीछे कोई खास रीजन?
1: सो वाइब्रेशंस आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, यू एज अ पर्सन, I as a person, Abhinav as a person, we all have different vibrations. Okay, so vibrations is something, you know, if you send it in a positive way outside, it'll multiply. If you send it in a negative way outside, it'll multiply. So when we were coming back to Dehradun, humne yahi socha tha ki yaar, we've been working on our art since so long and we always wanted to give it back to the city. तो हम अपनी पॉजिटिविटी लेकर जब हम शहर के अंदर जाएंगे तो उसी वाइब्रेशंस को वी वुड वांट टू स्प्रेड इन द एंटायर सिटी। इनफैक्ट अभी तो हम सिटी की बात कर रहे थे, अब तो हम काफी जगह काम करते हैं, तो वी आर स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर। सो और ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस एकदम से आया, इसकी स्टोरी अभिनव भी आपसे शेयर करेगा, बिकॉज वाइब्रेशंस नाम रखने में ना हमें नहीं पता था कि हम इस चीज को इतना आगे लेके जाएंगे। We had a thought कि हाँ ठीक है, हम हमारी positivity और हमारी truthfulness towards our art will take us somewhere, but now that it's growing so well, we are very happy that we got stuck to this name called Vibrations.
2: Yes, actually it took quite a lot of time जब हमने Vibrations सोचा नाम, हम लोग I think around 1 week we were just talking on phone or if we were meeting, so हम लोग बस पूछ सोच रहे थे, अच्छा अर्जित तू भी सोच, he's like giving so many options, मैं भी सोच रहा हूँ। So after I think 2-3 days we both were like यार vibrant कैसे रहेगा, यार vibrant में भी वो बात नहीं आ रही है। So vibrant से कर करके हम लोग vibrations में आए कि let's give positive vibrations to everyone, let's take this dancing vibration कह लो या positive vibrations, let's take this to our city. So इस तरीके से हम लोग और आज तक हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं थ्रू आवर आर्ट, थ्रू आवर डांस, थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर पॉजिटिविटी।
0: काफी यूनिक नाम आपने रखा है, मतलब सुनने को मिलता नहीं है ये नाम आसानी से कि कोई अपनी डांसिंग एकेडमी का नाम वाइब्रेशंस रखे।
3: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी है, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ
1: हेलो हाय नमस्कार आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो मेरे यानी किरण के साथ में। तो जब स्वरोजगार की बात होती है तो महिलाएं तो आजकल कहीं भी पीछे नहीं है। तो आज एक बार फिर मेरे साथ एक महिला एंटरप्रेन्योर है जो न सिर्फ स्वरोजगार को उन्होंने अपनी जिंदगी से जोड़ा बल्कि दूसरों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करती हूँ मैं शशि बहुगुणा रतूड़ी का जो की फाउंडर है नमक वाली की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: धन्यवाद आपका।
1: कैसा लग रहा है आज आपको रेडियो पर आके?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो सबसे पहले स्वरोजगार की जब बात करते हैं तो नमक वाली का जो ब्रांड नेम है उत्तराखंड में उससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर उत्तराखंड में है तो पिसा हुआ नमक हो, चाहे रोटाने हो और चाहे अरसे हो, ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे बचपन को हमें याद दिलाती
2: है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो नमक वाली की कहानी कहाँ से शुरू हुई?
2: नमक वाली की जो कहानी है वो अभी हमारे 2018 से मैं एक वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन करती हूँ। तो उसी दौरान उसी सब चीजों की जो एक मेरा उत्तराखंड का जो फोक लोकगीत है उनकी मैं 8-10 महिलाओं के साथ मैं प्रैक्टिस करती थी रोज।
1: अच्छा।
2: और आज भी करती हूँ। तो उनमें से जैसे रेखा कुठारी है, सुशीला सेमवाल है, परमिला पांडे है, जो मेरे पूरी जो मेरी संस्था है जो मैं मतलब 1982 से काम कर रही थी तो मेरी बालवाड़ी शिक्षिकाएं थी। तो वही जो है नमक पीस करके लाती थी और मैं भी अपने सिलबट्टे पे बनाती थी।
1: अच्छा।
2: तो एक दूसरे को सब लोग टेस्ट कराते थे।
1: अच्छा।
2: तो उनमें से जो है रेखा कुठारी जब अपना ये सिलबट्टे का पिशू लोड लेके आई तो मैंने उसको जो है जैसे मतलब और भी कुछ महिलाएं थी तो उन्होंने क्या किया कि कल हमारे लिए लेके आना, कल हमारे लिए लेके आना। तो मैंने बोला ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी कि हमारे लिए लेके आना है और ये सिलबट्टे पे इतनी मेहनत होती है और आज की जो बात कहें हम तो सारा हर घर में सिलबट्टा एक कोने में पड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
2: सब लोग जो है आपके मिक्सी में चटनी बनाते हैं, मिक्सी में हर काम मिक्सी में होता है। तो मैंने उसको एक जैसे उसने नमक दिया तो मैंने उसको सब लोगों के सामने 100 रुपए दे दिया।
1: अच्छा।
2: कि आपका पारितोषिक है। और पारितोषिक है उसी दिन से मेरे मन में आया कि हमारा जो सिलबट्टा है वो सिलबट्टा एक कोने में बैठ करके रो रहा है कि मेरी कोई सम्मान ही नहीं हो रहा है। मैं इस सिलबट्टे से हमारे पूरे घर परिवारों में नमक पिसा जाता था, चटनी पिसी जाती थी और सब्जी नहीं थी तो चटनी रोटी लोग खाते थे, नमक रोटी खाते थे। वो सब समाप्त हो गया धीरे धीरे और हमारी पुरानी जो हमारी दादी नानी ये सब बनाती थी, माँ बनाती थी, वो खत्म हो चुका है। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि इसको जो है नमक को हम एक छोटी सी पुड़िया बना करके ऐसे करके जैसे वो कैसे पेपर बोलेंगे उसको, खाकी रंग का पेपर होता है जो
1: जी, जी,
2: उस
1: जी।
2: पेपर में उसको बना करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमने उसको डाल दिया। तो अब लोगों ने ऑर्डर किया उसका। अब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जैसे लोगों को अच्छा लगे तो पूरे देश भर के लोगों ने वो छोटा सा पैकेट ही लेने शुरू कर दिया।
1: अच्छा।
2: तो पैकेट लेने शुरू किए तो हमने एक महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ से बढ़ाया।
1: दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में, सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. आज के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट है नमक वाली शशि बहुगुणा रतूड़ी जी.
3: ऐसा नहीं है कि हम कहीं से देख करके कुछ भी चीज करते हैं.
4: बिल्कुल.
3: हमारे जो अंदर से निकलता रहता है उसी पर हम काम करते रहते हैं
4: जी.
3: तो वो हमने एक शुरू कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से शुरू किया. तो उसके बाद तो इंडिया
4: आगे
3: ने
4: बढ़ता
3: गया. बैटरी इंडिया ने स्टोरी छाप दी.
4: हाँ.
3: और बहुत सारे जब बैटरी इंडिया ने स्टोरी छापी तो 300-400 कॉल एक दिन में आने लग गई.
4: अच्छा.
3: हाँ.
4: ऑर्डर्स की
3: पहले पूछने के लिए, फिर ऑर्डर भी हुए.
4: अच्छा.
3: लेकिन उनमें से कितने कॉल हम उठा पाते ये भी था. फिर धीरे धीरे धीरे करके आज वो जो है इतना अच्छा स्वरोजगार बना है कि उसको देख करके हमारे उत्तराखंड के कम से कम 20-25 लोगों ने नमक वाली शुरू किया है, नमक बनाना शुरू किया है. अब वो आगे कितना पहुंचा रहे है वो तो पता नहीं है मुझे, लेकिन शुरू किया है. तो अगर माना हम कोई अच्छी पहल अच्छा काम करते हैं, और काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है ना. सबसे मेन बात है कि जो महिलाएं स्वरोजगार पर काम कर रही हैं वो पार्ट टाइम कर रही हैं. है ना. एक दो महिलाएं ऐसी होंगी जो परमानेंट काम करती हैं, लेकिन बाकी तो पार्ट टाइम काम कर रही हैं. अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर का खाना भी बना रही हैं, अपने घर की पूरी व्यवस्थाएं बना रही हैं. उसके बाद अपना समय निकाल करके एक दो घंटे नमक सिलबट्टे पे बनाती हैं. तो उनको एक बहुत अच्छा रोजगार मिला.
4: अच्छा.
3: हमने नमक वाली ब्रांड तभी बनाया कि हमने वो पिशुन लूण के हिसाब से जा रहा था. तो यही नहीं कि खाली हमारा नमक वाली है तो नमक जा रहा है, उसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं.
4: हाँ.
3: पड़ी हुई है. तो हमने उसका ब्रांड ही नमक वाली बना दिया, और आज पूरे देश में जा रहा है. आगे जा करके हो सकता है बाहर भी जाए. हम उसका लाइसेंस मतलब धीरे धीरे बाहर भी जाएगा.
4: हाँ.
3: इनडायरेक्ट जब कोई जाता है बाहर तो वो लेके चला जाता है.
4: लेके जाता है. और ऐसे ही मार्केटिंग होती है चीज की.
3: हाँ.
4: जब एक खाता है दूसरा खाता है. और शुरुआत भी देखो नमक वाली की ऐसी भी.
3: हाँ.
4: कि एक अपने घर से पिसा हुआ लूण लेके आया, दूसरा लेके आया और सोचा. हाँ, वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ.
3: आइडिया. और जैसे घर में हम लोग भी खाते थे तो मतलब वो अपने आप ही जो है एक निकला कि इसको बाहर निकाला जाए. है ना. तो उसकी एक सिलबट्टे की एक बहुत बड़ी पहचान बनी. हमारा एक नमक वाली ब्रांड है, लेकिन उसमें हमारे पहाड़ी मसाला है, पहाड़ी हल्दी है, हमारी ऑर्गेनिक दालें हैं, हमारे जो है जो भंजीरा होता है उसकी चटनी है, ड्राई अलसी है उसकी चटनी है, बद्री गाय का घी है, शहद है. तो उस माध्यम से हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और जो हमारे फार्मर हैं उनको भी एक स्वरोजगार मिल रहा है.
4: बहुत सारी चीजें हैं. वो मैंने सारी देखी है. और हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम में अपने जितने भी सुनने वाले हमारे लिसनर्स हैं उन सबको भी जरूर बताएंगे कि नमक वाली सिर्फ पिसा हुआ जो है नमक या लून नहीं देती है, वो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स. हाँ. भी देती है.
2: तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के इस प्रोग्राम में अभी के लिए रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए. आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर.

कभी बलून एक्सरसाइज की है? डंबल वाली की होगी, रोप वाली भी की होगी, लेकिन बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है? ये मैं बताऊंगा। मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर हम कहानियां सुनाते हैं और जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। आप भी कीजिए जिंदगी बदलने की कोशिश। बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है, इसके पीछे भी एक कहानी है और ये कहानी आपको आपकी खुशियों तक ले जाएगी। हाँ, यही मेरा वादा है। हर कोई अपनी जिंदगी में ना खुशी चाहता है, ढूंढना चाहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से उसे कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, ये सब कैसे होंगे, कैसे वो इन सब डील करेगा। उसे सिर्फ एक सच्ची खुशी ढूंढनी है और ये हर एक के दिल का एक गोल है ना। लेकिन सवाल है कि ये खुशी मिलेगी कैसे? हाउ आर वी सपोज टू इवन बिगिन लुकिंग फॉर इट? इसी के चलते लोग हैं, एक ग्रुप 30-40 लोगों का जो एक ग्रुप था, उसे एक कमरे में सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाया गया। ये सेमिनार था अबाउट लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड लर्न टू फाइंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। उनको अलग अलग स्किल सिखाए गए, लेसन्स पढ़ाए गए लाइफ के बारे में। सडनली स्पीकर खड़ा हुआ, अपनी बात कहते कहते रुका और उसने हर एक शख्स जो वहां बैठा था उसको एक बलून दिया। कहा कि इस बलून पर एक पेन से अपना नाम लिख दो। सबने अपना नाम लिख दिया। सारे बलून्स कलेक्ट किए गए और उसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया गया, वो सारे बलून्स। अब जितने भी डेलीगेट्स बैठे थे, इनका वो कोर्स कंप्लीट हुआ। इनको बोला गया कि अब एक छोटी सी एक्सरसाइज ये करनी है कि आपको दूसरे रूम में जाना है और अपना बलून ढूंढ के लेकर आना है 5 मिनट में। सब लोग रूम में गए, सारे बलून जो थे वो

0: इसका है और उसको बलून दे दीजिए। सबको लगा कि ये शायद ज्यादा सिंपल है। वो गए, बलून उठाया, जिसका भी नाम था उसका नाम लिया, जिसका नाम आया उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसको बलून दे दिया। 5 मिनट में सबको अपने अपने बलून मिल गया, सब एक स्ट्रेट लाइन में आकर खड़े हो गए। फिर उस स्पीकर ने कहा, यू नो व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग इन आवर लाइफ्स। एवरीवन इज फ्रेनेटिकली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑल अराउंड, नॉट नोइंग वेयर इट इज। लेकिन हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियां, इट लाइज इन द हैंड और इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। आप उन्हें खुशियां दीजिए, यू विल गेट योर ओन हैप्पीनेस। आप उन्हें उनका बलून दीजिए, आपको आपका बलून मिल जाएगा। आप उन्हें खुशियां देंगे, आपको खुशी मिल जाएगी। हमारी खुशियों की चाबी दूसरों को खुश करके ही मिलती है। जब हमारी फैमिली खुश होती है, दोस्त खुश होते हैं, बॉसेस खुश होते हैं, तभी तो हम खुश होते हैं। तो हमारी जो खुशी है दूसरों की खुशी पर डिपेंडेंट है। हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट टू एंजॉय इट। ये बर्नार्ड मेल्जर ने कहा था, हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट टू एंजॉय इट। चलिए फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर। मैं हूं कहानी वाला रजत, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: This is Bookipedia, only on Walk Talk Radio.
1: Bookipedia में जो बुक आज मैं ले रहा हूँ उसका नाम है The Four Agreements और राइटर हैं डॉन मिगुएल रुइस। राइटर इस बुक में कहते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को बचपन से ही उसके माता पिता, उसके टीचर्स, उसके भाई बहन, उसके यार दोस्त या बुक्स से और टीवी से या मैगजीन्स के थ्रू वो जो भी इम्प्रेशंस लेता है, यानी कि जो कुछ भी उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको पूरी तरह से मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। यानी उसे एक तरह से उन सब बातों के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है और उस एग्रीमेंट को करने की वजह से उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से कई बार करप्ट हो जाते हैं, जिनको वो एडल्ट होने के बाद भी, यानी बड़ा होने के बाद भी

0: पूरी तरह से जीता रहता है, क्योंकि उसके माइंड की टेप में वो ही रिकॉर्डिंग्स करी गई हैं। तो राइटर कहते हैं कि कई बार इन सारे निगेटिव प्रोग्रामिंग्स की वजह से हम लोग एक तरह के हेल में जीना शुरू कर देते हैं। इन्होंने हमको इस बुक के अंदर चार ऐसे एग्रीमेंट्स बताए हैं कि अगर हम उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम उस हेल से निकलकर हेवन की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इन्हीं परिस्थितियों में हमारी जिंदगी स्वर्ग की भांति हो सकती है। इनका फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड। इसका मतलब है कि आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, यानी हर वो शब्द जो आप किसी और से कहते हैं या वो शब्द जो अपने मन के अंदर आप अपने आप से कहते हैं किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर, अगर वो शब्द जो आप अंदर से चाहते हैं, महसूस करते हैं और जिस तरफ जाना चाहते हैं उसके साथ हार्मनी में नहीं है, यानी उससे अपोजिट है, तो वो इम्पैकेबल नहीं है। इम्पैकेबल का एग्जैक्ट अर्थ है विदाउट सिन, यानी पाप रहित। लेकिन पाप रहित हमारे लिए क्या हो सकता है? पाप रहित इनके हिसाब से वो चीज है जो भी आपको अपने लक्ष्य से दूर लेकर जाता है, यानी जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इम्पैकेबल नहीं है। तो आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये एक मैजिक स्पेल की तरह से हैं। इनका कहना है कि आप एक तरह से किसी आदमी के बारे में निगेटिव अगर बोलते हैं तो आप एक तरह से एक निगेटिव स्पेल दे रहे हैं उसको, यानी आप उसके ऊपर एक काला जादू कर देते हैं। तो अपने शब्दों के चयन में हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है तो हम इस पहले एग्रीमेंट को पूरी तरह से समझ पाएंगे। सेकेंड एग्रीमेंट जो इन्होंने बताया है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी बात हमको लगती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम में से कोई भी आदमी चीजों को पर्सनल लेने में एक एक्सपर्ट है। आप एक कल्पना करके देखें, कोई एक इंसान जो सुबह उठता है उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, उसके उस दिन लॉटरी लग जाती है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात हो जाती है, बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, तो वो बहुत खुश है। शाम को अगर वो आपके साथ बात करेगा तो आप सोच सकते हैं वो आपको किस तरह से ट्रीट करने वाला है। लेकिन हम एक दूसरा सीनेरियो देखते हैं कि अगर वही आदमी सुबह उठते ही उसको पता चलता है कि उसकी नौकरी छूट गई है, उसका एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे डिच कर देती है, तो वो किस तरह की मनोदशा में होगा और वो आपको किस तरह से ट्रीट करेगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दोनों ही परिस्थितियों में आप सेम हैं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस स्थान उस इंसान के साथ क्या चल रहा है ये बात आप बहुत भली बात ही समझ चुके हैं। तो इनका जो सेकंड एग्रीमेंट है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इनका तीसरा एग्रीमेंट है डोंट मेक अज्यूम्पशंस। जी हाँ, ये कहते हैं कि आपको कुछ भी मान ही नहीं लेना चाहिए अपने मन में किसी भी चीज के बारे में। आपको अगर अज्यूम्पशन से बाहर आना है तो आपको क्वेश्चन पूछने की कला आनी चाहिए और आपको बहुत बोल्ड होना चाहिए इस मामले में कि आप तब तक क्वेश्चंस पूछें दूसरे आदमी से जब तक कोई भी गुंजाइश ना रह जाए कि आपको कुछ भी अज्यूम करना पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस ऐसी आती हैं, मैं देखता हूं कि उसमें 90% प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो आपस में एज्यूम करके चलते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो हमें प्यार नहीं करता या वो हमारे खिलाफ हर समय सोचता रहता है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज्यूम्पशंस होती हैं। तो आप सोचिए, हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे समय होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं जब एक छोटी सी घटना घटती है और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिवली उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं, हम उसको इतना इनलार्ज कर देते हैं एज्यूम कर करके कि हम खुद ही उसके बोझ के तले दब जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कुछ भी एज्यूम करने से पहले इस थर्ड एग्रीमेंट को समझ लेना है, याद कर लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। इनका जो फोर्थ एग्रीमेंट है वो बहुत ही कमाल का एग्रीमेंट है। ये कहते हैं ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल शब्दों में इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। जो शुरू के तीन एग्रीमेंट्स हैं, यानी बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक अज्यूम्पशंस, ये तभी काम करते हैं जब आप ये फोर्थ एग्रीमेंट को यानी ऑलवेज डू योर बेस्ट को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, मैंने एक बार एक कोटेशन पढ़ी थी, टॉम पीटर्स की कोटेशन थी, वो कहते हैं कि एक्सीलेंस इज द नेक्स्ट 5 मिनट्स, फॉरगेट द लॉन्ग टर्म, मेक द नेक्स्ट 5 मिनट्स रॉक। इस कोटेशन ने मेरे को पूरी तरह से हिला दिया था, क्योंकि ये कहते हैं कि आपको लंबा नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी लाइफ में इस पल से आने वाले 5 मिनट को आपने एक्सीलेंट बनाना है और आपकी पूरी लाइफ एक्सीलेंट हो जाएगी। ये कोटेशन पूरी तरह से इनके फोर्थ एग्रीमेंट को कंप्लीट करती हुई दिखती है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब बुकीपीडिया में द फोर एग्रीमेंट्स। हम कोशिश करते हैं कि बुकीपीडिया के अंदर हम बहुत कम समय में आपको किसी भी एक किताब के कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसे लेसन्स दें जिनको अपनी लाइफ में इमीडिएट उतारकर आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकें। आप सुन रहे हैं बुकीपीडिया वॉक टॉक रेडियो पे, मैं गिरेंद्र भारती, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं। ऐसी ही किताबों के बारे में सुनिए बुकीपीडिया में, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।
2: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
3: वॉक टॉक रेडियो, वॉक

ये है इंडिया का पहला मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। मेरा नाम है मैंडी और देखिए खुशियों के बाद एक अलग सी जो एनर्जी हमारे सबके अंदर आई है वो बहुत ही कमाल की है, बड़ी बेमिसाल है। तो इसी के साथ अनसुने किसे शोगी हो चुकी शुरुआत। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से आपके अंदर इतनी गहराई, इतनी पॉजिटिव वाइब्स भर दी जाए कि जिंदगी में कुछ भी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आपके मेरे आसपास हो, आपको भी घबराए ना, वो ज़रूरी भी है। और बस यही वॉक टॉक रेडियो का एक मकसद है। और उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता हमें पसंद करते हैं अपना फीडबैक ज़रूर देते होंगे। चलिए ज़रा सी देर में शो की शुरुआत करते हैं।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: वॉक टॉक रेडियो पर मैं हूं दून की नौनी आरजे शिवांगी और शो चल रहा है सिटी टॉक्स। तो आज ना जब मैं घर से ऑफिस की तरफ आ रही थी तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनको पुलिस ने रोका हुआ था। अब मुझे लगा कि पुलिस चलान वलान तो काट रही है, लेकिन किस चीज का काट रही है। और वो मुझे तब पता चला जब मैंने आगे जाकर एक भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। एंड सच बताऊं ये मास्क पहनना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मतलब आए दिन लोग ऐसे ही घूम रहे, कोरोना को इतना लाइटली ले चुके हैं कि क्या ही बोला जाए। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना सैनिटाइजर का यूज कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग तक का तो दूर दूर तक पालन नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या ही बोले, कभी आप मार्केट की साइड निकल जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो फ्री फंड में एक और एडवाइस मैं आप सभी को देना चाह रही हूं कि आप जहां भी जा रहे हैं मास्क पहनकर जाएं, सैनिटाइजर का रेगुलरली उपयोग करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का तो भाई पालन कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना भैया है ना ये वापस दस्तक दे चुके हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि वापस से आप सभी के सब घर पर बैठ जाएं तो प्लीज ये सारी गाइडलाइंस का ढंग से पालन कर लीजिए। तो फिलहाल मूड को बनाते हैं थोड़ा सा लाइट, लीजिए सुनिए अमेजिंग सा ट्रैक और बने रहिए मेरे यानी दून की नौनी आरजे शिवांगी के साथ ऑन शो सिटी टॉक्स पर, ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुँच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत है वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं। यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है, न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजीनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्म जोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्म जोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं। लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसी मेनका कहती हैं कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसी को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसी कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती हैं कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्नोस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमेटस एथेंस से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आखिर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती हैं कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली, हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेम्पल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन आल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं। इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। यू नो दैट? ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यही देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे हैं उन लोगों से खुश नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्म जोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना, तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइएगा। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर, वॉक टॉक रेडियो पर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, ये है मेरा शो सफरनामा।
1: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।

हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाय, मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हाँ, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ में किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूं। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने यह कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं? कार का शीशा डाउन करके अक्सर हम पैकेट यूं ही फेंक देते हैं, कार का गेट खोल करके पिचक मुंह के अंदर का जो गुटखा था वो हम यूं ही सड़क पर थूक देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका जैसे बन जाएं। कोसते हैं हम सरकार को, सरकार के बस का ये नहीं है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, बट क्या हम हमारे हिस्से का करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर कि बाहर के जो देश हैं, जो साफ हैं, वहां पर सरकार से ज्यादा एफर्ट्स लोग डालते हैं। बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, आई डोंट नो कितनी सच है, बट उन दिनों किताबों में आया करता था कि जापान में जो लोग हैं वो अपने बैग में सुई धागा लेके चलते हैं, अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर किसी भी बस का सीट फटा हुआ है तो वो लोग उस सुई धागे की मदद से उस सीट को सिल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके पैसे से खरीदी हुई बस है जिसका इस्तेमाल उनको ही करना है।
और हमारे यहां क्या होता है, हमें हमारा विरोध जताना है, एक काम करो ट्रेन जला दो, पटरियां उखाड़ दो, हॉस्पिटल्स जला दो, बस जला दो, हम ये करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी बात कहने की इस पूरे एपिसोड में यही थी कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अकेला चना भी भार फोड़ सकता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर यह मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे न जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर शो, का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

ये है वॉक टॉक रेडियो. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. टॉक रेडियो. टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ऐसा लड़का देख कर ना मन करता है बस एक बार मिल जाइए. सो, वैसे मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है नहीं, लेकिन मुझे इनके बारे में पढ़ना बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे चैंपियन की कहानी आपको बताई जाए जिसे सुनकर आपको भी मजा आए. आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ, और मैं हूं अनसंग चैंपियंस के साथ मुस्कान आपके साथ. खेलों की बात हम जब करते हैं तब सबसे पहले हम उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पुलेला गोपीचंद के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 16 नवंबर को और प्रकाशम जिले में, जिसका नाम प्रकाशम था लेकिन पुलेला गोपीचंद ने वहां पर असली में प्रकाश फैला दिया था. उन्होंने एक्चुअली सिर्फ प्रकाशम में ही नहीं पूरा वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया था. 1991 में जब उन्होंने खेलना शुरू किया इंडिया के लिए, तब सबसे पहले मलेशिया के लिए वो खेलने गए थे, मलेशिया के खिलाफ एक्चुअली. उसके बाद तीन बार 1998 और 2000 में थॉमस कप में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया. अनेकों बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था उन्होंने. टूर्नामेंट में विजय हासिल कर भारत को गौरवान्वित तो महसूस कराया ही, उसके अलावा 1996 में विजयवाड़ा में सार्क टूर्नामेंट में और 1997 में कोलंबो में गोल्ड मेडल लेकर आए थे वो. कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत कड़े मुकाबलों के बीच भी रजत और कांस्य पदक जीते थे उन्होंने. 1997 में दिल्ली में ग्रैंड पिक्स मुकाबलों में उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी और सबसे अच्छे खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था उन्होंने. आपको पता है कि फाइनल में वो हार गए थे, पर खेल में यही तो मजा है, कभी हार तो कभी जीत. 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में बैडमिंटन के लिए अकेले इंडियन प्लेयर थे पुलेला गोपीचंद. आपको पता है प्रकाश पादुकोण के रिटायर होने के बाद इंडिया में कोई बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था. जब पुलेला गोपीचंद सामने आए तब सबको इनसे इतनी उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था कि यही बस नाम रोशन करेंगे. और लास्ट में प्रकाश पादुकोण के बाद आगे बढ़कर चमकने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी सिर्फ पुलेला गोपीचंद ही है. वो देखने में बहुत अच्छे तो लगते ही हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हॉट हैं, हैंडसम हैं, बहुत टॉल हैं, उनकी हाइट है 6'2". मतलब लड़कियों को अक्सर लंबे लड़के बहुत पसंद होते हैं. 2000 में ऐसा हुआ था कि पुलेला गोपीचंद थॉमस कप में फाइनल में पहुंच गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया जो है खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है. फिर जब गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड खिताब जीता 2001 में, तब लगने लगा था कि मानो हम चांद तक पहुंचने वाले हैं, मतलब सीढ़ी मिल गई है हमें. पुलेला गोपीचंद वही सीढ़ी थे. अब हमारे उस टाइम पर 6 खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में थे. टॉप 100 में 6 प्लेयर्स इंडिया से थे. और आपको पता है पुलेला गोपीचंद 2001 में 4th रैंक पर थे. मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि बस यार हमसे ऊपर कोई है ही नहीं. उन्होंने 2001 में चीन के चैन होंग को फाइनल में 15-12 और 15-6 से हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली थी. इस तरह से प्रकाश पादुकोणे के बाद इस जीत को हासिल करने वाले वो सेकंड इंडियन बन गए थे. मतलब आप सोचो, वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो गया है और आप भारत में दूसरे नंबर पर हो. पहले नंबर पर प्रकाश पादुकोण थे और 1980 में उन्होंने ये जीत हासिल कर ली थी प्रकाश पादुकोणे ने. और उसके बाद 2001 में नाम आया पुलेला गोपीचंद का. उन्हें 2001 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था उसके बाद, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण उनके खेल पर बहुत इफेक्ट पड़ा और 2003 में उनकी रैंकिंग गिरकर 126 पर आ गई थी. 2005 में उन्हें फिर से सम्मानित किया गया था. उन सबके बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, पर अभी ये बता देती हूं कि गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी चलाते हैं. अब वो एक जाने माने कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है. और उनके जो प्लेयर्स हैं वो आज भारत में नाम रोशन कर रहे हैं. उन प्लेयर्स का नाम आप जानते हैं? आई एम श्योर जानते होंगे. साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इन दोनों के अगर कोचिंग की बात की जाए तो वो पुलेला गोपीचंद ने ही दी है. लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है. जब वो खेलों में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई थी, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी एकेडमी खोलूंगा.
लेकिन वर्ल्ड क्लास एकेडमी खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी जरूर बताएगी मुस्कान आपको। सुनते रहिए अनसंग चैंपियंस, जिसमें आप मुझे यानी कि मुस्कान को सुन रहे हैं और आज मैं आपको बता रही हूं पुलेला गोपीचंद की कहानी। एक ऐसा चैंपियन जो एक टाइम पर टॉप 5 में था पूरे वर्ल्ड में और फिर धीरे धीरे कहानी बदलती चली गई। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना तय है, जीना इसी का नाम है। आप मेरे सुरों पे मत जाइए, मुझे पता है मैं बहुत बेसुरा गाती हूं, लेकिन जज्बातों को समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आप थोड़ा सा डाउन है तो ट्रस्ट मी कल आप टॉप पर हो सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मुस्कान विल बी हियर बस थोड़ी ही देर में।

वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यून इन फॉर अ बेटर।

जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पे भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, मेरे यानी आरजे किरण के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे, और हमेशा की तरह जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर खुश नहीं है, खुशी आपसे दूर है, तो ढूंढिए आसपास, कहीं ना कहीं खुश होने का मौका मिल ही जाएगा। प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी, और कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं किस वीर गाथा को आप सभी के बीच में सुनाने वाली हूँ, रखने वाली हूँ। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि वतन से ज्यादा खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और मुझे लगता है कि जो हमारा वतन है, जो हमारा देश है, अगर हम उसके लिए एक काम भी करते हैं ना, एक बदलाव भी अगर हम अपनी तरफ से लेकर आते हैं, तो बड़ा प्राउड हमें फील होता है, बशर्ते कि हमने कभी ऐसी कोई कोशिश की हो तो हमें प्राउड होगा, या तो हम उस फीलिंग को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वो फीलिंग क्या होती है। कभी किसी आर्मी पर्सन से, किसी पुलिस फोर्स के जवान से, या फिर किसी भी इंडियन फोर्स के जवान से आप ये बात पूछिएगा, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ये बात पूछेगा जो हर पल अपनी जिंदगी का हर क्षण, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है, फैमिली उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी होती है, लेकिन जो हमारा देश है वो उनके लिए उनकी फर्स्ट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में आते हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो बचपन से ही एक सपने को लिए जीते हैं कि हमें बड़े होकर ये बनना है। कई सारे लोग शायद टीवी पर देखकर उन सपनों को जीते हैं, वहां से इंस्पिरेशन उन्हें मिलती है कि मुझे भी ये करना है। हो सकता है कि किसी ने अखबार में किसी को देख लिया हो और उसने सोचा हो कि मुझे ये करियर चूज करना है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे माहौल में पैदा भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, जहां पर उनके अंदर एक जज्बात समा जाते हैं कि मुझे तो बड़े होकर इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इंडियन आर्मी का। तो कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी महान पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, जिन्होंने न सिर्फ सेना को अपनी परवरिश में जिया है, बल्कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी कि जब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटी की, जब बात आती है करियर चूज करने की, तब तक उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि उनको इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जाना है, फिर चाहे वो इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी। वेल, मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा हिंट तो आपको मिल ही चुका होगा, क्योंकि हाल ही में उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है, उनकी लाइफ जर्नी है, वो एक फिल्म के जरिए कुछ घंटों में हमें दिखाएगी। लेकिन आज कॉल फॉर ड्यूटी में मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर उनको याद किया जाए, क्यों ना उनकी जिंदगी में थोड़ा सा फिर से झांका जाए और याद किया जाए उनके उन वीर पलों को जो उन्होंने बिताए और हमेशा के लिए हमारी देश की झोली में डाल दिए। तो आज कॉल फॉर ड्यूटी पर मैं बात करने जा रही हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। कई लोगों का ऐसा कहना है कि कारगिल युद्ध की जब जब बात होती है, अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जिक्र ना करें तो वो पूरी की पूरी बात ना बिल्कुल अधूरी होती है। और आज हम करने वाले हैं ऐसी ढेर सारी बातें कारगिल युद्ध के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा की।

आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मेरे यानी किरण के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी। 9 सितंबर 1974 का वो दिन जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर दो बेटियों के बाद जन्म हुआ दो जुड़वा बच्चों का। कमला कांता जी और जो मिस्टर बत्रा थे, उन दोनों की ही श्री रामचरितमानस में बेहद ही गहरी श्रद्धा थी और उन्होंने इस चीज को देखते हुए अपने दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। बच्चे बड़े हुए तो उनको स्कूल में डालना था। सबसे पहले डीएवी स्कूल के साथ उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में उनको एडमिशन दिलाया गया। अब स्कूल जो है वो सेना छावनी में था, यानी कैंट एरिया में था, तो स्कूल से घर आते जाते कई बार ऐसा होता था कि जो सेना के जवान हैं उनसे वो बेहद ही करीबी से मिलते थे, या फिर कह लीजिए कि बेहद करीब से उनको जाते आते देखा करते थे। कई बार वो अपनी परेड कर रहे होते थे तो कई बार कुछ काम कर रहे होते थे, कई बार वो भाग रहे होते थे तो कई बार वो किसी अर्जेंट काम के लिए बड़ी जल्दी में दौड़ लगा रहे होते थे। ये सब देख कर विक्रम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। उन्हें लगता था कि सेना की लाइफ में कितनी ज्यादा देशभक्ति है, कितनी ज्यादा डेडिकेशन है, कितनी ज्यादा ऑनेस्टी है, और यही ऑनेस्टी, यही डेडिकेशन, यही एक्टिवनेस विक्रम को अपनी तरफ बस खींचे चली जा रही थी। और साथ में ये सारी चीजों को और बढ़ावा मिलता था जब वो टीवी पर कोई भी सेना से जुड़ा हुआ सीरियल देखते थे या फिर फिल्में देखते थे। उनकी वीरता की कहानियां जब वो सुनते थे तो ये सब उन्हें बहुत पसंद आता था। यानी कि ये सीरियल्स, ये फिल्में, ये कहानियां जो वीरता की थी, सेना की वीरता की थी, ये उनकी फेवरेट हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, विक्रम की अगर फेवरेट ड्रेस की बात की जाए, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको वो किसी भी स्पेशल मौके पर पहनना चाहे, तो वो शायद किसी भी भारतीय फौज की ड्रेस होगी। यानी कि जो भी उनकी वर्दी है वो उनकी फेवरेट हुआ करती थी। विक्रम स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई में हमेशा टॉप किया करते थे बल्कि स्पोर्ट्स में भी उनकी बड़ी रुचि रहा करती थी। स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस में वो हमेशा टॉप के खिलाड़ियों में आते थे। वहीं कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो उसमें भी वो कभी पीछे नहीं रहे, हर जगह वो एक्टिव रहा करते थे। और यही एक्टिवनेस थी जो उनको सेना में जाने का जज्बा भरती थी। अब विक्रम का 12th कंप्लीट हुआ और उसके बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने साइंस से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा NCCA एयर विंग में शामिल हुए। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें NCC में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने NCC कैंडिडेट के रूप में रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट उनके लिए था। या मैं यूं कहूं कि सेना में जाने की जो ख्वाहिश उन्होंने अपने बचपन से अपने मन में दबाई हुई थी, उसका पहला पड़ाव वो चढ़ रहे थे। फिर 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी चुनने का ऑफर आया। अब मर्चेंट नेवी में भी कहीं ना कहीं आप कर तो देश के लिए ही काम रहे हैं, लेकिन फिर भी विक्रम के मन में एक उलझन थी कि उन्हें तो इंडियन फोर्सेज में जाना था, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में। और ये जो मर्चेंट नेवी का ऑप्शन उनके पास आया, उसको नकार कर कहीं वो कोई भूल तो नहीं करेंगे, और अगर उसको चूज कर ले तो कहीं उनके मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। लेकिन फाइनली उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने मर्चेंट नेवी में जाने का जो ये ऑप्शन उन्हें मिला उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1995 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इंग्लिश में MA करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उन्होंने अपना एडमिशन लिया। अब धीरे धीरे पढ़ाई कंप्लीट होने जा रही थी और मन में जो सपना बचपन से पाले हुए थे कि सेना का हिस्सा बनना है ऑफिशियल तरीके से, NCC से अब उनको इंडियन फोर्सेस में दाखिला लेना था, इंडियन फोर्सेस का हिस्सा बनना था, उसको कैसे पूरा किया जाए, एक मौके की तलाश में वो थे कि जैसे ही वो मौका आएगा जी जान लगा देंगे। और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, ताकि फिजिकली, मेंटली और नॉलेज की तरफ से भी कोई कमी उनकी ना रहे।

0: सेना में कैसे उन्होंने अपना करियर बनाया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन से सन से इसकी शुरुआत हुई, जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी के लिए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर कॉल फॉर ड्यूटी में मेरे यानी किरण के साथ।
1: वॉक टॉक रेडियो, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू दीक्षा चाटपाल इन वॉक टॉक रेडियो।
1: थैंक यू सो मच। वाओ, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर एंड हैव अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू गाइस।
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वांट टू गेट इनटू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म्स जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माय ग्रैंडफादर ही वाज अ म्यूजिशियन एंड माय डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोका कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. Mm-hmm. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे. मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम, एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशन वगैरह दोगी, यू नो, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो, नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना, यू नो, एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहां पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: तो कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.

0: हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक बार फिर मैं अपने बहुत ही दो इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में आप सभी के साथ आई हूं। और मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। और क्यों लगते हैं ना, वो तो अभी जब आप भी सुनोगे ना आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जो मेरे दो गेस्ट आज मौजूद हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साथ ही वाटर कायकिंग करते हैं और साथ ही साथ ट्रैकिंग भी करते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ के हैं। तो आज बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डोलमा का, यानी कि सुनीता श्रेष्ठा का, और साथ में उनके हस्बैंड मेरे साथ है जिनका नाम है सोनम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। और सच बताऊं तो पहले ना मैं बड़ी आज टायर्ड सी फील कर रही थी किसी वजह से, लेकिन जैसे ही आप लोगों से मिली ना मेरी सारी थकान चली गई। मैं सीरियसली ऑनेस्टली मैं ये बात बोल रही हूँ। और अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए। तो मैं आपके बारे में जो है खुद बताऊं, इससे अच्छा मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं अपने बारे में कि सोनम कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी तक की आपकी जर्नी, जो पर्सनल लाइफ की जर्नी है, क्या कुछ, क्या स्टडी किया, कहाँ कहाँ से होकर आए हो।
2: मेरा नाम सोनम है और मैं रहने वाला वैसे हरसिल उत्तरकाशी से हूँ। और यहाँ देहरादून में मैं पिछले 5-6 सालों से यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ एज अ अकाउंटेंट। और मैं 9 to 5 जॉब के अलावा साइकिलिंग करता हूँ, माउंटेन बाइकिंग, वाइट वाटर रिवर कायाकिंग एंड स्कीइंग भी करता हूँ इन विंटर सीजन। इसके अलावा अपनी जर्नी के बारे में मैं बताऊँ तो साइकिलिंग मैंने शुरू की थी 2019 से, जस्ट कोविड उस टाइम जस्ट शुरू ही हो रहा था। तो ऑफिस से भी मतलब लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो पूरा ही बिल्कुल बंद था, करने के लिए कुछ था नहीं, घर बैठो सब। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ करना चाहिए घर बैठे बैठे। तो साइकिलिंग मैंने वहां से शुरू की, देन देखते ही देखते मैं मतलब साइकिलिंग का इतना मेरे को शौक और इतना मतलब मुझे साइकिलिंग इतना पसंद आया कि मतलब कब मैं देहरादून से लद्दाख इन साइकिल, मैंने
0: साइकिल में
2: या
0: टोटली
2: साइकिलिंग।
0: ओह माय गॉड,
2: मैं देहरादून में कह सकता हूँ मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो देहरादून से जिसने साइकिलिंग स्टार्ट की और पूरी लद्दाख तक कंप्लीट की। स्टार्टिंग में मैं लेके चल रहा था कि यार मेरे को मतलब जिस हिसाब से डिस्टेंस है लाइक 1400 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि यार पूरा महीना तो मेरे को लगेगा। बट जब मैंने शुरू की तो कब 12 दिन में कंप्लीट हो गया मुझे पता नहीं चला।
3: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
4: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
5: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: इश्क तेरा तड़पा दे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं मेरे गाने Walk Talk Radio पर। Tune in for a better life.
1: अच्छा अब डोलमा आपकी बारी, आप बताइए कि आप क्या करते हो और आपकी अभी तक की क्या जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की।
2: मेरा नाम सुनीता श्रेष्ठ है
1: जी,
2: एंड मुझे डोलमा कह के ही ज्यादा जानता है यहाँ भी और नेपाल में भी
1: जी।
2: वैसे मैं नेपाल से हूँ, बिलोंग वहीं से करती हूँ, बट अभी मेरा शादी हुआ है यहाँ पर।
1: हाँ।
2: तो यहाँ हूँ मैं, कब से हूँ, 2 साल होने वाला है।
1: 2 साल होने वाला
2: है। हाँ। okay. तो मेरा साइकिलिंग जर्नी, साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेकिंग गाइड थी।
1: ओके।
2: और ट्रेकिंग में मुझे पता चला कि नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज और ज्यादा मुझे उसी, जब मैं ट्रेकिंग करने लगी तब पता चला मुझे
1: जी।
2: एंड हम ह्यूमन बींग्स है तो हमें फन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर मुझे, मेरे ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है एक इवेंट नेपाल में, काठमांडू कोरा करके, तो वो जून जुलाई में होता है वैसे। तो वो मेरी अपनी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता था, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ओके मैं भी करती हूँ।
1: ओके।
2: बिकॉज ये वाला ज्यादा फन लग रहा था। मैं आउटडोर पर्सन के अलावा स्टूडेंट थी घर पे। फिर एक्चुअली मेरा जो स्पोर्ट्स वाला जर्नी वो मेरे स्कूल से स्टार्ट हुआ है।
1: अच्छा।
2: मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल खेलती थी और मैं स्टेट में सेलेक्ट हुई थी वॉलीबॉल के लिए। तो वहीं से मुझे खेलकूद में इंटरेस्ट हुआ। फिर रनिंग, लॉन्ग जम्प ये सब में तो मैं अच्छी खेलती थी उस टाइम में। फिर उसके बाद थोड़ी सी, हमारी नेपाल में 10th क्लास को SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,
1: अच्छा
2: हाँ नेपाल में वो होता है, तो 10th क्लास के बाद हमें 3 मंथ्स का हॉलीडे मिल जाता है।
1: ओके।
2: हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी खुद को पुश करना पड़ा कि लाइक डोलमा यू शुड गो आउट एंड इंडिपेंडेंट होना है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम, दिस थिंग्स आर रियली हार्ड टू एक्सप्लेन यू नो, लाइक हम एक गांव से होता है एंड वहां पर स्पोर्ट्स ये सब चीजें इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है।
1: हाँ।
2: एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये चीज मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था। मुझे ये चीज से लगाव हो गया था एंड मेरे पेरेंट्स को ये, उनको मंजूर नहीं था, दे वर लाइक टोटली अगेंस्ट मी। वो चाहता था कि मैं एक अच्छी बेटी बनू, संस्कारी,
1: पढ़ लिख लू, घर का काम, जॉब कर लू, फिर शादी भी कर लू।
2: हाँ, ट्रू, एग्जैक्टली। बट वो मेरा नहीं हुआ, मेरे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया।
1: ओके।
2: तो मैं टोटली थोड़ी सी उनके साथ डिसअपॉइंटेड हो गई थी। फिर मैंने पुश करना स्टार्ट कर दिया कि ओके इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है,
1: मैं खुद से कुछ करूंगी। हाँ,
2: मैं खुद से करूंगी। फिर वो 3 मंथ्स हॉलीडे में मैंने मम्मी पापा को झूठ बोला कि आई वांट टू गो टू मामा के घर।
1: अच्छा।
2: बट एक्चुअली मैं काम करने जा रही थी।
1: और उन्हें पता चला फिर? नहीं पता चला
2: उन्हें, नहीं पता चला कि मैं क्यों जा रही थी काठमांडू। एक्चुअली

0: बस ये फील हो गया था कि मुझे कैसे भी करके काठमांडू पहुंचना है. फिर काठमांडू पहुंची मैं, एंड हमारे बहुत दूर का रिलेटिव्स है वो लोग. फिर मैं उनके साथ रही. एक्चुअली मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं मामा घर जाऊं, पर मैं नहीं गया क्योंकि उनके घर जाऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी कहीं.
1: वो भी नहीं जाने देंगे.
0: हाँ, फिर मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा, क्रॉस क्वेश्चंस, तो मुझे वो नहीं चाहिए था. मुझे बस अपनी काम करना था, काम ढूंढना था फर्स्ट थिंग. तो काठमांडू गई, उनके साथ रही. फिर कोई पहचानने वाला भैया, उनको मैंने बात किया कि आई वॉन्ट टू वर्क, तो उन्होंने मुझे ट्रैवल एजेंसी में इंट्रोड्यूस करवाया.
1: अच्छा अच्छा.
0: फिर नेपाल में इतना आसान नहीं है वो, जो हम एक बार टूरिज्म में लोग कोई भी जैसे कि ट्रैवल एजेंसी हमें हायर करता है तो वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं करता है. तो ये बात मुझे बहुत बाद में जाके पता चला. तो उन्होंने मुझे बुलाया, लाइक डोलमा ऑफिस आओ, बातें सुनो. एंड यू नो, लाइक वो बातें सुनने के लिए मुझे 3 घंटा वॉक करके जाना पड़ता था वो जगह से. एंड मैं 8 बजे जाती थी क्योंकि मुझे सुनना था, मुझे सीखना था, सीखना पड़ता था. एंड मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कंपनी, यू नो, लाइक ना ज्यादा
1: कंफ्यूजन.
0: एंड स्टिल मुझे बस इंडिपेंडेंट होना था.
2: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो. एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर.

हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई

0: ज़्यादा हार्ड वर्क करे तो सक्सेस मिल जाए। और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितनी की ज़रूरत है वहाँ पे। आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से जिले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
1: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

0: हाय दिस इज शाहिद माल्या, सुनते रहिए इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो।
1: सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुने।
2: हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर।

0: रेडियो।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, AKA धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है, तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो लोग होंगे आपके आसपास, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना, तो यही सोसाइटी आपको ऐसे एग्जांपल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको एज ए एग्जांपल देखेंगे। तो यही है यार, कि किसी की सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ, और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है, तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं, तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी, तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी। तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ, जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
2: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: you. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: Hi guys, my name is Kavya और मैं अपने बारे में क्या कहूँ? I think मैं एक rural entrepreneur हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट मी.

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: सो आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगी 2009 के आसपास शुरू हुआ। हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं, एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था। तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी। तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली, एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम nuts, and me being coming from a family where my father has 10 other brothers, sisters, so we were lots of kids, you know, in Rajasthan. So she would always have this and she would give something from her potli to kids. So I was like, okay, craft potli, and back then wo domain mujhe mil gaya, to wo tab se raha, but uske bare mein I did nothing. For 10 years I kept working, and iski shuruaat aise hui ki पैंडमिक आया, एंड आई थिंक हम सभी ने अपने आप के बारे में थोड़ा कुछ जाना। आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि जो मैं रूरल ट्रैवल कर रही थी फॉर माई फन विद द जॉब ऑन वीकेंड्स, वो रियली ट्रैवल नहीं था। मैं वापस आती थी अपने कंफर्ट जोन में, जॉब करती थी, सैलरी लेती थी। इट वॉज पैंडमिक दैट मेड मी रियलाइज कि इफ आई हैव अ पैशन, देन मुझे उसका टेस्ट लेना चाहिए कि वो पैशन रियली है भी या नहीं, कैन आई लास्ट दैट। So I took this massive journey. It's called Kavya on Quest. थोड़ा सा अच्छा उसका Google traction है, आप देखिएगा। So I took this with Mahindra on 2nd October. The idea of Kavya on Quest was that non-stop I will be on the roads covering villages of India and telling their stories without a single day break, without falling ill. I think I've never spoken about this. I took 42 COVID tests in 6 months of time. I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic, and ended this journey in end of May 2021, and covered non-stop without staying in hotels or taking any guides, just covering crafts of India. Early in this journey I figured ki while I am from Rajasthan, which is like a craft hub, or Kutch, I thought that the focus has to be to eastern India, जहाँ पे बहुत सारा culture है but ज्यादा दिखाया नहीं जाता है। तो जब मैं वहां पे गई, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वॉज जनवरी 2021, आई फर्स्ट एंटर्ड द लैंड ऑफ उड़ीसा, एंड उड़ीसा के हम जब भी बात करते हैं, वी जस्ट नो पुरी और भुवनेश्वर। आई एंटर्ड इन टू अ लैंड वेयर आई सॉ जेम्स कैमरून अवतार मूवी कमिंग टू लाइफ। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि ऐसे रोलिंग जंगल्स हैं, क्लाउड्स हैं, एंड उसमें आदिवासी पीपल लिव फ्रीली। इट वॉज लाइक अवतार मूवी केम इन फ्रंट। आई हैड नेवर सीन, लाइक आई हैव बीन टू लद्दाख, आई हैव बीन टू beautiful places like Spiti, Andaman, but Koraput was something else for me. And when that journey ended in June, I was like, either go back to my job in Gurgaon, which was paying me well, or do something about your life. And I had 2-3 options. So I thought, okay, ya to West Bengal mein kahin pe jaate hain, ya Chhattisgarh mein, or Odisha. Now, Odisha being very well connected by air, and generally since I also live solo, I felt it was a great opportunity for me to kind of relocate. So I relocated to Koraput and started with something really small. Craft Potli started its operations with a mere turmeric bar that has now become a case study with the Tata Institute of Social Sciences in Bombay. It was a breakthrough product in itself. First 6 months of me living from August 21, when I moved to the village, till about, I would say, October or November 21, I would just go village to village, go to Adivasi Haats on weekly basis. घूमती रहती थी, उन लोगों को लगता था ये कौन सी लड़की है, क्या कर रही है। तब मैंने डिस्कवर किया कि ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा हल्दी उगता है, विच इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड, एंड इट डजंट गो आउट ऑफ देयर ओन विलेजेस। So coming from the learning that I was having with my jobs, with a fashion brand that I was working before pandemic, we decided to turn that turmeric bar into a bathing bar. Now these people, जिनके भी हम बात कर रहे हैं, वो लोग एक particularly vulnerable tribe को belong करते हैं, जो आज भी सुबह उठ के जंगल जाते हैं एंड फ्रूट्स तोड़ के लाते हैं, उसके बेसिस पे या थोड़ा हल्दी उगाते हैं या कुछ कॉफी उगाते हैं या सब्जी उगाते हैं, एंड उसी पे ही जिंदा रहते हैं। फॉर देम दैट इज देयर लाइफस्टाइल। सो टू मेक देम लर्न हाउ टू मेक अ बेदिंग बार वॉज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। वी गैदर्ड अबाउट 62 वुमेन फ्रॉम 5 विलेजेस, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द कोंधा ट्राइब, and they learned in 7 days how to mix the right proportions, the right percentage, usko dry kaise karna hai, ye sab seekh liya, lekin beche kahan, That was the major question. So friends and family came into picture. I think every entrepreneur does that. I can say that now. So I sent these bars packed in brown paper, jo hum bachpan mein use karte the kitabe chadhane ke liye. Usse bheja and the reviews were fantabulous. It was something that I had not expected. People kept on repeating. My own relatives kept on asking. And that's where we thought, okay, let's increase the production. Thoda sa apna paisa dala and we worked on the packaging a little bit. Then it was, I think, April 2022, very recently, that a Bangalore customer reached out to us that, can you make a lot more of this bar? Like, volume aap kar sakte ho. So we said, haan, abhi humare paas 14 women actively work kar rahe hain, but we have 62 trained and we can train more people. So, yeah, and I think that was the pivot for Craft Kotli. In April 22, we started supplying to one of the United Nations agency in Guatemala in Central America. And that is where volumes came in. When volumes came in, we got some confidence to add more products to Craft Kotli and also define ourselves ki we will not be working in rural, but Adivasi belts of the country. And that was like a long story to a short question that Craft Kotli ke shuruaat kaise hui.
0: Walk Talk Radio.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.
1: हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी. मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ जाया हूँ वॉक टॉक रेडियो में.

औरों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहते इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, मैंने बी एम ए जो मेरा म्यूजिक में होता मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मेरा लड़का जवान होता 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहां पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो। हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी, मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब उसका फिर वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा विखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो कर गए, क्लिक कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं है, और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाएं, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके आपका, आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला, थोड़ा लर्निंग इज अर्निंग होती है यहाँ पे। और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि ये बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे।

0: दोस्तों मुझसे अगर कोई पूछे कि मेरे जिंदगी में आपको क्या लगता है अचीवमेंट्स क्या है, कौन कौन से पल आपके अचीवमेंट्स के, मैं समझता हूँ देखिए जब हम बचपन में होते हैं तो छोटे होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं इधर से उधर, हमें कुछ पता नहीं होता कि क्योंकि हमें कुछ खोना या पाना है नहीं, ना कुछ पैसे लगे पड़े हैं, नो इन्वेस्टमेंट, सो अचीवमेंट्स वहाँ नहीं होती। बट ऑफकोर्स जब आप स्कूल में जब होते हो तो कभी कभी आप रेस जीत जाते हो तो वो आपकी एक पहली अचीवमेंट होती है और आपको कितनी खुशी मिलती है, फिर मार्क्स मिलते हैं, फिर नंबर वन आते हो। मेरी जिंदगी में वो सारे पल नहीं थे कभी, मैं अपनी क्लास में 27वां नंबर आता। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ कि फर्स्ट आने में इतना क्यों इतराते हो, ये जो जो जो स्कूलों में जो चार्टर कोचिंग क्लासेस के इतने बड़े बड़े फोटो आते हैं कि 10 बड़े जो नंबर 1 to 10 के हमारे हमारे हमारी क्लास के 5 छात्र उसमें मौजूद है और वो बड़े स्माइल कर रहे होते हैं कि उनको 95% 98% 98 to 97% मिलते हैं। मेरे को क्लास में 27 नंबर आया था मैं, और अपने भाई को मैंने अमेरिका में लिखा था जो अमेरिका में बैठे हुए थे उस वक्त, मैंने कहा मैं क्लास में 27वां नंबर आया हूँ, कोई झिझक नहीं थी मेरी, मैंने उसको सक्सेस नहीं माना। जिंदगी में पहली बार मैं SSC में फर्स्ट क्लास आया, क्योंकि लोगों ने कहा था कि कॉलेज जाना हो तो SSC में मार्क्स होने चाहिए, मेरी सिस्टर भी पढ़ रही थी मैं भी पढ़ रहा था, हमने रात रात भर के पहली बार जिंदगी में मैंने रटाफिकेशन कर करके मुझे 60% मार्क्स मिले स्कूल में, मेरी सिस्टर को 70% मार्क्स मिले, मेरी सिस्टर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसको 70% उसको डिस्टिंक्शन बोलते थे, मुझे पहली बार समझ में आया कि डिस्टिंक्शन क्या होता है और फर्स्ट क्लास क्या होता है। मैं जिंदगी में पहली बार फर्स्ट क्लास में आया और मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन मिला, वो भी मेरी जिंदगी की फर्स्ट अचीवमेंट। अचीवमेंट मैं चाहता था प्लास्टिक इंजीनियर बनूं, किसी कारणवश आज मैं समझता हूं कि भगवान चाहते थे कि मैं आयुष्मान भव कहूं, मुझे एडमिशन नहीं मिली, कानपुर में मैंने अप्लाई किया था मुझे वो एडमिशन नहीं मिली, फिर मैंने एक्टिंग में स्टेज किया, स्टेज में मैंने पहली बार चलना सीखा वो भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाकर, और उसके बाद वहां पर जो मुझे याद आता, मुझे किसी ने आके कहा था सर आपको जब अवार्ड मिल रहा था आप प्ले कर रहे थे, मेरी मदर बैठी थी मेरे ऑडिटोरियम में, मेरी फैमिली के साथ आए होंगे मेंटर, बोलते आपकी आपके जब तालियां पड़ती थी कोई डायलॉग के ऊपर तो मेरी मां को उसने बताया, उसने दूसरे वाले जो साथ में बैठा था उसको टच करके बोला अरे ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मुझे इतनी हंसी आई ये सुनकर, बट अगेन अच्छा लगा, वो भी शायद मेरी एक एक्टिंग की पहली अचीवमेंट। अगर मैं जिंदगी की पहली अचीवमेंट अपने करियर की कहूं, उसके बाद भी फिर मैंने FTII किया, पुणे इंस्टीट्यूट में भी मैंने अच्छे मार्क्स तो मेरे को नहीं मिले पर योगा में डिस्टिंक्शन मिला मुझे, वो मुझे काम आता है आज। पर जब मैं निकला तो मुझे निकलने के बाद में बिना किसी से काम मांगे मुझे मेरे बड़े भाई साहब फिल्म बना रहे थे, ऑलरेडी इंसान बना रहे थे, वेद भाई साहब उनकी भी आत्मा को शांति मिले, वो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उसकी फिल्म के दौरान मुझे पहली फिल्म मिल गई खूनी, वो मेरी पहली अचीवमेंट एज ए करियर की थी बिना मांगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे भाई साहब फिल्म बना रहे थे इसीलिए मुझे फिल्म मिली, क्योंकि वो फिल्म मुझे मिली मेरे डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने मेरा प्ले देखा, जो उस वक्त मैं इंटर कॉलेजिएट प्लेस किया करता था, और उसके ऊपर उन्होंने कहा मुकेश आई विल मेक गॉड फादर विद यू, आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट एज ए करियर। और वो फिल्म हालांकि अभी तक रिलीज प्रॉपरली नहीं हुई, बेदी जी की डेथ हो गई, और उसके बाद मुझे 15 फिल्में मिली, उसके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेस जो मिला वो था महाभारत। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ महाभारत मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरी अचीवमेंट का मुझे अंदाजा उस वक्त हुआ जब एक बहन जी मेरे सामने आके खड़ी हो गई, कहा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा क्या हुआ, बोला नहीं बहुत शुक्रगुजार, मैंने कहा क्या हुआ बताइए तो सही, बोला हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे दूध नहीं पीता था, अभी 3 बार हंस हंस के दूध पीता है, कहता शक्ति मांगने का दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। दैट वॉज माई अनदर काइंड ऑफ अचीवमेंट। मैं टीवी से मैं फिल्मों से मैं यूट्यूब की तरफ मैंने भीष्म इंटरनेशनल चैनल खोला, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये भी मेरी एक अलग से अचीवमेंट। कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर आपकी तो 2 इमेज थी भीष्म और शक्तिमान, ये तीसरी इमेज आ गई है। मैंने कहा कौन सी इमेज आ गई है, बोला मुकेश खन्ना की इमेज आ गई है। लोगों को आपके विचार समझने में मिल रहे हैं, आप लोगों को पहचान रहे कि अरे मुकेश खन्ना ये है, तब तक मुझे बच्चा भी कई बार मुझे कई बच्चों का फैमिली के साथ एक बच्चा मेरे हाथ को बोलता है ए तेरा नाम क्या है, क्योंकि उसको सिर्फ शक्तिमान मालूम था। तो थर्ड इमेज एज मुकेश खन्ना मुझे भीष्म इंटरनेशनल चैनल ने दी है, एंड आई एम हैप्पी कि मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगेन आई वुड से थैंक गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू भगवान।
1: Walk Talk Radio.
2: Walk Talk. सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्रा, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: हाय, मैं हूँ रविंद्र प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ देहरादून नाउ मैगजीन। मैं आज बात कर रहा हूँ वॉक टॉक रेडियो के ऊपर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ करियर एडवाइस के लिए, कि जब हम छोटे थे तो उस समय ये टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, मोबाइल भी ऐसे नहीं थे, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक, ना कुछ नहीं था, केवल आपका याहू और रेडिफ मेल होते थे। आज के यूथ के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने अंदर की बात सुनकर जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर सकता है। हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा, आप दिखावे पे मत जाओ, जो आपको सही लगता है, जो आपकी फैमिली एजुकेट गाइड करती है, जो आपके टीचर आपको गाइड करते हैं, जो आपको स्कूलिंग के बाद समझ में आता है कि मेरे को फ्यूचर में करना क्या है, आप वो डिसीजन लेके सबसे डिस्कस करके करें। ये नहीं कि आप किसी के बहकावे में आकर देखा देखी में जाके आपने ले लिया है। जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया इतनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी आवाज़, अपना एक करियर बना सकते हो, पर आप उस प्लेटफॉर्म पर आप शो क्या करना चाह रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। जो हमारे टाइम पे ना यूट्यूब था, ना कुछ नहीं था, आप फोटो जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, आप अपने शहर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की एक आवाज़ भी बन सकते हो, मोटिवेट, मतलब आप कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो कि लोग लाइक बाहर के कुछ लोगों के आपके शहर के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके स्टेट के बारे में पता चले। तो आप आज के टाइम में जहाँ पे आप रह रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रहे उन लोगों की आवाज़ भी बन सकते हो। लाइक हमारी जनरेशन के टाइम पे हम टोटली फादर के ऊपर और रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, फ्रेंड्स की हम सुनते नहीं थे क्योंकि फ्रेंडशिप उतनी होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी नहीं वहाँ पे। एक स्कूल के वो टेंथ नर्सरी के फ्रेंड होते थे तो उनका भी सेम होता था, वो भी फैमिली के प्रेशर में। पर आज का जो यूथ है उसके ऊपर प्रेशर कम है फैमिली का, क्योंकि फैमिली को आज के टाइम में पता है कि हमारा जो बेटा है बेटी है उसको अपने करियर का डिसीजन खुद ही लेना है, हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते, हम उसको समझा सकते हैं। तो आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा, जो आपको सही लग रहा है, आपको फोकस माइंड आप लेकर आगे चल रहे हो कि मेरे को आगे ये करना है, डिस्कस करके प्रॉपर उसके इफ एंड बट समझें उसके बारे में, तो आप करियर ऐसा चूज करो जिसमें आपको अंदर की पीस भी मिले, ग्रोथ भी मिले और एक नेम भी मिले।
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life. ये है Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।
1: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रख के कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो सुनिए सॉफ्ट स्किल डेवलपर मानिक कौर को सिर्फ और सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, वॉक टॉक
2: रेडियो। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम लोगों को बहुत इजीली इम्प्रेस कर सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी योरसेल्फ। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। आप ये मत सोचिए कि कोई और बहुत सक्सेसफुल है, मुझे उसके जैसे चलना है, उसके जैसे बात करनी है, उसके जैसे पॉइंट ड्रेसअप होना है। बिल्कुल नहीं। हैव योर ओन यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है दैट समथिंग लाइक इंग्लिश, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज बट इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लेट्स फेस इट, ये सच्चाई है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लैंग्वेज ही है। ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हैं, तो प्रोफेशनली आप उसे यूज कम करिए। आप हिंदी बोलिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलिए जो आपके ऑफिस में इजिली एक्सेप्टेबल है, रादर देन मेकिंग इट यू नो लाइक मेकिंग इट टू ऑब्वियस दैट यू आर नॉट गुड विद द लैंग्वेज। उससे आपका नुकसान हो सकता है। आप हिंदी यूज कीजिए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन अगर इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप इन अ प्रोफेशनल सेटअप इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यूजेज इज देयर इन योर प्रोफेशन, आप उन फ्रेजेस को याद करिए और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए। इट्स अ वेरी बिग टिप। वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हूं एक्टर नियो फर्सवान, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं जिस भूमि से हूं, जिस मिट्टी में पला बड़ा हूं, तो यहां का ऋण तो मैं शायद मतलब जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि मुझे बनाने वाले लोग हैं यहां के। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मेरे पहले डेब्यू सॉन्ग को सपोर्ट किया। यहां की म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ने का यही है कि आप क्वालिटी कंटेंट दो, अच्छे गाने बनाओ, म्यूजिक की आपको टेक्निकल नॉलेज, म्यूजिक हो चाहे सिनेमा की, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो होगी। और प्लस देखो एक चीज़ है, आप जो ऑडियंस को दे रहे हो, लगातार दे रहे जा रहे हो, तो ऑडियंस वही सुनती जाएगी, वही सुनती जाएगी। आप बोल रहे हो कि अगर स्लो सॉन्ग्स नहीं चल रहे उत्तराखंड में, डांस नंबर्स चल रहे हैं, इसका कारण भी हम ही आर्टिस्ट हैं। किसी भी ऑडियंस को जो खिलाएंगे या जो जो जो भी चीज़ हम देंगे उनको, उनको हम उसी चीज की आदत डालेंगे। तो यही है कि हमें अच्छा अगर हम कंटेंट देंगे आर्टिस्ट को और लोगों को, तो उनको उसी चीज की आदत पड़ेगी। तो हम स्लो सॉन्ग भी अगर अच्छे कंटेंट बनाएंगे तो लोग वो सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। तो यही है, अपने जो है टेक्निकल चीजों पे काम करना जरूरी है। और सिनेमा, अगर हम सिनेमा में काम कर रहे हैं या म्यूजिक वीडियोज में काम कर रहे हैं या ऑडियो में काम कर रहे हैं, वीडियो में कोई भी, ये सिनेमा की कोई भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई और टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गाने उतने मिलियन व्यूज नहीं गए। चैता की चैतवाली और कई ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे गए हैं। तो ये है कि हमारे जो फोक म्यूजिक और फोक कल्चर में बहुत पावर है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे मुंबई में लोग मेरे फोक म्यूजिक की वजह से जानते हैं। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, आर्टिस्ट से मिलता हूँ, वहाँ के आर्टिस्ट से मिलता हूँ, साउथ के आर्टिस्ट से मिलता हूँ, तो मैं यहाँ के कल्चर के जो मेरे ओरिजिनल म्यूजिक है उसको सुनाता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो सुनना चाहते हैं, वो लोकल जो रीजनल आवाज़ है, रीजनल म्यूजिक है, वो सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे कल्चर और हमारी स्टोरीज, हमारे म्यूजिक में बहुत पावर है, बट उसको सही तरह से दिखाना, उसके साथ जस्टिफिकेशन करना, वो हमारा कर्तव्य है। और हर इंसान अगर अपना कर्तव्य जो है वो अच्छे से निभाएगा, तो वो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो करेगी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ये है वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून

हाय गाइस, मेरा नाम है निकिता वर्मा। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे सुन रहे हो वॉक टॉक रेडियो पे। फैशन इंडस्ट्री अभी काफ़ी ग्रो कर चुका है। जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो बहुत कम फैशन इन्फ्लुएंसर्स थे कंट्री में। मतलब 5 ईयर्स हो गए जब मैंने शुरू करा था, तभी जो भी अभी बहुत फेमस हो चुके हैं बस वही कर रहे थे। बट अभी वी कैन सी लाइक एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर गर्ल, बॉय, दे आर परस्यूइंग बीइंग फैशन इन्फ्लुएंसर। तो फैशन अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कंट्री में, और मॉडर्नाइजेशन आ गया है फैशन इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके के फैशन फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे कोई कैजुअल प्रेफर करता है, कोई स्ट्रीट स्टाइल, कोई क्लासी एंड मिनिमल, तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं। और फैशन क्या है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे शो कर रहे हो। कोई अपनी मूड को शो करता है, कैसे कपड़े पहन रहा है उस दिन। कोई स्पोर्टी फील कर रहा है, कोई किसी का मूड ऑफ है तो उसने उतना एफर्ट नहीं डाला है उस दिन, तो आप किसी को देख के बता सकते हो कि आज वो कैसा फील कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। फैशन इंडस्ट्री यही है कि आप अपने आप को कैसे शो करते हो, और बीइंग फैशनेबल एक आजकल कैरेक्टर है, और आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को शो कर रहे हो। सो बीइंग फैशनेबल। मैं 5th क्लास तक वहीं पे पढ़ी थी बिहार में, और मेरी मम्मा नेपाल से हैं, तो मेरी मासी नेपाल में रहती थी उस टाइम में। तो मेरी मम्मा को लगा कि यहाँ पे थोड़ी वहाँ इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है व्हेन यू आर गोइंग इनटू टीनेज। तो मम्मा ने मुझे नेपाल में भेज दिया था मासी के पास। तो 5th to 10th स्टैंडर्ड में नेपाल में थी, एंड आफ्टर दैट आई मूव टू दिल्ली इन 11th क्लास। तो 11th से आज तक मैं दिल्ली में ही हूँ, लाइक इट्स गोइंग टू बी 8 ईयर्स इन दिल्ली। तो 11th 12th में आई वॉज इन बोर्डिंग। बोर्डिंग में उतना कुछ एक्सपोजर नहीं मिला मुझे, क्योंकि अंदर ही एक दुनिया थी मेरी अलग। तो ये एक्सपोजर मिला कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से, इनफैक्ट थाईलैंड से भी वहाँ पे लोग थे, तो बहुत वो एक्सपोजर था कि अलग अलग जगह के लोग आए थे। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि उस टाइम इंग्लिश पे काम किया। बिहार से आई थी, नेपाल में भी रही थी, बट हाँ इंग्लिश में मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज लैकिंग। तो बोर्डिंग में रह के, और जैसे लोग नॉर्थ ईस्ट से थे, दे स्पीक इंग्लिश मोस्टली, तो उनके साथ इंग्लिश बोलते बोलते मेरी इंग्लिश तभी फ्लुएंट हो गई थी, वो एक्सपोजर मिला। फिर भी लाइफ को हैंडल करने का, या मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ उस 10th के बाद ही, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना है आपको, ये वो। तो एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और मैं पढ़ाई में अच्छी भी थी, तो सबने चूज़ किया मेरे लिए कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। तो मैंने बीटेक कर लिया, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मैं बहुत अच्छी थी, 10th में 10 CGPA, 12th में 87.2% ऐसा, हमेशा मतलब हमेशा एकेडमिक्स में अच्छा ही करा है मैंने बचपन से, फर्स्ट टॉपर, स्कूल टॉपर ऐसा। तो नोबडी थॉट कि अचानक से बीटेक से फैशन एंड एवरीथिंग। तो जब मैं MT गई बीटेक करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला एक फैशन का, और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी उस टाइम अपने बॉडी के ऊपर। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, तो मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और जब मैंने अच्छे से अपने ऊपर काम कर लिया, उसके बाद मेरा फैशन में थोड़ा इंटरेस्ट आया। उससे पहले तो मुझे कुछ भी मतलब नहीं था, पढ़ाई, खाना, पढ़ाई ऐसा तो सोचा नहीं था। जब मैंने अपने ऊपर काम किया, उसके बाद फैशन में इंटरेस्ट लेने लगी, और अपने OOTD की पिक्चर्स में पोस्ट करती थी, आउटफिट ऑफ द डे, कॉलेज जाती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह चेंज करी है, स्कूल, कॉलेजेस, तो उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स काफ़ी हो गए थे। और हाँ, 6,000 जब मेरे फॉलोअर्स थे, तब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया था, बिकॉज तब मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था, बार्टर कोलैब था वो एक, बट दे अप्रोच मी, तो आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस अबाउट, ऐसा क्यूरियोसिटी थी। तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया, उस अपॉर्चुनिटी को। तो वो मेरा फर्स्ट कोलैब था, तो हॉस्टल में मेरे साथ फ्रेंड्स रहती थी, दे यूज़ टू शूट फॉर मी, वो मेरे लिए शूट करती थी तभी। तो कभी फ़ोटो वोटो क्लिक कर दिया, अच्छा अच्छा जब भी पहना, तो वैसे स्टार्ट किया था मैंने फैशन को। फैशन में मेरा इंटरेस्ट था, मेकअप में। जब मैंने अपने ऊपर काम कर लिया था, तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। उससे पहले तो बोर्डिंग में रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, राइट। तो हाँ, जब से मैं कॉलेज में गई, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, OOTD पोस्ट करना शुरू किया, देन
तब मेरे को फैशन में इंटरेस्ट आया, और जब मेरे फॉलोअर्स अच्छे हो गए, ये कोलैब वगैरह मुझे आ रहे थे, तो मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। और उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करी जो इस फील्ड में हैं। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन आ गया, बहुत सारे ब्रांड कोलैब्स आ गई। मतलब पे कम करते थे वो, क्योंकि मार्केट डाउन था ऑफकोर्स, बट हाँ कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई, क्योंकि सारे ब्रांड्स आ चुके थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं कहीं उनको चाहिए होते थे प्रमोशंस। तो और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ भी किया, क्योंकि मेरा कॉलेज रहता था तो मैं कम कॉन्टेंट क्रिएट कर पाती थी। ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएट किया, फिर मोनेटाइज हो गया मेरा पेज, मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग पेड कोलैबोरेशंस। उसके बाद से तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक।

0: एनीबॉडी कैन डांस, ये चीज हम सबने सुनी है। शायद सब डांस भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा और बेहतर तरीके से डांस करना ये कला सब में नहीं होती। दिस इज आर जे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, उनको डांस करने का बहुत शौक था, डांस भी बहुत अच्छा करते थे। स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, डांस कॉम्पिटिशन हो, उनका नाम लिस्ट में होगा ये उनको पता होता था। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि बड़े होके एक दिन वो दोनों साथ मिलके एक डांस स्टूडियो खोलेंगे, पूरी दुनिया को नचाएंगे, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसी सेम स्कूल में डांस सिखाएंगे। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वो दो टैलेंटेड, डायनेमिक और वाइब्रेंट लड़के आज हमारे साथ हैं, हर्षित गुप्ता एंड अभिनव भट्टाचार्य, को फाउंडर्स ऑफ वाइब्रेशंस द डांस स्टूडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉक टॉक रेडियो में।
1: थैंक यू गौतम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।
2: थैंक यू सो मच गौतम।
0: सबसे पहले इस नाम के बारे में बात करते हैं, वाइब्रेशंस, ये नाम रखने के पीछे कोई खास रीजन?
1: सो वाइब्रेशंस आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, यू एज अ पर्सन, आई एज अ पर्सन, अभिनव एज अ पर्सन, वी ऑल हैव डिफरेंट वाइब्रेशंस। ओके, सो वाइब्रेशंस इज समथिंग, यू नो, if you send it in a positive way outside, it'll multiply. If you send it in a negative way outside, it'll multiply. So when we were coming back to Dehradun, humne yahi socha tha ki yaar, we've been working on our art since so long and we always wanted to give it back to the city. To hum apni positivity lekar jab hum shahar ke andar jayenge, to usi vibrations ko we would want to spread in the entire city. In fact, अभी तो हम तब हम सिटी की बात कर रहे थे, अब तो हम काफी जगह काम करते हैं, तो वी आर स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर। सो और ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस एकदम से आया, इसकी स्टोरी अभिनव भी आपसे शेयर करेगा, बिकॉज वाइब्रेशंस नाम रखने में ना हमें नहीं पता था कि हम इस चीज को इतना आगे लेके जाएंगे। वी हैड अ थॉट कि हाँ ठीक है, हम हमारी पॉजिटिविटी और हमारी ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स आवर आर्ट विल टेक अस समवेयर, बट नाउ दैट इट्स ग्रोइंग सो वेल, we are very happy that we, you know, we got stuck to this name called Vibrations.
2: Yes, actually, it took quite a lot of time. जब हमने Vibrations सोचा नाम, हम लोग, I think around 1 week we were just talking on phone or if we were meeting. So हम लोग बस पूछ सोच रहे थे, अच्छा हर्षित तू भी सोच, he's like giving so many options, मैं भी सोच रहा हूँ. So after I think 2-3 days we both were like, यार vibrant कैसे रहेगा? यार vibrant में भी वो बात नहीं आ रही है. So vibrant से कर करके हम लोग vibrations में आए कि let's give positive vibrations to everyone. Let's take this dancing vibration कह लो या positive vibrations. Let's take this to our city. So इस तरीके से हम लोग और आज तक हम positive vibrations दे रहे हैं through our art, through our dance, through our words, through our positivity.
0: काफी यूनिक नाम आपने रखा है, मतलब सुनने को मिलता नहीं है ये नाम आसानी से कि कोई अपनी डांसिंग एकेडमी का नाम वाइब्रेशंस रखे।
3: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ
1: हेलो हाय नमस्कार आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो मेरे यानी किरण के साथ में। तो जब स्वरोजगार की बात होती है तो महिलाएं तो आजकल कहीं भी पीछे नहीं है। तो आज एक बार फिर मेरे साथ एक महिला एंटरप्रेन्योर है जो ना सिर्फ स्वरोजगार को उन्होंने अपनी जिंदगी से जोड़ा बल्कि दूसरों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करती हूँ मैं शशि बहुगुणा रतूड़ी का जो की फाउंडर है नमक वाली की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: धन्यवाद आपका।
1: कैसा लग रहा है आज आपको रेडियो पर आके?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो सबसे पहले स्वरोजगार की जब बात करते हैं तो नमक वाली का जो ब्रांड नेम है उत्तराखंड में उससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर उत्तराखंड में है तो पिसा हुआ नमक हो, चाहे रोटाने हो और चाहे अरसे हो, ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे बचपन को हमें याद दिलाती
2: हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो नमक वाली की कहानी कहाँ से शुरू हुई?
2: नमक वाली की जो कहानी है वो अभी हमारे 2018 से मैं एक वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन करती हूँ। तो उसी दौरान उसी सब चीजों की जो एक मेरा उत्तराखंड का जो फोक लोकगीत है उनकी मैं 8-10 महिलाओं के साथ मैं प्रैक्टिस करती थी रोज।
1: अच्छा।
2: और आज भी करती हूँ। तो उनमें से जैसे रेखा कुठारी है, सुशीला सेमवाल है, परमिला पांडे है, जो मेरे पूरी जो मेरी संस्था है जो मैं मतलब 1982 से काम कर रही थी तो मेरी बालवाड़ी शिक्षिकाएं थी। तो वही जो है नमक पीस करके लाती थी और मैं भी अपने सिलबट्टे पे बनाती थी।
1: अच्छा।
2: तो एक दूसरे को सब लोग टेस्ट कराते थे।
1: अच्छा।
2: तो उनमें से जो है रेखा कुठारी जब अपना ये सिलबट्टे का पिशू लोड लेके आई तो मैंने उसको जो है जैसे मतलब और भी कुछ महिलाएं थी तो उन्होंने क्या किया कि कल हमारे लिए लेके आना, कल हमारे लिए लेके आना। तो मैंने बोला ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी कि हमारे लिए लेके आना है और ये सिलबट्टे पे इतनी मेहनत होती है और आज की जो बात कहें हम तो सारा हर घर में सिलबट्टा एक कोने में पड़ा हुआ है। सब लोग जो है आपके मिक्सी में चटनी बनाते हैं, मिक्सी में हर काम मिक्सी में होता है। तो मैंने उसको एक जैसे उसने नमक दिया तो मैंने उसको सब लोगों के सामने 100 रुपए दे दिया।
1: अच्छा।
2: कि आपका पारितोषिक है। और पारितोषिक है उसी दिन से मेरे मन में आया कि हमारा जो सिलबट्टा है वो सिलबट्टा एक कोने में बैठ करके रो रहा है कि मेरी कोई सम्मान ही नहीं हो रहा है। मैं इस सिलबट्टे से हमारे पूरे घर परिवारों में नमक पिसा जाता था, चटनी पिसी जाती थी और सब्जी नहीं थी तो चटनी रोटी लोग खाते थे, नमक रोटी खाते थे। वो सब समाप्त हो गया धीरे धीरे और हमारी पुरानी जो हमारी दादी नानी ये सब बनाती थी, माँ बनाती थी, वो खत्म हो चुका है। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि इसको जो है नमक को हम एक छोटी सी पुड़िया बना करके ऐसे करके जैसे वो कैसे पेपर बोलेंगे उसको, खाकी रंग का पेपर होता है जो
1: जी, जी,
2: उस
1: जी।
2: पेपर में उसको बना करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमने उसको डाल दिया। तो अब लोगों ने ऑर्डर किया उसका। अब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जैसे लोगों को अच्छा लगे तो पूरे देश भर के लोगों ने वो छोटा सा पैकेट ही लेने शुरू कर दिया।
1: अच्छा।
2: तो पैकेट लेने शुरू किए तो हमने एक महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ से बढ़ाया।
1: दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में, सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk
1: Radio. Walk Talk. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. आज के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट है नमक वाली शशि बहुगुणा रतूड़ी जी.
2: ऐसा नहीं है कि हम कहीं से देख करके कुछ भी चीज करते हैं. हमारे जो अंदर से निकलता रहता है उसी पर हम काम करते रहते हैं
3: जी.
2: तो वो हमने एक शुरू कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से शुरू किया, तो उसके बाद तो इंडिया
3: आगे
2: ने
3: बढ़ता
2: गया. बैटरी इंडिया ने स्टोरी छाप दी और बहुत सारे उस जब बैटरी इंडिया ने स्टोरी छापी तो 300-400 कॉल एक दिन में आने लग गई.
3: अच्छा.
2: हाँ,
3: ऑर्डर्स की
2: पहले पूछने के लिए, फिर ऑर्डर भी हुए.
3: अच्छा.
2: लेकिन उनमें से कितने कॉल हम उठा पाते ये भी था. फिर धीरे धीरे धीरे करके आज वो जो है इतना अच्छा स्वरोजगार बना है कि उसको देख करके हमारे उत्तराखंड के कम से कम 20-25 लोगों ने नमक वाली शुरू किया है, नमक बनाना शुरू किया है. अब वो आगे कितना पहुंचा रहे वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन शुरू किया है. तो अगर माना हम कोई अच्छी पहल अच्छा काम करते हैं, और काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है ना. सबसे मेन बात है कि जो महिलाएं स्वरोजगार पर काम कर रही हैं वो पार्ट टाइम कर रही हैं, है ना. एक दो महिलाएं ऐसी होंगी जो परमानेंट काम करती हैं, लेकिन बाकी तो पार्ट टाइम काम कर रही हैं. अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर का खाना भी बना रही हैं, अपने घर की पूरी व्यवस्थाएं बना रही हैं. उसके बाद अपना समय निकाल करके एक दो घंटे नमक सिलबट्टे पे बनाती है. तो उनको एक बहुत अच्छा रोजगार मिला.
3: अच्छा.
2: हमने नमक वाली ब्रांड तभी बनाया कि हमने वो पिशियों लूण के हिसाब से जा रहा था. तो यही नहीं कि खाली हमारा नमक वाली है तो नमक जा रहा है, उसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं.
3: हाँ.
2: पड़ी हुई है, तो हमने उसका ब्रांड ही नमक वाली बना दिया और आज पूरे देश में जा रहा है. आगे जा करके हो सकता है बाहर भी जाए. हम उसका लाइसेंस मतलब धीरे धीरे बाहर भी जाएगा.
3: हाँ.
2: इनडायरेक्ट जब कोई जाता है बाहर तो वो लेके चला जाता
3: लेके जाता है. और ऐसे ही मार्केटिंग होती है चीज की.
2: हाँ.
3: जब एक खाता है दूसरा खाता है
2: जी.
3: और शुरुआत भी देखो नमक वाली की ऐसी भी.
2: हाँ.
3: कि एक अपने घर से पिसा हुआ लून लेके आया, दूसरा लेके आया और सोचा.
2: हाँ.
3: वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ.
2: आइडिया और जैसे घर में हम लोग भी खाते थे तो मतलब वो अपने आप ही जो है एक निकला कि इसको बाहर निकाला जाए, है ना. तो उसकी एक सिलबट्टे की एक बहुत बड़ी पहचान बनी. हमारा एक नमक वाली ब्रांड है, लेकिन उसमें हमारे पहाड़ी मसाला है, पहाड़ी हल्दी है, हमारी ऑर्गेनिक दालें हैं, हमारे जो है जो भंगजीरा होता है उसकी चटनी है, ड्राई अलसी है उसकी चटनी है, बद्री गाय का घी है, शहद है. तो उस माध्यम से हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं और जो हमारे फार्मर हैं उनको भी एक स्वरोजगार मिल रहा है.
3: बहुत सारी चीजें हैं वो मैंने सारी देखी है. और हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम में अपने जितने भी सुनने वाले हमारे लिसनर्स हैं उन सबको भी जरूर बताएंगे कि नमक वाली सिर्फ पिसा हुआ जो है नमक या लून नहीं देती है, वो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स. हाँ. भी देती है.
1: तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के इस प्रोग्राम में अभी के लिए रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए. आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर.

0: कभी बलून एक्सरसाइज की है? डंबल वाली की होगी, रोप वाली भी की होगी, लेकिन बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है? ये मैं बताऊंगा। मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर हम कहानियां सुनाते हैं और जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। आप ही कीजिए जिंदगी बदलने की कोशिश। बलून एक्सरसाइज ये क्या होती है, इसके पीछे भी एक कहानी है और ये कहानी आपको आपकी खुशियों तक ले जाएगी। हाँ, यही मेरा वादा है। हर कोई अपनी जिंदगी में ना खुशी चाहता है, ढूंढना चाहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से उसे कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, ये सब कैसे होंगे, कैसे वो इन सब डील करेगा। उसे सिर्फ एक सच्ची खुशी ढूंढनी है और ये हर एक के दिल का एक गोल है ना। लेकिन सवाल है कि ये खुशी मिलेगी कैसे? हाउ आर वी सपोज टू इवन बिगिन लुकिंग फॉर इट? इसी के चलते लोग हैं ना, एक ग्रुप 30-40 लोगों का जो एक ग्रुप था, उसे एक कमरे में सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाया गया। ये सेमिनार था अबाउट लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड लर्न टू फाइंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। उनको अलग अलग स्किल सिखाए गए, लेसन पढ़ाए गए लाइफ के बारे में। सडनली स्पीकर खड़ा हुआ, अपनी बात कहते कहते रुका और उसने हर एक शख्स जो वहां बैठा था उसको एक बलून दिया। कहा कि इस बलून पर एक पेन से अपना नाम लिख दो। सबने अपना नाम लिख दिया। सारे बलून कलेक्ट किए गए और उसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया गया, वो सारे बलून। अब जितने भी डेलीगेट्स बैठे थे, इनका वो कोर्स कंप्लीट हुआ। इनको बोला गया कि अब एक छोटी सी एक्सरसाइज ये करनी है कि आपको दूसरे रूम में जाना है और अपना बलून ढूंढ के लेकर आना है 5 मिनट में। सब लोग रूम में गए, सारे बलून जो थे वो रूम के बीच में रखे हुए थे, कौन सा किसका है किसी को नहीं पता था। तो सब लोग बस पागलों की तरह अपना बलून ढूंढने, अपना नाम जो था वो ढूंढने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। चारों तरफ कियोस हो गया, कोई भी अपने बलून तक नहीं पहुंच पाया। गिवन टाइम 5 मिनट में सब लोग अभी तक तो ये समझते रह गए कि उन्होंने किस पर लिखा था, कलर कौन सा था, ये वाला मेरा है क्या, ये वाला तेरा है क्या। फिर वो अपने कमरे में वापस आए लेकिन खाली हाथ। फिर जो स्पीकर था उसने कहा कि आप में से किसी को बलून नहीं मिला। अजी ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए इस बार तरीका बदलते हैं। अब एक काम कीजिए, उस कमरे में जाइए, कोई भी एक बलून लाइए, इस कमरे में आइए, इस कमरे में पूछिए कि ये बलून किसका है और उसको वो बलून दे दीजिए। सबको लगा कि ये शायद ज्यादा सिंपल है। वो गए, बलून उठाया, जिसका भी नाम था उसका नाम लिया, जिसका नाम आया उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसको बलून दे दिया। 5 मिनट में सबको अपने अपने बलून मिल गया और सब एक स्ट्रेट लाइन में आकर खड़े हो गए। फिर उस स्पीकर ने कहा, यू नो व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग इन आवर लाइव्स। एवरीवन इज फ्रेनेटिकली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑल अराउंड, नॉट नोइंग वेयर इट इज। लेकिन हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियां, इट लाइज इन द हैंड और इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। आप उन्हें खुशियां दीजिए, यू विल गेट योर ओन हैप्पीनेस। आप उन्हें उनका बलून दीजिए, आपको आपका बलून मिल जाएगा। आप उन्हें खुशियां देंगे, आपको खुशी मिल जाएगी। हमारी खुशियों की चाबी दूसरों को खुश करके ही मिलती है। जब हमारी फैमिली खुश होती है, दोस्त खुश होते हैं, बॉसेस खुश होते हैं, तभी तो हम खुश होते हैं। तो हमारी जो खुशी है दूसरों की खुशी पर डिपेंडेंट है। हैप्पीनेस इज लाइक अ किस, यू मस्ट शेयर इट टू एंजॉय इट। ये बर्नार्ड मेल्जर ने कहा था। Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it. चलिए फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर। मैं हूँ कहानी वाला रजत, आप सुन रहे हैं Walk Talk Radio. Tune in for a better life.
1: ये है Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Tune in for a better life. Tune in.

0: This is Bookipedia, only on Walk Talk Radio.
1: Bookipedia में जो बुक आज मैं ले रहा हूँ उसका नाम है The Four Agreements और राइटर हैं डॉन मिगुएल रुइस। राइटर इस बुक में कहते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को बचपन से ही उसके माता पिता, उसके टीचर्स, उसके भाई बहन, उसके यार दोस्त या बुक्स से और टीवी से या मैगजीन्स के थ्रू वो जो भी इम्प्रेशंस लेता है, यानी कि जो कुछ भी उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको पूरी तरह से मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। यानी उसे एक तरह से उन सब बातों के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है और उस एग्रीमेंट को करने की वजह से उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से कई बार करप्ट हो जाते हैं, जिनको वो एडल्ट होने के बाद भी, यानी बड़ा होने के बाद भी पूरी तरह से जीता रहता है, क्योंकि उसके माइंड की टेप में वो ही रिकॉर्डिंग्स करी गई हैं। तो राइटर कहते हैं कि कई बार इन सारे निगेटिव प्रोग्रामिंग्स की वजह से हम लोग एक तरह के हेल में जीना शुरू कर देते हैं। इन्होंने हमको इस बुक के अंदर चार ऐसे एग्रीमेंट्स बताए हैं कि अगर हम उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम उस हेल से निकलकर हेवन की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इन्हीं परिस्थितियों में हमारी जिंदगी स्वर्ग की भांति हो सकती है। इनका फर्स्ट एग्रीमेंट है बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड। इसका मतलब है कि आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, यानी हर वो शब्द जो आप किसी और से कहते हैं या वो शब्द जो अपने मन के अंदर आप अपने आप से कहते हैं किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर, अगर वो शब्द जो आप अंदर से चाहते हैं, महसूस करते हैं और जिस तरफ जाना चाहते हैं उसके साथ हारमनी में नहीं है, यानी उससे अपोजिट है, तो वो इम्पैकेबल नहीं है। इम्पैकेबल का एग्जैक्ट अर्थ है विदाउट सिन, यानी पाप रहित। लेकिन पाप रहित हमारे लिए क्या हो सकता है? पाप रहित इनके हिसाब से वो चीज है जो भी आपको अपने लक्ष्य से दूर लेकर जाता है, यानी जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इम्पैकेबल नहीं है। तो आपको अपने शब्दों के चयन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये एक मैजिक स्पेल की तरह से हैं। इनका कहना है कि आप एक तरह से किसी आदमी के बारे में निगेटिव अगर बोलते हैं तो आप एक तरह से एक निगेटिव स्पेल दे रहे हैं उसको, यानी आप उसके ऊपर एक काला जादू कर देते हैं। तो अपने शब्दों के चयन में हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है तो हम इस पहले एग्रीमेंट को पूरी तरह से समझ पाएंगे। सेकेंड एग्रीमेंट जो इन्होंने बताया है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी बात हमको लगती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम में से कोई भी आदमी चीजों को पर्सनल लेने में एक एक्सपर्ट है। आप एक कल्पना करके देखें, कोई एक इंसान जो सुबह उठता है उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, उसके उस दिन लॉटरी लग जाती है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात हो जाती है, बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, तो वो बहुत खुश है। शाम को अगर वो आपके साथ बात करेगा तो आप सोच सकते हैं वो आपको किस तरह से ट्रीट करने वाला है। लेकिन हम एक दूसरा सीनेरियो देखते हैं कि अगर वही आदमी सुबह उठते ही उसको पता चलता है कि उसकी नौकरी छूट गई है, उसका एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे डिच कर देती है, तो वो किस तरह की मनोदशा में होगा और वो आपको किस तरह से ट्रीट करेगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दोनों ही परिस्थितियों में आप सेम है, आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस स्थान उस इंसान के साथ क्या चल रहा है ये बात आप बहुत भली बात ही समझ चुके हैं। तो इनका जो सेकंड एग्रीमेंट है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इनका तीसरा एग्रीमेंट है डोंट मेक अज्यूम्पशंस। जी हाँ, ये कहते हैं कि आपको कुछ भी मान ही नहीं लेना चाहिए अपने मन में किसी भी चीज के बारे में। आपको अगर अज्यूम्पशन से बाहर आना है तो आपको क्वेश्चन पूछने की कला आनी चाहिए और आपको बहुत बोल्ड होना चाहिए इस मामले में कि आप तब तक क्वेश्चन पूछें दूसरे आदमी से जब तक कोई भी गुंजाइश ना रह जाए कि आपको कुछ भी अज्यूम करना पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस ऐसी आती हैं, मैं देखता हूं कि उसमें 90% प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो आपस में एज्यूम करके चलते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो हमें प्यार नहीं करता या वो हमारे खिलाफ हर समय सोचता रहता है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज्यूम्पशंस होती हैं। तो आप सोचिए, हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे समय होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं जब एक छोटी सी घटना घटती है और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिवली उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम उसको इतना इनलार्ज कर देते हैं एज्यूम कर करके कि हम खुद ही उसके बोझ के तले दब जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कुछ भी एज्यूम करने से पहले इस थर्ड एग्रीमेंट को समझ लेना है, याद कर लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। इनका जो फोर्थ एग्रीमेंट है वो बहुत ही कमाल का एग्रीमेंट है। ये कहते हैं ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल शब्दों में इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। जो शुरू के तीन एग्रीमेंट्स हैं, यानी बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक अज्यूम्पशंस, ये तभी काम करते हैं जब आप ये फोर्थ एग्रीमेंट को, यानी ऑलवेज डू योर बेस्ट को, आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, मैंने एक बार एक कोटेशन पढ़ी थी, टॉम पीटर्स की कोटेशन थी। वो कहते हैं कि एक्सीलेंस इज द नेक्स्ट 5 मिनट्स, फॉरगेट द लॉन्ग टर्म, मेक द नेक्स्ट 5 मिनट्स रॉक। इस कोटेशन ने मेरे को पूरी तरह से हिला दिया था, क्योंकि ये कहते हैं कि आपको लंबा नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी लाइफ में इस पल से आने वाले 5 मिनट को आपने एक्सीलेंट बनाना है और आपकी पूरी लाइफ एक्सीलेंट हो जाएगी। ये कोटेशन पूरी तरह से इनके फोर्थ एग्रीमेंट को कंप्लीट करती हुई दिखती है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब बुकीपीडिया में द फोर एग्रीमेंट्स। हम कोशिश करते हैं कि बुकीपीडिया के अंदर हम बहुत कम समय में आपको किसी भी एक किताब के कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसे लेसन्स दें जिनको अपनी लाइफ में इमीडिएट उतार कर आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकें। आप सुन रहे हैं बुकीपीडिया वॉक टॉक रेडियो पे, मैं गिरेंद्र भारती, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
0: कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं, ऐसी ही किताबों के बारे में सुनिए बुकीपीडिया में, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।
2: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।

ये है इंडिया का पहला मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। मेरा नाम है मैंडी और देखिए खुशियों के बाद एक अलग सी जो एनर्जी हमारे सबके अंदर आई है वो बहुत ही कमाल की है, बड़ी बेमिसाल है। तो इसी के साथ अनसुने किसे शो की हो चुकी शुरुआत। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से आपके अंदर इतनी गहराई, इतनी पॉजिटिव वाइब्स भर दी जाए कि जिंदगी में कुछ भी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आपके मेरे आसपास हो, आपको भी घबराए ना, वो ज़रूरी भी है। और बस यही वॉक टॉक रेडियो का एक मकसद है। और उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता हमें पसंद करते हैं अपना फीडबैक ज़रूर देते होंगे। चलिए ज़रा सी देर में शो की शुरुआत करते हैं।

चीज का काट रही है। और वो मुझे तब पता चला जब मैंने आगे जाकर एक भैया से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। एंड सच बताऊं, ये मास्क पहनना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मतलब आए दिन लोग ऐसे ही घूम रहे, कोरोना को इतना लाइटली ले चुके हैं कि क्या ही बोला जाए। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना सैनिटाइजर का यूज कर रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग तक का तो दूर दूर तक पालन नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या ही बोले, कभी आप मार्केट की साइड निकल जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो फ्री फंड में एक और एडवाइस मैं आप सभी को देना चाह रही हूँ कि आप जहां भी जा रहे हैं मास्क पहनकर जाएं, सैनिटाइजर का रेगुलरली उपयोग करें, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का तो भाई पालन कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना भैया है ना, ये वापस दस्तक दे चुके हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि वापस से आप सभी के सब घर पर बैठ जाएं, तो प्लीज ये सारी गाइडलाइंस का ढंग से पालन कर लीजिए। तो फिलहाल मूड को बनाते हैं थोड़ा सा लाइट, लीजिए सुनिए अमेजिंग सा ट्रैक, और बने रहिए मेरे यानी दून की नौनी आरजे शिवांगी के साथ ऑन शो सिटी टॉक्स पर, ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है मेरा शो सफरनामा। सफरनामा जहां पर हम कुछ ऐसे शहरों से आपको मिलवाते हैं जिनके इतिहास, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी बनावट और बसावट जान के आपको ऐसा लगेगा कि बस एक बार इस शहर तो जरूर जाना है। तो सफरनामा हमारा पहुँच गया है एक ऐसे शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर ऐसे हैं जिन्हें इटर्नल सिटी कहा जाता है, यानी सनातन शहर। हमारे हिंदुस्तान की काशी नगरी या बनारस भी ऐसा ही एक शहर है। इसी तरह से यूरोप के रोम और एथेंस शहरों को इटर्नल सिटी का दर्जा दिया गया है। सनातन शहर या इटर्नल सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो हजारों सालों से आबाद है। यहाँ पर लोगों के रहने के जो प्रमाण या सबूत है वो कई बरसों से मिलते हैं, मतलब कई हजारों सालों से। ग्रीस या यूनान की राजधानी एथेंस में भी हजारों साल पहले से इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज हम उसी एथेंस की बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो एथेंस का कोई सानी नहीं। यहाँ के हर खंडर में इतिहास छुपा है, न सिर्फ यूनान का बल्कि पूरे यूरोप।

0: का और मानवता हर एक का एक शुरुआती इतिहास नजर आता है। एथेंस की हर गली से जुड़े हैं हजारों किस्से, हजारों दास्तानें। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र यानी कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है, पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी दी। एथेंस की इमारतें और खंडहर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद मानी जाती है। एथेंस के खंडहरों में ही आबाद है यूनान की बहुत पुरानी परंपरा। ग्रीक जबान में इसे फिलोजीनिया कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है अजनबियों से मोहब्बत, फिलोजीनिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे अब विदेशियों के प्रति गर्म जोशी मानते हैं, यानी उनका एक अच्छे खुले मन से स्वागत करना। आपको एथेंस पहुंचते ही गजब की गर्म जोशी और अपनेपन का एहसास होगा। एथेंस हाथ फैलाकर खुले दिल से हर आने जाने वाले का सम्मान और स्वागत करता है। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली जूलिया विलियम्स ने एक जगह इंटरव्यू में लिखा है कि एथेंस बहुत दोस्ताना शहर है। एथेंस के शानदार इतिहास को निहारने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 45 लाख लोग यहाँ आते हैं, लेकिन एथेंस ने अपने शानदार इतिहास में आधुनिकता के पन्ने भी जोड़ रखे हैं। आखिर क्यों लोग एथेंस को इतना पसंद करते हैं? तो एथेंस की रहने वाली क्रिसि मेनका कहती है कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसि को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना पसंद है। क्रिसि कहती है कि आसपास सैलानियों की भीड़ यानी टूरिस्ट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले। गर्मी का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत खुशगवार होता है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ सूरज खिला हुआ देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एग्नोस कहती हैं कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है, इसी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना एग्नोस लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती है, जो एथेंस के पास में है, और लोग वहाँ उस आइलैंड पर जाना चाहें तो बेशक जाएं। ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी करते नजर आते हैं। ये द्वीप जो है ये बड़ा शांत है और आराम तलबी के लिए मशहूर है। यू जस्ट गो एंड रिलैक्स देयर, कुछ नहीं, कोई गाड़ी का आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से डर है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमिटस एथेंस से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आखिर एथेंस में रहना हो तो एक ऐसा तजुर्बा होता है। मीना कहती हैं कि एथेंस जैसे पुराने शहर में रहने पर आपको इतिहास से मोहब्बत हो जाती है। हर गली, हर चौराहे पर आपको इतिहास का एक टुकड़ा निहारना अच्छा लगता है। शहर के मशहूर खंडर जैसे कि एक्रोपोलिस या टेंपल ऑफ ज्यूस तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। इनके अलावा एथेंस में नए इलाके भी आबाद हुए, जैसे कि काउकाकी नाम की बस्ती, जो दुनिया की सबसे कूल नई बस्ती का दर्जा हासिल कर चुकी। हाल ही में एथेंस में आधुनिक कला का एक म्यूजियम भी खोला गया है। कुछ लोग एक्सार्किया नाम के इलाके को देखने जाने की सलाह देते हैं। ये इलाका ऐतिहासिक भी है और ग्रीस की हालिया सियासी उठापटक का गवाह भी। बाहर से आने वाले लोग यूं तो ऐतिहासिक ठिकानों और म्यूजियम के चक्कर ही लगाते रहते हैं, मगर एथेंस की गलियों में भी बहुत दिलचस्प राज छिपे हुए हैं। लंदन से आकर एथेंस में बसने वाली बसी कैलेटिन आल्प कहती हैं कि एथेंस के पास अंगूरों के भी कई बाग हैं। इनमें से कई जगह बहुत उम्दा वाइन तैयार की जाती है। यू नो दैट ग्रीस में पिछले काफी दिनों से सियासी और आर्थिक उठापटक चल रही। पिछले दशक में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर यहीं देखने को मिला था, इसलिए इन देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। लोगों को उनके काम के एवज में ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीस के लोग अपने मौजूदा निजाम से यानी सरकार से और जो उन्हें चला रहे हैं उन लोगों से खुश नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एथेंस बहुत सस्ता शहर है। लंदन के मुकाबले यहाँ उसके आधे पैसे के खर्च में आपका काम चल जाता है। यहाँ घूमते हुए अगर आपको ग्रीक जबान नहीं भी आती तो काम चल जाएगा। बहुत से लोग यूनानी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर गर्म जोशी बढ़ानी होगी यानी सबसे बातचीत करते रहना, तो थोड़ी बहुत ग्रीक बोलने में हाथ आजमाइए ताकि बातचीत होती रहे। लोग विदेशियों के मुंह से अपनी भाषा सुनकर यहाँ बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि वो आपको शहर के कुछ ऐसे राज बता दें जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं और किसी को जानने को नहीं मिलता। तो आज का जो मेरा सफरनामा था ये एथेंस के नाम था, एक ऐसा शहर जिसे अजनबियों से मोहब्बत है। कमाल का शहर है, देखने जरूर जाइए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं वॉक टॉक पर, वॉक टॉक रेडियो पर। मैं हूँ कहानी वाला बजट, ये है मेरा शो सफरनामा।
1: वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।

हो सकता है हमने ये बातें सुनी हो, हो सकता है कई एक बार कही भी होंगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये बात भी कही है कि करना चाहिए तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाय, मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। बट सोच करके देखिए, मतलब कितनी अलग हैं ये बातें कि एक तरफ तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट करने वालों ने तो अकेले बहुत कुछ किया है, अपने दम पर बहुत कुछ किया है। वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, करने वाले कर लेते हैं। बट हां, जो काम टीम वर्क का है उसे टीम वर्क के साथ में किया जा सकता है। मैं अगर जो कोशिश करूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो शायद मुझे लंबा टाइम लगे, लंबा वक्त लगे, शायद वो क्वालिटी मैं ना दे पाऊं। बट ऐसा नहीं कि मैं बना नहीं सकता। मांझी जैसे इंसान ने पहाड़ अकेले ही काटा था, लेकिन वहीं पर अगर जो मांझी का सपोर्ट गांव वाले करते, आसपास वाले करते, तो यकीनन वो कम टाइम लगता और ज्यादा बेहतर काम हो सकता था। तो जो काम टीम के साथ में होता है उसमें क्वालिटी होती है। वापस लौट करके आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट ये था कि अकेला चना क्या कर सकता है या अकेले के से क्या हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गांव में काफी लंबे टाइम तक बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब एकदम अकाल वाली सिचुएशन होने वाली थी। उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंड फाइनली उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे, वो सब गांव वाले मिलकर के उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आप कुछ दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अब तो हमारे घर पे बच्चे प्यासे मरने लगे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे पास में आना और मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये मान लेना आप। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं कल तुमको बताता हूं। गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन उन्हीं महात्मा के पास में गांव वाले वापस लौट करके आए। महात्मा ने कहा कि कल रात में मैंने सपना देखा है और सपने में भगवान आए हैं। भगवान ने यह कहा है कि गांव से बाहर का जो कुआं है उसमें सारे गांव वाले एक एक लोटा दूध अगर जो डालेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं बारिश करा दूंगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों में से सब लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे और उस कुएं में डाल करके रात में आ जाएंगे। उनमें से एक गांव वाले ने सोचा कि मैं एक लोटा दूध क्यों बर्बाद करूं, मतलब बाकी के सारे लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, दूध में पानी जाके मिलता है तो पानी भी तो दूध ही कहता है। तो उसने ये सोचा और वो एक लोटा पानी भर के लेके गया और कुएं में डाल दिया और चला आया। अगले दिन सुबह महात्मा के साथ में सारे गांव वाले जब कुएं के पास में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वहां पर एक सिंगल लोटा दूध का नहीं पड़ा हुआ था, पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। यानी कि पूरे गांव में किसी एक सिंगल इंसान ने दूध से भरा हुआ लोटा नहीं डाला था उस कुएं में। सबने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डालने वाले हैं, मेरे अकेले के से क्या हो जाएगा, तो मैं पानी डाल देता हूं। सोचिए, इसी तरह की गलतियां हम अक्सर हमारी रियल लाइफ में करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ ना करने से क्या होगा, या मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं अकेले अगर जो कचरा नहीं फेंकूंगा तो क्या होगा, मैं अकेले अगर जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा तो क्या होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये अकेले अकेले अकेले अकेले ऐसे मिलकर के कब जमाना हो जाता है, कब टीम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आए तो वो बदलाव हमें हमारे से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये एकदम से अमेरिका जैसा हो जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, ट्रैफिक ना मिले, सड़कें चौड़ी हो, कहीं पर भी कचरा ना मिले, धूल मिट्टी ना मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में हम कदम उठाते हैं? कार का शीशा डाउन करके अक्सर हम पैकेट यूं ही फेंक देते हैं, कार का गेट खोल करके पिचक मुंह के अंदर का जो गुटखा था वो हम यूं ही सड़क पर थूक देते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका जैसे बन जाएं। कोसते हैं हम सरकार को, सरकार के बस का ये नहीं है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, बट क्या हम हमारे हिस्से का करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर कि बाहर के जो देश हैं, जो साफ हैं, वहां पर सरकार से ज्यादा एफर्ट्स लोग डालते हैं। बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी, आई डोंट नो कितनी सच है, बट उन दिनों किताबों में आया करता था कि जापान में जो लोग हैं वो अपने बैग में सुई धागा लेके चलते हैं। अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर किसी भी बस का सीट फटा हुआ है तो वो लोग उस सुई धागे की मदद से उस सीट को सिल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके पैसे से खरीदी हुई बस है जिसका इस्तेमाल उनको ही करना है।
और हमारे यहां क्या होता है, हमें हमारा विरोध जताना है, एक काम करो ट्रेन जला दो, पटरियां उखाड़ दो, हॉस्पिटल्स जला दो, बस जला दो, हम ये करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? सिंपल सी बात कहने की इस पूरे एपिसोड में यही थी कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अकेला चना भी भार फोड़ सकता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कभी भी किसी भी थॉट पर यह मत सोचिए कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि आप ही के जैसे ना जाने कितने लोग सिर्फ यही सोच के कुछ नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। आप करना शुरू करिए, जमाना करना शुरू कर देगा। मैं हूं समर शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

ये है वॉक टॉक रेडियो. वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ. टॉक रेडियो. टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ऐसा लड़का देख कर ना मन करता है बस एक बार मिल जाए ये. सो वैसे मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है नहीं, लेकिन मुझे इनके बारे में पढ़ना बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे चैंपियन की कहानी आपको बताई जाए जिसे सुनकर आपको भी मजा आए. आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ, और मैं हूं अनसंग चैंपियंस के साथ मुस्कान आपके साथ. खेलों की बात हम जब करते हैं तब सबसे पहले हम उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पुलेला गोपीचंद के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 16 नवंबर को और प्रकाशम जिले में, जिसका नाम प्रकाशम था लेकिन पुलेला गोपीचंद ने वहां पर असली में प्रकाश फैला दिया था. उन्होंने एक्चुअली सिर्फ प्रकाशम में ही नहीं पूरा वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया था. 1991 में जब उन्होंने खेलना शुरू किया इंडिया के लिए, तब सबसे पहले मलेशिया के लिए वो खेलने गए थे, मलेशिया के खिलाफ एक्चुअली. उसके बाद तीन बार 1998 और 2000 में थॉमस कप में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया. अनेकों बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था उन्होंने. टूर्नामेंट में विजय हासिल कर भारत को गौरवान्वित तो महसूस कराया ही, उसके अलावा 1996 में विजयवाड़ा में सार्क टूर्नामेंट में और 1997 में कोलंबो में गोल्ड मेडल लेकर आए थे वो. कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत कड़े मुकाबलों के बीच भी रजत और कांस्य पदक जीते थे उन्होंने. 1997 में दिल्ली में ग्रैंड पिक्स मुकाबलों में उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी और सबसे अच्छे खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था उन्होंने. आपको पता है कि फाइनल में वो हार गए थे, पर खेल में यही तो मजा है, कभी हार तो कभी जीत. 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में बैडमिंटन के लिए अकेले इंडियन प्लेयर थे पुलेला गोपीचंद. आपको पता है प्रकाश पादुकोणे के रिटायर होने के बाद इंडिया में कोई बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था. जब पुलेला गोपीचंद सामने आए तब सबको इनसे इतनी उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था कि यही बस नाम रोशन करेंगे. और लास्ट में प्रकाश पादुकोणे के बाद आगे बढ़कर चमकने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी सिर्फ पुलेला गोपीचंद ही है. वो देखने में बहुत अच्छे तो लगते ही हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हॉट हैं, हैंडसम हैं, बहुत टॉल हैं, उनकी हाइट है 6'2", मतलब लड़कियों को अक्सर लंबे लड़के बहुत पसंद होते हैं. 2000 में ऐसा हुआ था कि पुलेला गोपीचंद थॉमस कप में फाइनल में पहुंच गए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया जो है खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है. फिर जब गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड खिताब जीता 2001 में, तब लगने लगा था कि मानो हम चांद तक पहुंचने वाले हैं, मतलब सीढ़ी मिल गई है हमें. पुलेला गोपीचंद वही सीढ़ी थे. अब हमारे उस टाइम पर 6 खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में थे. टॉप 100 में 6 प्लेयर्स इंडिया से थे. और आपको पता है पुलेला गोपीचंद 2001 में 4th रैंक पर थे. मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि बस यार हमसे ऊपर कोई है ही नहीं. उन्होंने 2001 में चीन के चैन हॉन्ग को फाइनल में 15-12 और 15-6 से हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली थी. इस तरह से प्रकाश पादुकोणे के बाद इस जीत को हासिल करने वाले वो सेकंड इंडियन बन गए थे. मतलब आप सोचो, वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो गया है और आप भारत में दूसरे नंबर पर हो. पहले नंबर पर प्रकाश पादुकोण थे और 1980 में उन्होंने ये जीत हासिल कर ली थी प्रकाश पादुकोणे ने. और उसके बाद 2001 में नाम आया पुलेला गोपीचंद का. उन्हें 2001 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था उसके बाद, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण उनके खेल पर बहुत इफेक्ट पड़ा और 2003 में उनकी रैंकिंग गिरकर 126 पर आ गई थी. 2005 में उन्हें फिर से सम्मानित किया गया था. उन सबके बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, पर अभी ये बता देती हूं कि गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी चलाते हैं. अब वो एक जाने माने कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है. और उनके जो प्लेयर्स हैं वो आज भारत में नाम रोशन कर रहे हैं. उन प्लेयर्स का नाम आप जानते हैं? आई एम श्योर जानते होंगे. साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इन दोनों की अगर कोचिंग की बात की जाए तो वो पुलेला गोपीचंद ने ही दी है. लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है. जब वो खेलों में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई थी, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी एकेडमी खोलूंगा.
लेकिन वर्ल्ड क्लास एकेडमी खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी जरूर बताएगी मुस्कान आपको। सुनते रहिए अनसंग चैंपियंस, जिसमें आप मुझे यानी कि मुस्कान को सुन रहे हैं और आज मैं आपको बता रही हूं पुलेला गोपीचंद की कहानी। एक ऐसा चैंपियन जो एक टाइम पर टॉप 5 में था पूरे वर्ल्ड में और फिर धीरे धीरे कहानी बदलती चली गई। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना तय है, जीना इसी का नाम है। आप मेरे सुरों पे मत जाइए, मुझे पता है मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ, लेकिन जज्बातों को समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आप थोड़ा सा डाउन हैं, तो ट्रस्ट मी कल आप टॉप पर हो सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मुस्कान विल बी हियर बस थोड़ी ही देर में।

वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर।

जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पे भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ, मेरे यानी आरजे किरण के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे, और हमेशा की तरह जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर खुश नहीं है, खुशी आपसे दूर है, तो ढूंढिए आसपास, कहीं ना कहीं खुश होने का मौका मिल ही जाएगा। प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी, और कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं किस वीर गाथा को आप सभी के बीच में सुनाने वाली हूँ, रखने वाली हूँ। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि वतन से ज्यादा खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और मुझे लगता है कि जो हमारा वतन है, जो हमारा देश है, अगर हम उसके लिए एक काम भी करते हैं ना, एक बदलाव भी अगर हम अपनी तरफ से लेकर आते हैं, तो बड़ा प्राउड हमें फील होता है। बशर्ते कि हमने कभी ऐसी कोई कोशिश की हो तो हमें प्राउड होगा, या तो हम उस फीलिंग को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वो फीलिंग क्या होती है। कभी किसी आर्मी पर्सन से, किसी पुलिस फोर्स के जवान से, या फिर किसी भी इंडियन फोर्स के जवान से आप ये बात पूछिएगा, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ये बात पूछेगा जो हर पल अपनी जिंदगी का हर क्षण, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है। फैमिली उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी होती है, लेकिन जो हमारा देश है वो उनके लिए उनकी फर्स्ट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में आते हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो बचपन से ही एक सपने को लिए जीते हैं कि हमें बड़े होकर ये बनना है। कई सारे लोग शायद टीवी पर देखकर उन सपनों को जीते हैं, वहां से इंस्पिरेशन उन्हें मिलती है कि मुझे भी ये करना है। हो सकता है कि किसी ने अखबार में किसी को देख लिया हो और उसने सोचा हो कि मुझे ये करियर चूज करना है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे माहौल में पैदा भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, जहां पर उनके अंदर एक जज्बात समा जाते हैं कि मुझे तो बड़े होकर इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इंडियन आर्मी का। तो कॉल फॉर ड्यूटी पर आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी महान पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, जिन्होंने न सिर्फ सेना को अपनी परवरिश में जिया है, बल्कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी कि जब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटी की, जब बात आती है करियर चूज करने की, तब तक उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि उनको इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जाना है, फिर चाहे वो इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी। वेल, मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा हिंट तो आपको मिल ही चुका होगा, क्योंकि हाल ही में उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है, उनकी लाइफ जर्नी है, वो एक फिल्म के जरिए कुछ घंटों में हमें दिखाएगी। लेकिन आज कॉल फॉर ड्यूटी में मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर उनको याद किया जाए, क्यों ना उनकी जिंदगी में थोड़ा सा फिर से झांका जाए और याद किया जाए उनके उन वीर पलों को जो उन्होंने बिताए और हमेशा के लिए हमारी देश की झोली में डाल दिए। तो आज कॉल फॉर ड्यूटी पर मैं बात करने जा रही हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। कई लोगों का ऐसा कहना है कि कारगिल युद्ध की जब जब बात होती है, अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जिक्र ना करें तो वो पूरी की पूरी बात ना बिल्कुल अधूरी होती है। और आज हम करने वाले हैं ऐसी ढेर सारी बातें कारगिल युद्ध के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा की।

0: आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मेरे यानी किरण के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है कॉल फॉर ड्यूटी। 9 सितंबर 1974 का वो दिन जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर दो बेटियों के बाद जन्म हुआ दो जुड़वा बच्चों का। कमला कांता जी और जो मिस्टर बत्रा थे, उन दोनों की ही श्री रामचरितमानस में बेहद ही गहरी श्रद्धा थी और उन्होंने इस चीज को देखते हुए अपने दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। बच्चे बड़े हुए तो उनको स्कूल में डालना था। सबसे पहले डीएवी स्कूल के साथ उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में उनको एडमिशन दिलाया गया। अब स्कूल जो है वो सेना छावनी में था, यानी कैंट एरिया में था। तो स्कूल से घर आते जाते कई बार ऐसा होता था कि जो सेना के जवान हैं उनसे वो बेहद ही करीबी से मिलते थे, या फिर कह लीजिए कि बेहद करीब से उनको जाते आते देखा करते थे। कई बार वो अपनी परेड कर रहे होते थे तो कई बार कुछ काम कर रहे होते थे, कई बार वो भाग रहे होते थे तो कई बार वो किसी अर्जेंट काम के लिए बड़ी जल्दी में दौड़ लगा रहे होते थे। ये सब देख कर विक्रम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। उन्हें लगता था कि सेना की लाइफ में कितनी ज्यादा देशभक्ति है, कितनी ज्यादा डेडिकेशन है, कितनी ज्यादा ऑनेस्टी है, और यही ऑनेस्टी, यही डेडिकेशन, यही एक्टिवनेस विक्रम को अपनी तरफ बस खींचे चली जा रही थी। और साथ में ये सारी चीजों को और बढ़ावा मिलता था जब वो टीवी पर कोई भी सेना से जुड़ा हुआ सीरियल देखते थे या फिर फिल्में देखते थे। उनकी वीरता की कहानियां जब वो सुनते थे तो ये सब उन्हें बहुत पसंद आता था। यानी कि ये सीरियल्स, ये फिल्में, ये कहानियां जो वीरता की थी, सेना की वीरता की थी, ये उनकी फेवरेट हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, विक्रम की अगर फेवरेट ड्रेस की बात की जाए, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको वो किसी भी स्पेशल मौके पर पहनना चाहे, तो वो शायद किसी भी भारतीय फौज की ड्रेस होगी। यानी कि जो भी उनकी वर्दी है वो उनकी फेवरेट हुआ करती थी। विक्रम स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई में हमेशा टॉप किया करते थे बल्कि स्पोर्ट्स में भी उनकी बड़ी रुचि रहा करती थी। स्पोर्ट्स में, टेबल टेनिस में वो हमेशा टॉप के खिलाड़ियों में आते थे। वहीं कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो उसमें भी वो कभी पीछे नहीं रहे। हर जगह वो एक्टिव रहा करते थे और यही एक्टिवनेस थी जो उनको सेना में जाने का जज्बा भरती थी। अब विक्रम का 12th कंप्लीट हुआ और उसके बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने साइंस से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा NCCA एयर विंग में शामिल हुए। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें NCC में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने NCC कैंडिडेट के रूप में रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट उनके लिए था। या मैं यूं कहूं कि सेना में जाने की जो ख्वाहिश उन्होंने अपने बचपन से अपने मन में दबाई हुई थी, उसका पहला पड़ाव वो चढ़ रहे थे। फिर 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी चुनने का ऑफर आया। अब मर्चेंट नेवी में भी कहीं ना कहीं आप कर तो देश के लिए ही काम रहे हैं, लेकिन फिर भी विक्रम के मन में एक उलझन थी कि उन्हें तो इंडियन फोर्सेज में जाना था, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में। और ये जो मर्चेंट नेवी का ऑप्शन उनके पास आया, उसको नकार कर कहीं वो कोई भूल तो नहीं करेंगे, और अगर उसको चूज कर ले तो कहीं उनके मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। लेकिन फाइनली उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने मर्चेंट नेवी में जाने का जो ये ऑप्शन उन्हें मिला उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1995 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इंग्लिश में MA करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उन्होंने अपना एडमिशन लिया। अब धीरे धीरे पढ़ाई कंप्लीट होने जा रही थी और मन में जो सपना बचपन से पाले हुए थे कि सेना का हिस्सा बनना है ऑफिशियल तरीके से, NCC से अब उनको इंडियन फोर्सेस में दाखिला लेना था, इंडियन फोर्सेस का हिस्सा बनना था, उसको कैसे पूरा किया जाए। एक मौके की तलाश में वो थे कि जैसे ही वो मौका आएगा जी जान लगा देंगे, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे ताकि फिजिकली, मेंटली और नॉलेज की तरफ से भी कोई कमी उनकी ना रहे। सेना में कैसे उन्होंने अपना करियर बनाया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन से सन से इसकी शुरुआत हुई, जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी के लिए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। आप बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर कॉल फॉर ड्यूटी में मेरे यानी किरण के साथ।
1: वॉक टॉक रेडियो, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatwal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow. It's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था, तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. Mm-hmm. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे. मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम, एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी, तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशन वगैरह दोगी, यू नो, नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो, नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आई वाज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब, एंड मैं भूल गई अपना, यू नो, एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: तो कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना, वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती, वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.

0: हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पॉडकास्ट की सीरीज में आज एक बार फिर मैं अपने बहुत ही दो इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में आप सभी के साथ आई हूं। और मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ना ये दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। और क्यों लगते हैं ना, वो तो अभी जब आप भी सुनोगे ना आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जो मेरे दो गेस्ट आज मौजूद हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साथ ही वाटर कायकिंग करते हैं और साथ ही साथ ट्रैकिंग भी करते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ के हैं। तो आज बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डोलमा का, यानी कि सुनीता श्रेष्ठा का, और साथ में उनके हस्बैंड मेरे साथ है जिनका नाम है सोनम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। और सच बताऊं तो पहले ना मैं बड़ी आज टायर्ड सी फील कर रही थी किसी वजह से, लेकिन जैसे ही आप लोगों से मिली ना मेरी सारी थकान चली गई। मैं सीरियसली ऑनेस्टली मैं ये बात बोल रही हूँ। और अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए। तो मैं आपके बारे में जो है खुद बताऊं, इससे अच्छा मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं अपने बारे में कि सोनम कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी तक की आपकी जर्नी, जो पर्सनल लाइफ की जर्नी है, क्या कुछ, क्या स्टडी किया, कहाँ कहाँ से होकर आए हो।
2: मेरा नाम सोनम है और मैं रहने वाला वैसे हरसिल उत्तरकाशी से हूँ। और यहाँ देहरादून में मैं पिछले 5-6 सालों से यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ एज अ अकाउंटेंट। और मैं 9 to 5 जॉब के अलावा साइकिलिंग करता हूँ, माउंटेन बाइकिंग, वाइट वाटर रिवर कायाकिंग एंड स्कीइंग भी करता हूँ इन विंटर सीजन। इसके अलावा अपनी जर्नी के बारे में मैं बताऊँ तो साइकिलिंग मैंने शुरू की थी 2019 से, जस्ट कोविड उस टाइम जस्ट शुरू ही हो रहा था। तो ऑफिस से भी मतलब लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो पूरा ही बिल्कुल बंद था, करने के लिए कुछ था नहीं, घर बैठो सब। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ करना चाहिए घर बैठे बैठे, तो साइकिलिंग मैंने वहां से शुरू की। देन देखते ही देखते मैं मतलब साइकिलिंग का इतना मेरे को शौक और इतना मतलब मुझे साइकिलिंग इतना पसंद आया कि मतलब कब मैं देहरादून से लद्दाख इन साइकिल, मैंने
0: साइकिल में या
2: टोटली साइकिलिंग। मैं देहरादून में कह सकता हूँ मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो देहरादून से जिसने साइकिलिंग स्टार्ट की और पूरी लद्दाख तक कंप्लीट की। स्टार्टिंग में मैं लेके चल रहा था कि यार मेरे को मतलब जिस हिसाब से डिस्टेंस है लाइक 1400 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि यार पूरा महीना तो मेरे को लगेगा। बट जब मैंने शुरू की तो कब 12 दिन में कंप्लीट हो गया मुझे पता नहीं चला।
3: वॉक टॉक रेडियो, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: इश्क तेरा तड़पावे। Hi everyone, this is Sukhbir और आप सुन रहे हैं मेरे गाने Walk Talk Radio पर। Tune in for a better life.
1: अच्छा अब डोलमा आपकी बारी, आप बताइए कि आप क्या करते हो और आपकी अभी तक की क्या जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की।
2: मेरा नाम सुनीता श्रेष्ठ है
1: जी,
2: एंड मुझे डोलमा कह के ही ज्यादा जानता है यहाँ भी और नेपाल में भी
1: जी।
2: वैसे मैं नेपाल से हूँ, बिलोंग वहीं से करती हूँ, बट अभी मेरा शादी हुआ है यहाँ पर।
1: हाँ।
2: तो यहाँ हूँ मैं, कब से हूँ, 2 साल होने वाला है।
1: 2 साल होने वाला
2: है। हाँ। तो मेरा साइकिलिंग जर्नी, साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेकिंग गाइड थी।
1: ओके।
2: और ट्रेकिंग में मुझे पता चला कि नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज और ज्यादा मुझे उसी, जब मैं ट्रेकिंग करने लगी तब पता चला मुझे
1: जी।
2: एंड हम ह्यूमन बींग्स है तो हमें फन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर मुझे, मेरी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है एक इवेंट नेपाल में, काठमांडू कोरा करके, तो वो जून जुलाई में होता है वैसे। तो वो मेरी अपनी ऑफिस ऑर्गेनाइज करता था तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ओके मैं भी करती हूँ।
1: ओके।
2: बिकॉज ये वाला ज्यादा फन लग रहा था। मैं आउटडोर पर्सन के अलावा स्टूडेंट थी घर पे। फिर एक्चुअली मेरा जो स्पोर्ट्स वाला जर्नी वो मेरे स्कूल से स्टार्ट हुआ है।
1: अच्छा।
2: मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल खेलती थी और मैं स्टेट में सेलेक्ट हुई थी वॉलीबॉल के लिए। तो वहीं से मुझे खेलकूद में इंटरेस्ट हुआ। फिर रनिंग, लॉन्ग जम्प ये सब में तो मैं अच्छी खेलती थी उस टाइम में। फिर उसके बाद थोड़ी सी, हमारी नेपाल में 10 क्लास को SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,
1: अच्छा
2: हाँ नेपाल में वो होता है, तो 10 क्लास के बाद हमें 3 मंथ्स का हॉलीडे मिल जाता है।
1: ओके।
2: हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी खुद को पुश करना पड़ा कि लाइक डोलमा यू शुड गो आउट एंड इंडिपेंडेंट होना है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम, दिस थिंग्स आर रियली हार्ड टू एक्सप्लेन, यू नो, लाइक हम एक गांव से होता है एंड वहां पर स्पोर्ट्स ये सब चीजें इतना ज्यादा
1: एक्सपोज नहीं
2: होता है। हाँ। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये चीज मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल था। मुझे ये चीज से लगाव हो गया था एंड मेरे पेरेंट्स को ये, उनको मंजूर नहीं था, दे वर लाइक टोटली अगेंस्ट मी। वो चाहता था कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं, संस्कारी,
1: पढ़ लिख लूं, घर का काम, जॉब कर लूं, फिर शादी भी कर लूं।
2: हाँ, ट्रू, एग्जैक्टली। बट वो मेरा नहीं हुआ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। तो मैं टोटली थोड़ी सी उनके साथ डिसअपॉइंटेड हो गई थी। फिर मैंने पुश करना स्टार्ट कर दिया कि ओके इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है,
1: मैं खुद से कुछ करूंगी।
2: मैं खुद से करूंगी। फिर वो 3 मंथ्स हॉलीडे में मैंने मम्मी पापा को झूठ बोला कि आई वॉन्ट टू गो टू मामा के घर।
1: अच्छा।
2: बट एक्चुअली मैं काम करने जा रही थी।
1: और उन्हें पता चला फिर? नहीं पता चला।
2: उन्हें नहीं पता चला कि मैं क्यों जा रही थी काठमांडू। एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि घर से निकल के कहीं भी जाऊं। जितना क्वेश्चंस हमें होता है उतना हमारे ब्रदर्स को नहीं होता है, भाई भैया को नहीं होता है, तो मेरे लिए वो स्टेप लेना बहुत मुश्किल था एंड बहुत जरूरी भी था। फिर मैं काठमांडू आई तो वहां पर मुझे, हमें ये लगता था कि ओके काठमांडू में जाके हमें हमारा करियर बन जाएगा। इट्स लाइक काइंड ऑफ, यू नो, यहाँ इंडिया में
1: अपॉर्चुनिटीज मिलती है ज्यादा,
2: दिल्ली, दिस ऑल थिंग्स, वैसे ही नेपाल का काठमांडू है उस टाइम।
1: अच्छा।
2: तो मुझे बस ये फील हो गया था कि मुझे कैसे भी करके काठमांडू पहुंचना है। फिर काठमांडू पहुंची मैं एंड हमारे बहुत दूर का रिलेटिव्स है वो लोग। फिर मैं उनके साथ रही एक्चुअली मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं मामा घर जाऊं, पर मैं नहीं गया क्योंकि उनके घर जाऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी कहीं.
1: वो भी नहीं जाने देंगे.
2: हाँ, फिर मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा, क्रॉस क्वेश्चंस, तो मुझे वो नहीं चाहिए था. मुझे बस अपनी काम करना था, काम ढूंढना था फर्स्ट थिंग. तो काठमांडू गई, उनके साथ रही, फिर कोई पहचानने वाला भैया, उनको मैंने बात किया कि आई वॉन्ट टू वर्क, तो उन्होंने मुझे ट्रैवल एजेंसी में इंट्रोड्यूस करवाया.
1: अच्छा अच्छा.
2: फिर नेपाल में इतना आसान नहीं है, वो जो हम एक बार टूरिज्म में लोग कोई भी जैसे कि ट्रैवल एजेंसी हमें हायर करता है तो वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं करता है. तो ये बात मुझे बहुत बाद में जाके पता चला. तो उन्होंने मुझे बुलाया, लाइक डोलमा ऑफिस आओ, बातें सुनो. एंड यू नो लाइक वो बातें सुनने के लिए मुझे 3 घंटा वॉक करके जाना पड़ता था वो जगह से. एंड मैं 8 बजे जाती थी क्योंकि मुझे सुनना था, मुझे सीखना था, सीखना पड़ता था. एंड मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कंपनी, यू नो लाइक ना ज्यादा
1: कंफ्यूजन. कंफ्यूजन.
2: एंड स्टिल मुझे बस इंडिपेंडेंट होना था.
0: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो. एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर.

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितने की ज़रूरत है वहाँ पर। आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
1: हमेशा से ही एक बात हमें बहुत सताती है कि हमारा फ्यूचर कब ब्राइट होगा, हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये समझा जाए कि तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो जिंदगी के आधे मसले यहीं पर खत्म हो जाएंगे। Walk Talk Radio.

0: हाय, दिस इज शाहिद माल्या। सुनते रहिए इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो।
1: सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुने।
2: हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो। एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर।

0: रेडियो।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, AKA धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है, तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो लोग होंगे आपके आसपास, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना, तो यही सोसाइटी आपको ऐसे एग्जांपल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको एज ए एग्जांपल देखेंगे। तो यही है यार, कि किसी की सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ, और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी। तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ, जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
2: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: you. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: Hi guys, my name is Kavya और मैं अपने बारे में क्या कहूँ? I think मैं एक rural entrepreneur हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज़ वॉट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट मी.